0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: बताते चलिए सुबह की ठीक है 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार अरिया और श्रोताओं को भी सुप्रभात। 30 मई शनिवार का दिन, इस पहले प्रातकालीन संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करते हैं। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है। मॉरिशस रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने केंद्रों पर पहुंचेंगे। और रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान, जैसे कि आपको बताया गया है, आज शनिवार को समाप्त होगा। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी यानी कि निजता और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष और सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राज्यसभा में मॉरिशन क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों को देश के प्रशासनिक और संस्थागत सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट नेशनल एंटरप्रेन्योर इटिजियन कार्यक्रम का फाइनल आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो इसी के साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

सुनते हैं मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आने वाले अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। धीरे धीरे दिन के दौरान विशेषकर पूर्वी और ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। जहां पर आमतौर पर कोहरा छाता है, वहां पर कोहरा छाने लगेगा और शाम के समय विशेषकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रहकर वर्षा होती रहेगी। रात के दौरान बाद में आसमान साफ हो जाएगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बहेगी और झोंके जब बारिश होगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। प्रवाह रेखा के पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।

0: तो इसी के साथ ये फ्लैश समाप्त होकर चला ऑन
1: RM2 रेडियो मस्ती,
0: और हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।
2: Your news on NBC Play, NBC Play.
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: कदर करना सीख लीजिए, न जिंदगी वापस आती है न जिंदगी में आए हुए लोग। कदर करना सीख लीजिए, न जिंदगी वापस आती है न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ठीक हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सांस और आवाज के हमारे प्यार प्यारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को अजय प्रताप सिंह सीतालू का प्यार भरा नमस्कार और आदाब स्वीकार हो। ये है आप ही लोगों का मनपसंद लोकप्रिय रेडियो चैनल AM2 रेडियो मॉरिशस। 819 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा प्रसारण चल रहा है, साथ आप हमें टिकटॉक पेज पर भी देख रहे हैं। थैंक यू हमें सुनने और देखने के लिए। और सुबह के 6:05 हुए हैं, आज है शनिवार का दिन, शनिवार 30 मई साल 2026। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी लोगों के लिए एकदम अच्छी तरह से बीते। आज आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे। सो स्पेशल मदर्स डे एडिशन है आज और कल, सो मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, MBC की पूरी टीम की ओर से सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे, मातृ दिवस, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं इस प्रातःकालीन सभा को वैदिक नाथ प्रोग्राम के साथ गहलोत राजपूत महासभा की ओर से।

गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रद्धेय श्रोताओं का अभिवादन और वैदिक नाथ कार्यक्रम में पंडिता सुनीता रोजन बुदोई का सादर सप्रेम नमस्ते। आज का विषय संस्कार। प्रस्तुत ऋग्वेद मंत्र का अर्थ विध्यानतः, जहाँ कन्या पूजा की बात करें तो वहाँ गृहस्थ लोग अपनी अपनी कन्याओं का उपनयन व वेदारंभ आदि संस्कारों को करके पारिवारिक मोह माया से हटाकर आचार्याओं के सानिध्य में भेजकर उचित खान पान की व्यवस्था कर एवं पठन पाठन की सब सामग्री प्रदान कर मेधावी यशस्विनी एवं आयुष्मती बनाने का दृढ़ संकल्प जो करते हैं, यही कन्या पूजा का सही अर्थ है। न कि कन्याओं को वस्त्र अलंकार से सजाकर आरती उतारना आदि, जो कि कालांतर में रूढ़ हो गया है। वस्तुतः कन्या पूजा की पुष्टि स्वयं वेद का निम्न मंत्र कहता है, एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः स्तुषे वामश्विना बृहत्। यह भी ऋग्वेद का मंत्र है। अर्थात अपूर्व्या, यह किसी की हुई नहीं दिवः, प्रिया उषा सूर्य प्रकाश से उत्पन्न हुई, यह उषा काल जैसे वाम अश्विनव बृहत् व्युच्छति, इन दोनों सूर्य और चांद के गुणों को प्रकाशित करती है। वैसे मैं भी इन गुणों का स्तुषे बखान करूं। सुतागन, मतलब ऐसे इस महीने के चांद और सूर्य को कन्या तुल्य उषा

चमकाती हैं तो हमें भी भौतिकतया समाज के अश्विनियों की योग्यता हेतु कन्याओं की संस्कार रूपी नींव की अपेक्षा करनी ही चाहिए। उक्त एष उषा मंत्र के आधिदैविक उपमोदाहरण से ही सूर्य चंद्र को क्रमशः आचार्य एवं पुरोहित वा ब्रह्मा कहा जाता है। आश्वलायन गृह्य सूत्रम में इसका उल्लेख दृष्टव्य है। और भी जहाँ उषा देवी की स्तुति करने की बात है तो वहाँ वैज्ञानिकतया उक्त महीना की राशि भी कन्या ही है। अतः इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यदि हम घर समाज व राष्ट्र को एक सभ्य आदर्श एवं निर्विघ्न वातावरण युक्त बनाना चाहते हैं तो इसकी नींव जो कन्याएं हैं हमें मुख्यतः उन्हीं को भी संस्कारित करना होगा, क्योंकि वे ही कालांतर में विवाह के पश्चात माता बनकर निर्माता बनेगी। यह भी ऋग्वेद का मंत्र आया है। शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः, शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः, शन्नो विष्णुः समुपूषानो अस्तु, शन्नो भवित्रं संवस्तु वायुः। अर्थात जब अदिति विदुषी माताएं व्रते भी न शम व्रतों व अच्छे कर्मों के साथ हम लोगों के लिए सुख रूप होवे तो धरती पर स्वर्का मरुतः शम भवंतु सुंदर मंत्र विचार है, जिनके वे प्राणों के समान प्रियजन अच्छे कार्यों के साथ सुख रूप होवे। मतलब विवाह के पश्चात नारी पति कुल में दृढ़ रहने का जहाँ संकल्प करती है तो वहीं शन्नो भव द्विपदे शन चतुष्पदे सास व ससुर और गौ आदि पशुओं के लिए भी सुख करने का व्रत लेती है। श्रोतागण, इन सब के साथ साथ जो इनी गिनी विदुषी माताएं हैं वे पूर्वोक्त मंत्र जीवम रुदंती के प्रमाण से पितरों को प्रेरित करने का व्रत भी लेती हैं। ऐसे उन नारियों को हमारा कोटिश नमन हो। बिना उनके किए व्रत से समझो सबका जीना मुश्किल सा हो जाएगा। जब वे लोग व्रत रखेंगी तभी धरती पर बढ़िया मरुत पैदा होंगे। श्रावणी उपाकर्म के विनियोग मंत्रों में गंता नो यज्ञम के मरुत पद का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है। शन्नो विष्णु जो एक परमात्मा एवं सर्वव्याप्त हैं उसी की उपासना होगी तो सबको सुख होए। यज्ञो वे विष्णु पितर धरती का संतुलन रखते हैं यज्ञ द्वारा। माता निर्माता भवती, माँ जो होती है बच्चों का निर्माण करती है। माता हमारे लिए सुख के कारण बने, अदिति कल्याणकारी होवे। अनेक व्रतों को करके बेटी जब पति कुल में जाती है तो दृढ़ रहने की कोशिश करे। विवाह करने के पश्चात पति कुल में दो पैर वाला और चार पैर वाले की रक्षा करें। कैसे? तो घर के सदस्यों दो पैर वाले की और जानवरों का भी पक्षियों का भी जिम्मेदारी उन पर आ जाती है, क्योंकि पति को तो बाहर का काम जो रखना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रहा है तो इसमें दोनों को एक दूसरे का हाथ बटाना ज़रूरी है। गर्भ में बढ़िया संतान पैदा करे पितरों को पुष्ट करना है, पितरों को खुश करना यानी अच्छे बच्चे पैदा करें। विद्वान ऋषि चार वेद चार उपवेद छह दर्शन ऐसा पढ़ने पढ़ाने वाला होवे तब पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। धरती माता के समान माता निर्माण करेगी, बढ़िया संतान होगी। जब माताएं अपने गृहस्थी के लिए व्रत रखेगी तब उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। इसी प्रकार एक माता जो है

अपने बच्चे पर अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। हर प्रथम पूजा प्रार्थना में प्रथम अपने परिवार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हैं, अपने पति अपने बच्चों को सुरक्षित देखती हैं, यही उनकी ममता है। इसी प्रकार एक बेटा एक बार अपनी माँ के बारे में ऐसा कुछ कहा, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती हैं। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता कल किस्मत में क्या लिखा है। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए तो केवल एक माँ। अब माँ के लिए क्या लिखूँ, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है, माँ है भाई माँ वो कहाँ हार मानती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों माँ बाप का ख्याल कर लिया करो, अपने अपने माता पिता और गुरुजन को कोटि कोटि नमन है। श्रोतागण, इसी तरह एक कविता है, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदे।

आया प्रिय श्रोतागण, माँ बाप के बारे में जितना कहें उतना कम है। हम अपने वक्तव्यों को विराम दे रहे हैं। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: आनंद मंगल करूं आरती, जय गायत्री माता।
2: सुबह के 6:17 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। ओकुले, फेर्डिनांड स्ट्रीट, लापेरो स्ट्रीट, कांरुया और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 1 जून को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और हाईलैंड्स, मोसेलमों, राइमिया, ओआदारी लेन और आसपास में जो गलियां हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से आज शनिवार 30 मई को दिन के 9 बजे से दिन के 12 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
3: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
4: माँ
5: एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
4: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
5: माँ

0: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनकी आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
0: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

सुबह के 6:19। हो रहे हैं जी हाँ, इस वीकेंड को मना रहे मातृ दिवस। हर साल मई महीने के अंत के वीकेंड को मनाते यह त्यौहार, तो सभी माताओं को मातृ दिवस बहुत बहुत अभिनंदन, हैप्पी मदर्स डे। और कहते हैं कि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, माँ के पैरों तले जन्नत है। तो सभी माताओं को हमारा प्यार भरा नमन स्वीकार हो। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार सभी माताओं को जो मॉरिशस में है, दुनिया में, और जो लोग, जो महिलाएं बहुत जल्द माँ बनने वाली है, उनको भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तो शक्ति है, माँ तो जननी है, माँ जन्म देने वाली है, माँ ही हमारा पालन करती है, माँ ही हमें शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, संस्कार देती है। ऐसी माँ को हम कैसे भूल सकते हैं। माँ कभी कभी नाराज हो जाती है बच्चों से, फिर भी वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। बच्चा चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो पर वो अपनी माँ के कलीजे का टुकड़ा होता है, माँ के आंखों का तारा होता है। तो चलिए इसे में सुनते हैं प्यारा सा गाना माँ पर, सागरिका की आवाज में। और सागरिका में बता रही है कि माँ की अहमियत क्या है हमारे जीवन में। चलिए एक साथ सुनते हैं। और इस यह जो गीत है इसमें बहुत सारे भाव है, ध्यान से सुनिए इस गीत को।

इस गीत को सुनकर आंखें भर आई। हम जानते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना है और माँ जो होती है, माँ बहुत प्यारी होती है। कहती है कि माँ ममता की मूरत है। जी हाँ, माँ ममता की मूरत है, जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उसकी छाया शीतल लगती है, हर पीड़ा में हिम्मत जगती है। माँ की आँखों में सपने होते हैं, बच्चों के लिए अपने होते हैं। खुद दुख सहकर मुस्कुराती है, हर मुश्किल में साथ निभाती है। माँ का प्यार अनमोल है, इसका नहीं कोई मोल है। इसके चरणों में स्वर्ग बसता है, उससे ही जीवन सुंदर लगता है। जब भी मन घबराता है, माँ का आंचल याद आता है। ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार माँ है, जग में सबसे प्यारी और महान। से सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी सी कविता हमने डेडिकेट किया आप सभी माताओं के नाम। हैप्पी मदर्स डे। इसी प्यारे से गीत के साथ ही ये छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। याद है ठीक 6:30 बजे का पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचना और मौसम का हाल। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी 7 बजे सुबह का नजराना प्रोग्राम में मदर्स डे स्पेशल। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड,

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:31 हुए हैं। तीस मई शनिवार की इस प्रातकालीन पहली बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करना है। मॉरिशस और रोड्रिग्स समय मतदाता पंजीकरण अभियान आज दोपहर 1 समाप्त हो जाएगा। चुनावी सूची को अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने विवरण की जांच और संशोधन कराने केंद्रों पर पहुंचेंगे। रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज समाप्त हो रहा है। इस वर्ष ये प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में पूरी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर ये अभ्यास चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस के दौरान प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष और सरकार दोनों ने संविधान सुधार की आवश्यकता और जन परामर्श की अहमियत पर अपने अपने तर्क रखे। कैबिनेट की बैठक ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल, बंदरगाह विकास परियोजना और राष्ट्रसभा में मॉरिशन क्रियोल भाषा के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की। उन्होंने अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देती हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित करना और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना था। ये कार्यक्रम 25 से 29 मई के बीच आयोजित किया गया और इसमें अमरीकी खुफिया एजेंसी ने अपनी विशेषज्ञता साझा की। इस पहल को अमरीकी शौर्य दफेयर क्रेग हालबर्न हाल मैना ने बताया कि ये बढ़ते व्यापारिक संबंध

0: प्रतिबंधों के बीच अवैध गतिविधियों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से की जा रही है, विशेष रूप से जुलाई में होने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट को ध्यान में रखते हुए। हाल के दिनों में बंदरगाह पर सुरक्षा अभ्यास, मॉरिशस पुलिस और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी और अब ये प्रशिक्षण, इन सभी को मिलाकर अमरीका और मॉरिशस के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अमरीकी पक्ष के अनुसार ये सहयोग एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना है। क्रेग हाडमेयर को सुनते हैं, प्रणव बिहारी ने उनसे बात की विधिमा सिबरन की विवरण के साथ।
1: जुलाई महीने के अंत को मॉरिशस में सबसे बड़ा सम्मेलन लगने वाला है, यानी यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट, और इससे वित्तीय सेक्टर में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। इस सकारात्मक प्रवृत्ति से हम इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि हम गंभीरता से जोखिमों को संभालेंगे। अमरीका मॉरिशस को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है और विभिन्न स्तरों पर योग्य पाता है। पिछले सप्ताह हमने सुरक्षा के क्षेत्र में एक संधि को अंतिम रूप दिया और एक ऐसे दूतावास का निर्माण किया जाएगा जो 100 सालों तक रहेगा। ये 100 सालों का एक निवेश है। आप निश्चित रूप से पाएंगे कि ये वाशिंगटन की ओर से एक पहल है जो इस संबंध में निवेश कर रहा है।
0: अमरीकी शौजेद अफेयर ग्रेग हाडमेयर ने बताया कि अगले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के लिए मॉरिशस में आने वाली उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना को आने वाले कुछ हफ्तों में आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया था जिनमें मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की भी शामिल थी। एमओआरए के महानिदेशक रोहित रामनवास के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल तकनीकें भी इसका हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला नई तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले वित्तीय अपराधों से निपटने में मदद करेगी और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस बीच हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए अनुसार 31 मार्च तक कर बकाया 25 बिलियन रुपए से अधिक पहुंच गया है। रोहित रामनवास ने बताया कि कुछ मामलों में कर वसूली लगभग असंभव हो जाती है जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने में 5 साल तक का समय लग सकता है। रोहित रामनवास को सुनते हैं एक बार फिर प्रणव बिहारी और विधिमा सिबरन के साथ।
1: ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कंपनियों की नीलामी होती है। एक लिक्विडेटर को प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। कुछ अन्य कंपनियां हैं जो सॉल्वेंट नहीं थी और उन्हें नीलाम करना पड़ा और इसके लिए पैसे प्राप्त करने का मौका बहुत कम होता है क्योंकि कोई अचल संपत्ति नहीं होती है जिसे जब्त किया जा सके। लेकिन एक दूसरा मामला होता है जो अदालत में जाता है। जब एक मामला कोर्ट में जाता है तब ये हम पर निर्भर नहीं होता है। हमें कोर्ट की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए जिसमें 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। मामला कभी कभी प्रिवी काउंसिल तक चला जाता है, तब हमें फैसले का इंतजार करना पड़ता है।
0: 16 मई से शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया मॉरिशस और रोड्रिग्स दोनों जगहों पर आयोजित की जा रही है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज किया गया था। वहीं निर्वाचन क्षेत्र नंबर 18 बेलगोस कैट्रोबोन में शुक्रवार तक 14 नए पंजीकरण किए गए जबकि लगभग 400 लोग मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच के लिए पहुंचे। सप्ताह के दिनों में ये अभियान शाम चार बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक चलता है लेकिन शनिवार को केंद्रों पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जो लोग अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं या अपने पते और अन्य जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं उनके पास आज दोपहर 1 बजे तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का समय है। पढ़ते हम रोड्रिग्स की ओर। रोड्रिग्स में मतदाता पंजीकरण का अभ्यास आज शनिवार को समाप्त हो रहा है। ये प्रशासनिक अभ्यास इस वर्ष एक विशेष परिस्थिति में आयोजित किया गया है जिसकी वजह से इसे और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावी तैयारियों को सुचारू और अपडेटेड रखना है ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। जगाल जी हैनिके की रिपोर्ट पर यह विवरण।

0: रॉड्रिग्स में चुनावों के लिए प्रक्रिया 12 बजे बंद होंगी। इलाकाई चुनावों के संदर्भ में ऐसा पहली बार किया गया है। पिछले 2 हफ्तों से मतदाता अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर पा रहे थे तथा उसमें सुधार या पहली बार के लिए चुनाव आयोग के यहाँ अपना पंजीकरण कर पा रहे थे। हाल के औपचारिक आंकड़ों तथा 2025 के ब्यौरा के अनुसार रॉड्रिग्स में 33,660 पंजीकृत मतदाता हैं। वर्तमान का ये अभ्यास रूटीन लग सकता है, पर हर एक व्यक्ति को ये भली भांति ज्ञात है कि उसके पास राजनीतिक स्तर पर कौन सी कमियां हैं, क्योंकि लगभग 8 महीनों में रॉड्रिग्स वासियों को एक नए रॉड्रिग्स रीजनल असेंबली के गठन के लिए बुलाया जाएगा और जहां से भविष्य के कमिश्नर चुने जाएंगे जो टापू का कार्यभार संभालेंगे। गौरतलब है कि यहाँ ये क्षेत्र 6 चुनाव क्षेत्रों में विभाजित हैं: लाफेम, मारिशाल, सेंट गैब्रियल, बेउजुइत, पोर माथुरिन तथा ग्रैंड मोंटाइन। 6 क्षेत्र, 12 निर्वाचित तथा आने वाले महीनों में होने वाला एक कैंपेन। चुनाव आयोग के लिए इस सप्ताहांत को समाप्त होने वाला ये अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से आगामी भावी बहुमत का चुनाव होगा। सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल को राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा। ये विधेयक 2024-2025 वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त खर्चों से संबंधित है। मंत्रिपरिषद ने कल इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। इस पर तथा कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का एक ब्यौरा पेश है रजनी बिकर के साथ।
1: मंत्रिमंडल ने राज्यसभा में सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन 2024-2025 बिल पेश किए जाने पर स्वीकृति दी। इस विधेयक का मकसद है वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सरकारी सेवाओं के अंतर्गत रिकरेंट और कैपिटल दोनों ही एक्सपेंडिचर को वोट द्वारा सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन उपलब्ध कराना। मंत्रिमंडल की ओर से भारतीय सरकार के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के अंतर्गत आइलैंड कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के अमल में लाए जाने की बात पर विचार करना। 2025 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री की भारतीय यात्रा के उपरांत दोनों ही सरकारों की ओर से बंदरगाह के पुनर्व्यवस्था और विकास के लिए एक अहम साझेदारी की घोषणा की गई है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सभा में ख्योल मोहसिया की संभावित प्रस्तुतिकरण पर राष्ट्रीय सभा की स्पीकर की अध्यक्षता में लगी स्टीयरिंग कमेटी की एक अंतरिम रिपोर्ट में किए गए सुझावों की बात का जायजा लिया। मंत्रिमंडल ने इस बात का जायजा लिया कि भूमि एवं आवास मंत्रालय पोएंटो पिमो बालाक्लावा में एक टुकड़ी जमीन को फिर से पब्लिक बीच घोषित किए जाने पर विचार कर रहा है, जिसे 2008 में डीप्रोक्लेम किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस बात का जायजा लिया कि समाज कल्याण मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी सेवाओं को आधुनिक बनाने की एक बल्क स्कैनिंग परियोजना शुरू की है। इस प्रोजेक्ट से अधिक कारगर डिजिटल स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम के माध्यम से सोशल बेनिफिट्स प्रोसेस करने में सुधार लाया जाएगा। अनुमान है कि करीब 10.5 मिलियन फाइल्स स्कैन किए जाएंगे और 18 महीनों की अवधि में एक डिजिटल प्रणाली में इन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मॉरिशस को प्रभावित करने वाली जल संबंधी समस्या के संदर्भ में क वाश गतिविधियों को नियमबद्ध करने के लिए लोकल गवर्नमेंट मंत्रालय द्वारा अमल में लाए जाने वाले कदमों का जायजा लिया।
0: कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल डिबेट पर राष्ट्रीय सभा में बहस दोबारा शुरू होने के दौरान विपक्ष के व्हिप एड्रियन ड्यूवाल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने विशेष रूप से संविधान की धारा 9 पर जोर दिया, जो निजी जीवन और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। एड्रियन ड्यूवाल के अनुसार अब समय आ गया है कि संवैधानिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, ताकि संचार, व्यक्तिगत डेटा और डिजिटल अधिकारों को भी स्पष्ट सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एड्रियन ड्यूवाल को सुनते हैं।
2: But what is equally important and urgent for government, Madam Speaker, is to proceed in parallel right now with specific legislation regulating state surveillance, interception of communication, monitoring powers, and criminal sanctions. And that is the very important part for misuse and abuse thereof. Most Commonwealth jurisdictions, Madam Speaker, already have such legislations in place. I said last time, in the UK, the Investigatory Powers Act 2016. In other countries of the Commonwealth, small islands like Mauritius, Jamaica, Barbados, St. Lucia, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, you have the Interception and Communications Act. Mauritius should not lag decades behind.
0: वहीं कुशल ओबिन ने आंद्रिया जुवाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संविधान सुधार के लिए आयोग बनाने का फैसला जनता के जनादेश के अनुरूप है। उन्होंने याद दिलाया कि 2025-2029 के सरकारी कार्यक्रम में संवैधानिक सुधार का प्रावधान पहले से शामिल है। कुशल ओबिन ने यह भी कहा कि 1968 के संविधान को अपनाने से पहले भी व्यापक विचार विमर्श और परामर्श किया गया था और इस बार भी उसी तरह की जन परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुशल उबिन को सुनते हैं।
3: So this very important document that have served us well, that have given us stability, political, social, racial stability in this country after 58 years of independence, it is a milestone to have this commission created, and it is the duty of all of us, parliamentarians, civil society, and the population at large, to be consulted and to give their views to this commission. And the Honourable Prime Minister has been very clear in a very vivid speech that he made, said that the participation of all would be required to make it happen.
0: राज्यसभा के कार्य मंगलवार 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसदीय कार्य अब अगले निर्धारित सत्र में मंगलवार को दोबारा शुरू होंगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बिजली चोरी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वर्ष सामने आए मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीबी ने अपने नियंत्रण और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। बोर्ड अब बिजली नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े निरीक्षण और तकनीकी उपाय अपना रहा है। इसके साथ ही सीबी ने एक जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है ताकि लोगों को बिजली चोरी के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा सके और इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सके।
4: ये कमरा बिजली कनेक्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने वाले एक कंट्रोल रूम से कहीं बढ़कर है। यहाँ स्थापित की गई तकनीक ये जानने में मदद करती है कि नेटवर्क पर एक या एक से अधिक धोखाधड़ी हुई है या नहीं। सीबी के इंजीनियर विमल रामजीत ने कहा, हमारी मीटर लैब टीम ने हमारे नेटवर्क में काफी प्रगति की है जहां दूर से संचार मिलता है। अगर कोई मीटर रीडर से छेड़छाड़ करता है तो हमें पता चल जाता है, चाहे वो देश के किसी भी जगह में हो, तब हमारी टीम जांच के लिए हस्तक्षेप करने जाती है। इस प्रकार आम लोगों और कंपनियों द्वारा बिजली चोरी से जुड़े कई बिलियन रुपयों के नुकसान का पता चला है। इसके समानांतर बिजली चोरी के किसी भी मामले की शिकायत करना भी संभव है। सीबी के पास एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो मीटरों की जांच के लिए मॉरिशस और रोड्रिग्स का दौरा करती है। ग्राहक 86130 हॉटलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, खुद सीबी दफ्तर जा सकते हैं या फिर डाक द्वारा शिकायत कर सकते हैं। गुप्त तरीके से इन मामलों की जांच की जाती है। पिछले साल सीबी ने बिजली चोरी के 300 से अधिक मामले दर्ज किए थे। ये कृत्य कड़े दंड और भारी जुर्माने के अधीन है। अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है तथा 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। आने वाले दिनों में इस अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने और बिजली नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए सीबी अपनी जांच और निगरानी को और तेज करने की योजना बना रहा है।
0: सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन ने तकनीकों में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा की है। अस्ताना में आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस ने विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक समुदायों को साथ लाकर एक AI गठबंधन स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन किया जाए ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कि क्षेत्र में सहयोग और शोध को और मजबूत किया जा सके। बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर। पूर्व से आने वाले अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दिन के दौरान विशेषकर देश के पूर्वी और ऊंचाइयों वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी, कोहरा छाया रहेगा और शाम के समय पूर्वी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाके पर बारिश होती रहेगी। बाद में आसमान साफ होगा विशेषकर रात के दौरान। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा सुबह के समय पूर्व की ओर से हल्की बहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बारिश के समय झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। आज सूर्योदय सुबह 6:37 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देती हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी कादर हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देती हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में अब हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। बेटका रोड लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 53 साल की 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सलोनी चोइतन पैदाश नाम जीतू है, जिन्हें सलोनी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके पति श्री दनन चोइतन के घर लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। डिस्पेंसरी रोड विचामिल्ट्रियोली में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय सुकन जिन्हें अजय के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती वनेशा सुकन के घर विचामिल्ट्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन त्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मॉस्को रोड रिविया जोरोपो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री माधु रघुआ जिन्हें रोहित के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर रिविया जोरोपो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। मोसेलमो फुंडन पालमा काठुपोन में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती चेदी पैदाशना पंचाय और जिन्हें दानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन की 2 बजे उनके पति श्री मोहित चेदी के घर काठुपोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्री ऋषि पीरू जिन्हें अजय मौसा के बाप के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी शमिला पीरू के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। एवेन्यू उस्मान सेंट पॉल फिनिक्स में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती नंदानी बाई लीला पैदाशी नाम सीताराम और जिन्हें नंदिनी जीजा बाई के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति हरीश लीला के घर सैंपल फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियो कस्टेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। फाउंडेन रोड रोशनो में 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पेचाय रामासामी पैदाशम पेमाल और जिन्हें इंद्रानी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है।

उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर होशनों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोतलास्को की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमिश्नर टुडिया 2 PM रॉय रोड क्लेमोशा में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शामा देवी दसोई पैदाश नाम रामयाद और जिन्हें दिव्यानी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे राजू दसोई के घर क्लेमोशा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमिश्नर टुडिया 10 AM साइप्रस लेन लामारिवाक्वा में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्री देबी अंचाराज जिन्हें केसु के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है और जो पहले फिनिक्स बेवरेज में काम करती थी। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर लामारिवाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टीडिया 10 AM कॉलोव्यू स्ट्रीट ओकुले में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधा सिबोरत पैदाश नाम भूना और जिन्हें सुनामती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेश सिबोरत के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडिया 10 AM मॉकेट रोड लॉन्ग माउंटेन में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांता कुमारी बिसुंदयाल जिन्हें तारा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे कुनल बिसुंदयाल के घर लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमाशा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडियर 11 AM नेहरू रोड लालमाटी में 22 साल की 22 ईयर्स ओल्ड के श्री भविष्य खुदी जिन्हें भविष्य के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके पिता उत्तम कुमार खुदी के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM लाक्लीमा ओस रिविया जोरोपो में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पायदामा अपादू पैदाश नाम रामानाओ जिन्हें अनंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके बेटे आत्मा अपादू के घर रिविया चौपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8 AM मोसेल मारोई बेले रिविया सेश में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानादेन श्रीनिवासन जिन्हें संदेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विनोदा सिनेवासन के घर बेलेरविये सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भूषों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:58 और 13 सेकंड हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 के शुरू होने से 12 दिन पूर्व फुटबॉल जगत भभक उठा है और मिकेल आर्टेटा भड़क उठा है। हम यहां पर ट्रॉफी जीतने आए हैं पेरिस सेंट जर्मेन से, कहा आर्सेनल के कोच मिकेल आर्टेटा ने। आज रात 8 बजे से होगा फैसला यूरोप के बादशाह का, कौन बनेगा चैंपियन यूरोपियन चैंपियंस लीग में। यूरोपियन चैंपियंस लीग की रात फाइनल मुकाबला आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच आज रात 8 बजे से बुडापेस्ट के पुष्कास अरेना से आपके टीवी सेट पर लाइव एमबीसी टीवी के सौजन्य से आर्सेनल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन रात 8 बजे से सीधा प्रसारित किया जाएगा एमबीसी टीवी के चैनल 11 पर। पेरिस सेंट जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन है और अटैकिंग फुटबॉल में

मास्टर प्लेमेकर उस्मान डेम्बेले शत प्रतिशत 100% फिट बताया जा रहा है। मार्किन्योस, अशरफ हकीमी, विचिनिया, बाकोला, होआउ नेवेस, क्विचा कारात्स्केलिया, डेजिरे डुए और कोच लुइस एनरिके ने भी कहा कि पेरिस सेंट जर्मेन की प्रेरणा का स्रोत है बैक टू बैक चैंपियंस लीग टाइटल जीतना, यानी एक ब्लिंग ब्लिंग क्लब से यूरोप का पावर हाउस बनाया लुइस एनरिके ने पेरिस सेंट जर्मेन को। किंतु दूसरी ओर एक ढीठ आर्सेनल और उसका सॉलिड डिफेंस फाइनल में इसलिए

और इसलिए भी क्योंकि राजा का ही बेटा राजा नहीं बनेगा इस बार आर या पार, क्योंकि हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारा ये अधिकार है यहाँ पर आने के लिए। बुकायो साका, जूरियन टिम्बर और नोनी माडुए के भी फिट बताए जा रहे हैं। डेक्लान राइस, डेविड राया, गैब्रियल मार्टिनेली, एबरेची एजे, काई हावर्ट्स, विक्टर ग्योकरेस और कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड के साथ। सो आज रात 8 बजे MBC 11 पर लाइव आर्सेनल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन। यूरोप में ही द स्पेशल वन वापस लौट आया है। यूजी मुरीनो ने अपने पुराने क्लब रियल मैड्रिड के साथ 3 साल के कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए, यानी मुरीनो मुड़ी गार कर फिर पहुंचा सांतियागो बेर्नाब्यू में, जहां पर उसने साल 2010 से 2013 के बीच 3 सालों के अंतर्गत लालीगा, कोपा डेल रोआ और स्पैनिश सुपर कप भी जीते हैं। क्साबी अलोंसो और अभी हाल में अल्वारो अबेलोआ को निकाले जाने के बाद यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीम रियल मैड्रिड की कमर ही टूट गई थी। एक भी ट्रॉफी हाथ न लगी, ऊपर से उसका एक भी खिलाड़ी स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, इसलिए क्लब की कमर सीधा करने आ रहा है यूजे मुरीनो। किंतु इस नियुक्ति में एक शर्त भी है, कंडीशन भी है। योजे मुरीनो को तभी हेड कोच बनाया जाएगा यदि और जब वर्तमान अध्यक्ष प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेज प्रेसिडेंशियल चुनाव जीत जाए, यानी 7 जून तक मुरीनो को इंतजार करना पड़ेगा। फुटबॉल में ही ऐसा मालूम पड़ता है कि लिवरपूल का फ्रेंच डिफेंडर इब्राहिमा कोनाते अपने क्लब लिवरपूल को एक फ्री ट्रांसफर सौदे पर छोड़कर जा रहा है। नए कंट्रैक्ट को लेकर एक लंबी बातचीत के असफल होने के बाद इब्राहिमा कोनाते भी जा रहा है। मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के बाद इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, यानी बिजनेस में भी लिवरपूल बेकार साबित हो रहा है। फिर भी 21 वर्षीय 21 ईयर ओल्ड फ्रेंच डिफेंडर जेरेमी जाके को 60 मिलियन पाउंड में पिछले साल ही साइन किया जा चुका है। हालांकि वो रेन में ही लोन पर था और नए सीजन से वो वर्जिल वान डाइक और जोवानी लियोनी के साथ डिफेंस संभालेगा। न्यूकासल यूनाइटेड का फॉरवर्ड एंटोनी गार्डन एफसी बार्सिलोना का हो गया। अभी कल रात ही सौदा तय हुआ, दाम 69.3 मिलियन पाउंड। खबर है कि एंटोनी गार्डन ने अपना मेडिकल भी पूरा कर लिया है और 25 वर्षीय एंटोनी गार्डन को न्यूकॉम में प्रस्तुत भी किया गया। क्लब को उसका वर्क एथिक्स और एप्लीकेशन बड़ा ही पसंद आया। इससे ये भी हुआ कि अब मार्किश राशफोर्ड का पत्ता कट गया है। राशफोर्ड 29 साल का है जबकि गार्डन केवल 26 साल का है। मैथमेटिकली गार्डन को बेचा भी जाए 3 साल बाद तो उससे पैसा प्राप्त हो सकता है, लेकिन मार्किश राशफोर्ड अब जाएगा कहाँ? रहेगा बार्सिलोना में या फिर वापस जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में? सुनते रहिए। वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में कुछ मैच अभी खेले जा रहे हैं। सो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में कल ईरान ने गैम्बिया को 3-1 से हराया। दक्षिण अफ्रीका 0, निकारागुआ 0, बोस्निया 0, नॉर्थ मैसेडोनिया 0। इराक ने अंडोरा को 1-0 से हराया। लेबनान और सूडान वाला मैच रद्द कर दिया गया। आज भी वर्ल्ड कप की तैयारी के रूप में कई अन्य मैच खेले जाएंगे। स्कॉटलैंड वर्सेस कुराचाओ, जमैका का मुकाबला नाइजीरिया से, इंडिया खेलेगा आज जिम्बाब्वे के विरुद्ध और बहुत सारे मैच अभी और आने वाले हैं। टेनिस को भी लगता है लकवा मार गया है। विश्व नंबर 1 यानिक सिनर के लुढ़कने के बाद लेजेंडरी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी फ्रेंच ओपन रोलांग गारोस में थकान और एज फैक्टर का शिकार हुआ। युवा खिलाड़ी होआओ फोनसेका ने उसे कल रात 5 सेटों के बाद 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 और 7-5 से हराया। यानी 2 सेट नोवाक जोकोविच दो प्रथम सेट जीत रहा था लेकिन बाकी 3 सेट वो हार गया। आयु बढ़ गई है, 39 ईयर ओल्ड का हो गया है, यानी कि फॉर द टाइम चला आया है नोवाक जोकोविच के लिए। यदि वो ये फ्रेंच ओपन जीत जाता तो एक नया रिकॉर्ड बनाता सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल 19 वर्षीय

0: वाओ फोंसेका ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। लड़कियों में 2023 की फाइनलिस्ट कैरोलिना मुकोवा भी आउट, उसे हराया। वर्ल्ड नंबर 170 जिल टेचमान ने, वो भी बहुत ही बुरी तरह से, यानी 6-1 और 7-5 से। बाकी के मैच आज और कल जारी रखे जाएंगे फ्रेंच ओपन रोलों का। उसमें क्रिकेट में युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के 96 रनों के बावजूद शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से परास्त कर आईपीएल के फाइनल में कदम रखा। राजस्थान ने पूरे 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन जड़े, जिसके जवाब में गुजरात ने केवल 3 विकेट गंवाकर 18वें ओवर में ही ये लक्ष्य पूरा किया। यानी आईपीएल का फाइनल अब कल रविवार को खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भूलेगा नहीं, आज रात 8 बजे यूरोपियन चैंपियंस लीग का महाफाइनल पुस्कस अरेना में पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस आर्सेनल लाइव एमबीसी टीवी के चैनल 11 पर। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आज की सूचनाएं।
3: शुक्रवार 29 से रविवार 31 मई 2026 तक जुब्रे काली माता मंदिर में महाकाली पूजा का आयोजन किया गया है। शनिवार 30 मई को कैलाशनाथ मंदिर कोंगोमा में पूर्णिमा पूजा और तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है शाम के 6 बजे।
4: आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है मॉरिशस तमिल टेंपल्स फेडरेशन की तरफ से वैगासी विसागम विदाई मुरम कावड़ी के अवसर पर शनिवार 30 मई 2026 को विभिन्ना कोविल में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा और कावड़ी का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और सिंदामा काली सभा अवलाल माची द्वारा मौस्योलुफे और असोंसियों स्योलिसाब्र का पवित्र आयोजन रविवार 7 जून 2026 को टैगोर रोड लालमाची में किया जाएगा। भजन प्रार्थना और शोभा यात्रा के साथ भक्ति का माहौल बना रहेगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने परिवार सहित उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और इंडोमोगास वुमेन्स एरा के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन शनिवार 6 जून 2026 को ट्रिबेका पार्किंग में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। आइए रक्तदान करके किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान दें। बी अ लाइफ सेवर, डोनेट ब्लड। शुक्रिया।
5: सरस्वती सभा माहिजानी होजबेल सभी भक्तों को सूचित करता है कि शिव पुराण का आयोजन 1 जून से 6 जून तक किया जाएगा। कार्यक्रम कुछ इस तरह। सोमवार से शुक्रवार कार्यक्रम की शुरुआत होगी शाम 7:30 बजे। शनिवार 6 जून को 3 बजे से ग्रह शांति पूजा पूर्ण होती और गौ पूजा, जिसके बाद महाप्रसाद भी दिया जाएगा। वेद प्रतिष्ठान गुरुकुल हवन और सत्संग का आयोजन रविवार 31 मई दोपहर 4 बजे कर रहा है। जगह वेद प्रतिष्ठान गुरुकुल लावंचुआ।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ओएमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नो ट्रावाई नो लावेनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्टेटलर मॉरिशस लिमिटेड जन रॉयल रोड पीतो में पावल जाला 20 मेल हाई प्रेसिजन मेकानिक्स खो जाता जिनकर फॉर्म 3 संगे इंडस्ट्रियल मेकानिक मिल एक्सपीरियंस बाटे। साथ में खो जाता 20 मेल फैक्ट्री वर्कर्स जिनकर फॉर्म 3 बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे फैक्ट्री जाके माने की रॉयल रोड पीतो जाके अपन अर्जी सबमिट कर दिया नतस

0: कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में मोहम्मद रेजा तुगाबाली जन JSS रोड गुडलैंड्स में पावल जाला दुगो मेल ग्रेड टू मासों खोजता जिनकर दो बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे तीन मेल मासों हेल्पर्स जिनकर तीन बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे और दुगो मेल ग्रेड टू कारपेंटर्स जिनकर दो बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे अप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिए 57 83 96 96। अप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 12 जून 2026। प्रिंटिंग के सेक्टर में प्रेसीग्राफ लिमिटेड जोन एवेन्यू सेंट विंसेंट दे पॉल पाई वेस्ट में पावल जाला 5 मेल और फीमेल मशीन ऑपरेटर्स खोजता जिनकर फॉर्म सेक्स संगे मैकेनिक्स में जानकारी बाटे साथ में 5 मेल और फीमेल प्रेस ऑपरेटर्स जिनकर 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बाटे और एगो मेल और फीमेल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटर खोजता जेकर डिप्लोमा बाटे अप्लीका सोगरे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिए https://www.precigraph.mu/en। जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोने करिए 52 54 72 92 न सकबा हो जे ऑफिस जाके अपन अर्जी भर दी है अप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में फ्रेजियर द क्यूएपिप लिमिटेड जोन दे ब्रा रोड न्यू ग्रोव में पावल जाला 4 मेल लॉरी ड्राइवर्स खोजता जिनकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे साथ में 4 मेल प्राइवेट कार ड्राइवर्स जिनकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे 8 मेल हेल्पर्स और 6 मेल फील्ड क्रॉप लेबरर्स अप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिए 665 60 60। अप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। पारास्टेटल के ही सेक्टर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जन महात्मा गांधी रोड मोका में पावल जाला एगो मेल और फीमेल लेक्चरर
1: स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स
0: जन एगो मास्टर्स डिग्री होल्डर बा अप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिए https://www.mgirti.ac.mu/। अप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 3 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में कोमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन CCCC जन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड 3rd फ्लोर फुक्स हाउस बोबो स्ट्रीट पोर्ट्रीस में पावल जाला एगो डायरेक्टर कॉर्पोरेट सर्विसेज खोजता एगो अरबिक ट्रांसलेटर और एगो फ्रेंच ट्रांसलेटर खोजता अप्लीकेशन करे खातिर मिनिस्ट्री के वेबसाइट मानी कि https://foreign.gov.mu.org/pages/vacancies.aspx नत कोमेसा सेक्रेटरिया के वेबसाइट विजिट करिए https://www.comesa.int/ नत कोमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन माने के CCCC के वेबसाइट https://comesacompetition.org/। जन कैंडिडेट इंटरेस्टेड होवन चाहेला उनकरा अपन एप्लीकेशन संगे एगो सॉफ्ट कॉपी विदा करे के CCCC ई वेबसाइट पर recruitment@comesacompetition.org और चाहेला एगो कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के ई वेबसाइट पर भी mofasa@govmu.org। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 17 जून 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में यूनियन पार्क के रिज्यूम में एगो हाउसमेट खोजल जाता एप्लीकेशन करे खातिर EIC रोजबेल टेलीफोन करिए ई नंबर पर 677 48 33। कोंगोमा के रिज्यूम खातिर एगो हाउसमेट खोजल जाता जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे और एप्लीकेशन करे खातिर चाहेला फोन करे के EIC गुडलैंड्स के नंबर पर
1: 282 59 17 नत 282 59 18।
0: और पेटी राफ्रिक रिज्यूमे

0: एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉई के खोज बाटे कौजिदा के चाहेला एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के होल्डर होई के और हैंडीमैन वर्क गार्डनिंग और सिक्योरिटी ड्यूटीज जन बाटे इनकर बेसिक स्किल्स चाहेला होई के एप्लीकेशन करे खातिर ईआईसी गुडलैंड्स टेलीफोनी करिया 282-59-17 ना 282-59-18 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से नू थावाई नू लावेनिया
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर
3: चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, आप सभी को अजय प्रताप सिंह से तालुका प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 7:22 हो रही है, सभी लोगों का हम शानदार स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। सुबह का नजरा प्रोग्राम लाइव MBC रेडियो मॉरिशस पर और लाइव MBC के टिकटॉक पेज, रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हम लाइव है। सो आप हमें देख रहे हैं टिकटॉक लाइव पर, हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, क्या बात है। और आज का दिन, आज की तारीख भी बहुत खास है। आज है शनिवार 30 मई 2026 और बेशक इस वीकेंड को मना रही है मदर्स डे, मातृ दिवस। अभिनंदन आप सबको। और हम जानते हैं कि घर में हलचल है, चहल पहल है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, बहुत से लोग अपनी सासू के माँ के यहाँ जाएंगे, कुछ लोग अपनी माँ के यहाँ आएंगे घूमने के लिए। सो घर में बहुत सारा काम पड़ा है, खाना भी बनाना है। आई नो। सो आप लोग काफ़ी बिजी हैं, फिर भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह का नजाना प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चलेगा अभी से लेकर 9 बजे तक और शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ डॉक्टर झमन जी द्वारा।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: कल्पना में मोहक और प्रिय प्रतीत होती हुई भी उसकी यथार्थ बातें सदा प्रिय नहीं होती।

कहते हैं दोस्तों कि जब एक माँ अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर प्यार करती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऊपर से फूल बरसाते आशीर्वाद देते हैं कि देखो क्या दृश्य है। जैसे कृष्ण भगवान जब बालक थे और यशोदा माँ उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करती है, देवकी माँ कृष्ण भगवान को सीने से लगाकर प्यार करती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश होते हैं। माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत खास होता है, बहुत प्यारा होता है। और माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, फिर इसे दुनिया में लाती है, बहुत कुछ सिखाती है उसे, और धन्य है माँ, है ना। सो

आज हम मना रहे हैं मातृ दिवस। हम जानते हैं कि आप लोग अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, सो हम तो कहते हैं कि रोज मदर्स डे होना चाहिए इफ यू रियली लव योर मॉम, है कि नहीं। सो चलिए यह प्यारा सा गाना सभी माताओं के नाम। खुशियों का दिन आया है, आज एक माँ ने अपने बेटी को प्यार से बुलाया है।

खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज की एक माँ ने बेटे को प्यार से बुलाया है, क्या बात है। यस, आप डेडिकेशन कर सकते हैं कैट जरो जरोसैंक या हमारे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमें मैसेजेस के जरिए। सो हैप्पी मदर्स डे टू लेडी जैगो जो हमें देख रही है, साथ में हैप्पी मदर्स डे टू एमा मालिनी और वो भी हमें देख रही है टिकटॉक पेज पर। हेलो दूश, ये गीत आपके नाम भी, हैप्पी मदर्स डे टू योर मॉम एंड जितने भी लोग इस पर्व को मना रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे। विक्की गणेश, आपको भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को। प्रियंका नायक को हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। और गीत आएगा मदर मदर डियर मदर, और एसएमएस की ओर देखते हैं। तो एक एसएमएस है, हैप्पी मदर्स डे टू लवली मामा देवयानी गजाधर मोदीजेर रोड प्लान प्लान मायो बेटी रानी वीना उमा इंदिरा सरिता बेटा राज राजनीश कवि युवराज किश्ती नातिन चिविश्का तुलसी और मोदल बे। ऑलराइट, हैप्पी मदर्स डे अनिता लाल जी, आप रहती हैं मॉडल बे, सो हैप्पी मदर्स डे आपको। विक्की गणेश भी मैं फॉलो कर रही हूँ, हेलो जी कैसे हैं आप। आप सबों को, जितने भी लोग टिकटॉक पे जरा में देख रहे हैं, आप सभी को मदर्स डे। सलीमा सलाम वालेकुम आपको, हैप्पी मदर्स डे। और बेशक लाइन खुली हुई है, ये मत कहिए हमने आपको मौका नहीं दिया। 4028085 पर या टिकटॉक पेज पर आप अपने एसएमएस के जरिए मदर्स डे की शुभकामनाएं विश कर सकते हैं। आज स्पेशल मदर्स डे पर प्रोग्राम हम चला रहे हैं, सुबह का नजाना 7 AM टू 9 AM ऑन MBC रेडियो मॉरिशस लाइव ऑन टिकटॉक पेज। और अगर ऑनलाइन हमें सुनना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए www.mbcradio.tv और क्लिक करें लिसन रेडियो मॉरिशस। ऑलराइट, विलियम जगू मोंट्रियल कनाडा से है, हेलो जी। सो आपको भी और आपकी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे विलियम जगू। और कनाडा में जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप सबको हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, मदर मदर डियर मदर, बहुत ही प्यारा सा गाना। और कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में एक शख्स वो माँ ही है जो हमेशा अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचती है। वो चाहे दुख में हो, कठिनाइयों में हो, चाहे उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर वो अपना प्रॉब्लम्स छुपाकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने बच्चों को देती है ताकि उसके बच्चे हमेशा खुश रहे। ये जो माँ है ना, सचमुच बहुत महान है, बहुत प्यारी होती है ये माँ। सो ऑल मदर्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, ये गीत आपके नाम।

0: मदर्स डे जो है प्रेम त्याग ममता और बच्चों के लिए उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन माँ के प्रति आभार व्यक्त करने और उन्हें विशेष महसूस कराने का अवसर होता है। और दुनिया के कई देशों में जिनमें मॉरिशस, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा शामिल है, मदर्स डे मई महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। सो अंतिम रविवार है इस कल, तो आज से तैयारियां हो रही है। और आधुनिक मदर्स डे की शुरुआत अन्ना जर्विस ने अपनी मां की स्मृति में की थी। उनके प्रयासों के बाद 1914 में वुड्रो विल्सन ने इसे अमेरिका में आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन लोग अपनी मां को उपहार देते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं, कार्ड बनाते हैं और उनके प्रति अपना प्यार व सम्मान व्यक्त करते हैं। सो आशा करते हैं कि आज आप अपनी मम्मी, आज इस वीकेंड को आप मम्मी को कोई घर का कामकाज नहीं करने देंगे। मम्मी को जो है उन्हें बैठाइए, उनसे बात कीजिए, समय बिताइए, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अच्छे अच्छे तोहफे दीजिए, ठीक है। और इसमें बहुत से लोग अभी लाइन पे जुड़े हुए हैं और फ़ोन करना चाहते हैं, सो लाइन खुली हुई है। हेलो, एक फ़ोन लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते लीला जी, बुआशेरी से है आप ना?
1: मातृ
0: दिवस, हैप्पी मदर्स डे।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ, आपके परिवार को भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और आज आप किसको याद कर

0: रही है।
1: हाँ तो मैं, मेरी माँ तो नहीं है,
0: हाँ,
1: लेकिन बच्चों लोग हैं, तो बच्चों लोग आएंगे तो मदर्स डे मनाएंगे कल।
0: हाँ,
1: तो सभी माताओं, जितने देश भर की माताएं हैं, उन सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही
0: बहुत
1: हूँ।
0: बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी, शुभ दिन आपको।
0: शुभ दिन कहते हैं आपको भी। सो ये थी लीला जी बॉशरी से, और उनकी तो माँ नहीं है पर आज वो एक माँ है। सो जितने बच्चे अपने मम्मी के यहाँ जाएंगे या सासू माँ के यहाँ, सो हैव ए ग्रेट डे अहेड, समय अच्छी तरह से बिताइएगा। सरिमा हमें देख रही है टिकटॉक पेज पर, अगला गीत आपके नाम। सुमा भी है हमारे साथ, सागर सागर साहब है वो भी हमें देख रहे हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए एक प्यारा सा गीत माँ पर, ओ माँ तुझे सलाम। संस्कारी जी, हाँ ये गीत आपके नाम भी, और आप हमें देख रहे हैं सुन रहे। शैलेश नंदुल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस, और रेडियो मॉरिशस पर सुनने के लिए। और संगीता मिरन लाहौजा से है, आप अपनी मामा को विश करती है हैप्पी मदर्स डे। आपकी मामा रहती है कास्टेल, और आपकी और एक माँ है मोहतबा में, रीता सीतालू। सो संगीता मिरन की ओर से रीता सीतालू को हैप्पी मदर्स डे। एंड यही प्यारा सा गीत सन के नाम। माधव अपनी मामा चीना को कहती है हैप्पी मदर्स डे, और संजय और संजय बिहारी के परिवार को भी हैप्पी मदर्स डे। और जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर और हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, सो यह अगला गीत आपके नाम, ओ माँ तुझे सलाम।

देवियो सजनो सांस रवास के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी गीत के साथ ही सुबह का नजराना इस प्रोग्राम का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे ज्ञान सर्वर प्रोग्राम, उसके बाद 8 बजे होगा भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और साथ में टिकटॉक पेज पर भी। सो सुनते रहिए रेडियो मॉरिशस और देखते रहिए रेडियो मॉरिशस को टिकटॉक पेज पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू MBC रेडियो मॉरिशस।

8 बजे के भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करा जाता है। सबसे आगे आप सब लोग की प्रणाम नमस्ते और देश के समाचार से के संगे ई समाचार बुलेटिन शुरू करी जा। अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली से आयोजित 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स के विभिन्न गो संस्था के लगभग 50 गो प्रतिभागी लोग भाग ले लन जा।

राष्ट्र संगठित अपराध से निपटे खातिर स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली के मजबूत करे के आ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के आ सुदृढ़ करे के रहल। रोड्रिक्स मॉरिशस और रोड्रिक्स में मतदाता पंजीकरण अभियान आज दिन के 1 बजे समाप्त हो। चुनावी सूची के अपडेट करे खातिर ई एगो बड़ा संख्या में एगो बड़ा कदम है, जेकर खातिर बड़ा संख्या में आदमी अपन विवरण के जांच आ संशोधन कराए खातिर केंद्र देने बढ़त हुआ। जा याद रखिए कि आप लोग खातिर खाली दिन के 1 बजे ले समय बाटे। आर रोड्रिक्स में भी जैसे जानत हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज समाप्त हो। ई बरिस ई प्रक्रिया विशेष परिस्थिति में पूरा कर जाता। प्रशासनिक स्तर पर ई अभ्यास चुनावी तैयारी खातिर एक अहम कदम मानल जाता। याद रखिए कि रोड्रिक्स में 33,660 गो मतदाता पंजीकृत हवन जा। और रोड्रिक्स में ही रही ला जा हुआ परी रोड्रिक्स के बेलास्को स्थित एगो नवा समुद्र तट क्षेत्र के नाम अब बदल के प्लस रास्नाची बेबी रखल जाता। कार्यकारी परिषद ई निर्णय प्रसिद्ध रोड्रिक्स कलाकार जोसेफ निकोला एमिलिए जिकरा रास्नाची बेबी के नाम से भी जानल जाला के श्रद्धांजलि दे के उद्देश्य से ऐसे करल जाता। अधिकारी लोग के अनुसार ई नामकरण ओकर सांस्कृतिक योगदान संगीत के क्षेत्र में उनकर उपलब्धि या रोड्रिक्स की पहचान के मजबूत करे में निभाए गल होला उनकर महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मानित करेला। इस पहल के माध्यम से रोड्रिक्स के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षित करे की आर आय होला पीढ़ी ले ओकर योगदान के पहुँचाए के ई एगो प्रयास है। आर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के सीईओ डिजिरे वेंकटाचलम आज 30 जून के अपन पद से इस्तीफा दे दी हन। उनकर ई निर्णय पारिवारिक कारण से लेवल जाता काहे कि उ विदेश में अपन उपस्थिति सुनिश्चित करियन। गौरतलब बाटे कि उ सितंबर 2025 में ई पद संभाले के शुरू कर ले रहलन और उनकर कार्यकाल 1 बरिस से कमती समय के रहल बाटे। FSC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ई आश्वासन दिले हवन जा कि संस्था के काम में निरंतरता बनल रही और सब परिचालन गतिविधि सामान्य रूप से जारी रखल जाए। एकर संगे बोर्ड उनकर उत्तराधिकारी के नियुक्ति खातिर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे के भी घोषणा करियन। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल यानी नादिक देने से गठित कैनाबिस नीति सुधार संबंधी तकनीकी समिति के सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया खातिर शुरू करे गल बाटे। ई पहल के तहत नागरिक लोग लगे 21 जून ले नादिक के ऑनलाइन मंच पर जाके अपन विचार सुझाव आ सिफारिश प्रस्तुत करे के आमंत्रित कर जाता। ई परामर्श के उद्देश्य कैनाबिस से संबंधित संभावित नीतिगत सुधार पर आम जनता के दृष्टिकोण आ राय इकट्ठा करल जाता। मिलल सुझाव आर प्रतिक्रिया के उपयोग तकनीकी समिति के समीक्षा आर विचार विमर्श प्रक्रिया में करल जाए। अभ्यास के अंत में तैयार कर गए सब सिफारिश के अंत के अंतिम निर्णय खातिर सरकार के आगे एकरा प्रस्तुत करल जाए। और हमने आपके बता देवी लाजा कि काल मंत्रिपरिषद की बैठक लगल जेकर में ही नोट कर गल कि पर्यावरण मंत्रालय मई 2026 के शुरू से तमागे सार्वजनिक समुद्र तट पर दिखल गल तटीय कटाव यानी इरोजन के संबंध में जहाँ पर ही आप लोग के बता देवी लाजा कि बालू जोन बाटे उधोआ के समुद्र में जाता। एक संबंध में फ्रांस के विशेषज्ञ संस्था ब्यूरो दे रिसर्च जियोलॉजिक एमिनेर के तकनीकी सहयोग प्राप्त हो। इस सहयोग फ्रांसीसी विकास एजेंसी के माध्यम से करल जाता। BRGM के तटीय कटाव के कारण के पता लगाए की जिम्मेदारी रही और एक संगे स्थानीय हितधारक लोग से परामर्श करे के और उपयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करे की भी जिम्मेदारी सौंपल जाता। संस्था से ई भी अपेक्षा करल जाता कि ई दीर्घकालिक समाधान लागू होइले आदमी आ सब संपत्ति के रक्षा खातिर अतिरिक्त अस्थायी उपाय सुझाए। गौरतलब बाटे कि तमागे के रहे होला आर सामाजिक कार्यकर्ता PSC यिप्तोंग बहुत आगे तटीय कटाव के खतरा के लेके चेतावनी देले रहलन। ई बीच मंत्रिपरिषद ई भी संज्ञा ले बाटे कि आवास आर भूमि मंत्रालय बालाकलावा पंटुपीमा में स्थित 1 बीघा
पे

0: पेयश क्षेत्रफल होला भूखंड के फिनोसिस सार्वजनिक समुद्र तट के रूप में ओके डाली यानी कि ओके वर्गीकृत करल जाए एक पर विचार हो। भूमि परिस 2008 में सार्वजनिक समुद्र तट के श्रेणी से ओकरा हटा देवल गल रहल। एकर अलावा मध्य परिषद अभी जल संकट पानी के लिए के जन समस्या हुआ था एक स्थिति के दिखत लोकल गवर्नमेंट मंत्रालय दिने से कौवाश के सब गतिविधि के नियमित करे खातिर लागू करल जाए होला उपाय की भी जानकारी देलन। ई कदम के उद्देश्य पानी के संरक्षण के बढ़ाई के आर उपलब्ध जन जल संसाधन बाटे ओकरा बुद्धि से उपयोग करे के सुनिश्चित करे के उपाय करी। आज दूसरा देश के समाचार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैश्विक तकनीकी सहयोग के बढ़ावा दे खातिर एगो नवा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की घोषणा करने बाटे। उ आवत बरिस रूस में एगो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन आयोजित करी एकर प्रस्ताव उ आगे रखली हवन। तेरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भेल। ध्यान से सुन ल खातिर धन्यवाद। संगे रह अभी बढ़ब जा मरनी के समाचार देने।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: मरने के समाचार सुना। रॉय रोड लाहौजा में 3 करोड़ 18 लाख की 78 लाख की श्रीमती विद्वंती रामित पैदाशी नाम जवाहिर राजनगरा ज्ञानती के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल भट्टी। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे कर पति श्री देवा रामित के घरे लाहौजा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मारिजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डी 2 PM। बैटका रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दिफ्लाक में 53 बरिस के 2 करोड़ 13 लाख के श्रीमती सालोनी चौतन पैदाश नाम जीतू है जिनका सलोनी के नाम से भी आदमी जिससे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर पति श्री दनन चौतन के घरे लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दिफ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मिजिन कौदेवास की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी 8 नून। डिस्पेंसरी रोड विचामिल थ्रियोली में 51 बरिस के 2 करोड़ 11 लाख के श्री अजय सुकन जिनकर अजय के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी वानिशा सुकन के घरे विचामिल थ्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन थ्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी 2 PM। मॉस्को रोड रिविया जोरांपो में 76 बरिस के 3 करोड़ 16 लाख के श्री माधो रघुआ जिनकरा रोहित के नाम से भी आदमी जैसे आंथन जाके मृत्यु होकर बटेन कर अर्थी आज दिन के 12 बज के आधा इनका घर रिविया जोरांपो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डे 8:30 PM। मुसलमान फुंडन पालमा काटोबोन में 76 बरिस के 3 करोड़ 16 लाख के श्रीमती चंद्रावती चेदी पैदाशी नाम पंचाय आर जिनकरा दानी के नाम से भी आदमी जिस जानते हैं जाकर मृत्यु होकर बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पति श्री मोहित चेदी के घरे काटोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डी 2 PM। जगदम्बी रोड गुडलैंड में 55 बरिस के 2 करोड़ 15 लाख के श्री ऋषि पीरू जिनकरा अजय मौसा के बाप के नाम से भी आदमी जैसे जहाँ था जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी काल फजीर के 10 बजे इनकर पत्नी श्रीमती शर्मिला पीरू के घरे गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टुमोरो 10 AM। एवेन्यू उस्मान सैंपल फेनिक्स में 59 बरिस के 2 करोड़ 19 लाख के श्रीमती नंदनी बाई लीला पैदाश नाम सीताराम आज इनका नंदिनी जीजाबाई के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर पति श्री हरीश लीला के घरे सैंपल फिनिक्स से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलिब्रियों कास्तेल के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डे 1 PM। गर्ल दे लू वेद सैंपिया में 69 बरिस के 3 करोड़ 9 लाख के श्रीमती तिलोत्तमा धनुआ पैदाश नाम फिकनाथ आज इनकरा सुरेखा के नाम से भी आदमी जैसे जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा कृष्णा कुमार धनुआ के घरे

Where their sepia se utha ke antim sanskar khatir sekon sa sepia ki shamshan bhumi le jawal jaye cremation to the at 2 p.m. Fondenrain Road, Roshnoa mein, 76 baris ki, Tinkuri 16 baris ki, Shrimati Pichai Ramasamy, Paidashi naam Payamala, jinkara Indrani ke naam se bhi admi jaise jaante hain, jaake mrityu ho gal bati, inkar arthi, aaj din ke 2 baje inka ghar hai Roshnoa se utha ke antim sanskar khatir, Poddilaskar ke shamshan bhumi le jawal jaye cremation today at 2 p.m. Royal Road, Clemenceau mein, 70 baris ki, Tinkuri 10 baris ki, Shrimati Shama Devi Desoi, Paidash Ram Ramayad, Ajinkara Divyani ke naam se bhi admi jaise jaante hain, jaake mrityu ho gal bati, inkar arthi, aaj din ke आज फजीर के 10 बजे इनका बेटा राजू दसोई के घर एक लिमोशा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडिया 10 एम साइप्रस लेन लामारी एवाकुआ में साइप्रस लेन लामारी एवाकुआ में 70 बरिस के 70 ईयर्स ओल्ड के तिनकुरी 10 बरिस के श्री देबी अचाराज जिनकरा केसु के नाम से भी आदमी जैसे जान धन जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी और वो आगे फिनिक्स बेवरेज में काम करतरन उनकर अर्थी आज फजीर 10 बजे इनकर घरे लामारी वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डी एट 10 एम कॉलोव्यू स्ट्रीट ओकुले में 83 बरिस के 4 कोरी 3 बरिस के 30 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधा सिबोरत पैदाश नाम भूना आज इनका सोनामती के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज फजीर के 10 बजे इनकर बेटा राजेश सिबोरत के घरे ओकुली से उठा के अंतिम संस्कार का तीर आली भैयाओं के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टू डिया 10 एम मॉकेट रोड लॉन्ग माउंटेन में 65 बरिस के 65 ईयर्स ओल्ड की 3 कोरी 5 बरिस के श्रीमती शांता कुमारी बिसुंदयाल जिनकरा तारा के नाम से भी जस्ती जान थलन जाके मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज 11 बज के आधा इनकर बेटा कुनाल बिसुंदयाल के घरे लॉन्ग माउंटेन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बामाशौ के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM नेहरू रोड लालमाटी में 22 बरिस के 1 कोरी 2 बरिस के 22 ईयर्स ओल्ड के श्री भविष्य खुदी जिनकरा भविष्य के नाम से भी आदमी जैसे जाना था जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज फजीत के 11 बजे इनकर पिता उत्तम कुमार खुदी के घरे लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टूडे एट 11 AM लक्लीमाउस रिविया चौंपा में 91 बरिस के 4 कोरी 11 बरिस के 91 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती पायदामा अपादू पैदाश नाम रामाना आज इनकर अनंती के नाम से भी जैसे आतंशा की मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 12 बजे इनका बेटा आत्मा अपादू के घरे रिविया चौंपा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पितों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट नून मोसलमा रोय बेले रिविया सेश में 75 बरिस के 75 ईयर्स ओल्ड के तेनकोरी 15 बरिस के श्री देवानंदन श्रीनिवासन जिनकरा संदेश के नाम से भी आदमी जस्ट जानता है जाके मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज फजीट के 11 बजे इनकर पत्नी श्रीमती विनोदा श्रीनिवासन के घरे बेले रिविया सेश से उठा के अंतिम संस्कार का तीन भूषों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 11 AM शोक और दुख में डूबल इस सब परिवार के संगे हमनी के दिली संवेदना बाटी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 8:14 हो रहे रेडियो मॉरिशस के लहरों पे सभी का हम स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह सितालू का प्यार भरा नमस्कार। वंस अगेन हम क्षमा चाहते हैं, कुछ समय पहले ज्ञान सर्वर प्रोग्राम हम नहीं चला पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तकनीकी कारण की वजह से ये प्रोग्राम नहीं चल पाया, तो चलिए अब हम प्रस्तुत करते हैं यही कार्यक्रम, ज्ञान सरोवर कार्यक्रम।

0: हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम जान सरोवर में मैं पैतो विक्रम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर शनिवार की तरह आज भी हम एक ठोस विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, आप सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हर साल के पांचवें महीने में हम एक विशेष दिन अपनी जननी अपनी माँ को समर्पित करके मातृ दिवस जैसे पावन तथा हृदय स्पर्शी उत्सव मनाते हैं। और खुशी की बात यह है कि इस सूक्ष्म विषय पर अपना विचार विनिमय तथा अपना अनुभव बांटने के लिए हमारे सामने श्रीमती जोनकी प्रीति जी आसन ग्रसित हैं। श्रीमती जोनकी जी पिछले 30 सालों से हिंदी विषय के पठन पाठन में संलग्न हैं। फ्रेंडशिप कॉलेज गर्ल्स, क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज, मॉरिस क्यूरे और गायतों रेनाल स्टेट स्कूल में अपनी हिंदी भाषा और ज्ञान का रसस्वादन कराती हुई इन दिनों ये सर अब्दुल रहमान उस्मान स्टेट सेकेंडरी स्कूल में हिंदी भाषा की प्रासंगिकता को स्थापित कर रही हैं। श्रोताओं, सबसे बड़ी बात, श्रीमती जोनकी जी एक कर्मठ शिक्षिका होने के साथ साथ एक सक्रिय और नौकरीशुदा माँ भी हैं। तो श्रीमती जोनकी जी, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है।
1: आप सभी को, विक्रम जी को और सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम।
0: तो श्रीमती प्रीति जी, अपने अनुभव के आधार पर आप कृपया मातृ दिवस के महत्व पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: विक्रम जी, मातृ दिवस पर प्रकाश डालने से पहले मैं माँ के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी।
0: बिल्कुल।
1: एक स्त्री अपने जीवन में बेटी, पत्नी, बहू जैसे न जाने कितने रिश्ते निभाती हैं, लेकिन इन सभी रिश्तों में से जिस रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है वह माँ का रिश्ता है।
0: क्या बात।
1: मातृत्व तो ऐसा बंधन है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं किया जा सकता।
0: बिल्कुल।
1: माँ करुणा एवं प्रेम का प्रतीक है। एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है, उपाध्यायन दशाचार्य आचार्यानम शतम पिता सहस्त्रम तु पितु न माता गौरवनाति रिच्यते। अर्थात 10 उपाध्याय मिलकर एक आचार्य के बराबर होते हैं, 100 आचार्य मिलकर एक पिता के बराबर होते हैं।
0: बहुत बड़ी बात।
1: और माता का सम्मान पिता से 1000 गुना अधिक है। माँ की महत्ता के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: माँ की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता है।
0: वो तो सर्वव्यापी है।
1: हाँ, इसीलिए किसी विशेष दिन के बजाय क्यों ना हम हर दिन मातृ दिवस मनाएं।
0: बहुत खूब कहा।
1: जहाँ माता को प्यार एवं सम्मान दिया जाए, जहाँ माता को तरसना न पड़े कि कब मेरा संतान आए, मुझसे मेरा हाल पूछे। क्यों एक ही दिन पर माता को याद करते हैं, रोज करना चाहिए।
0: बिल्कुल। आपके इस जवाब ने सागर में गागर भर दिया। मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर अनुमति हो तो, घर परिवार में एक माँ की भूमिका की सार्थकता कहाँ तक प्रासंगिक है, आपने विचार दीजिए।
1: देखिए विक्रम जी, माँ जीवन भर अपने परिवार एवं बच्चों की भलाई, विकास और कल्याण हेतु त्याग करती ही रहती है। घर में माँ के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि माँ का प्यार और बलिदान की कोई सीमा नहीं होती। माँ के बिना, क्षमा कीजिए, माँ के बिना परिवार बस लोगों का समूह रह जाता है, परिवार नहीं बन पाता। माँ का प्यार इतना गहरा और अटूट होता है कि वह अपने बच्चों की खुशी

0: के लिए दुनिया तक सिलर जाती है। भावनात्मक आधार पर देखा जाए तो माँ वो पहली जगह है जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। डर, गुस्सा, खुशी, सब कुछ माँ से साझा करता है। ये भावनात्मक सुरक्षा ही बच्चे का आत्मविश्वास और दुनिया को देखने का नजरिया तय करती है।
1: बहुत अच्छा।
0: जब घर में कोई गिरता है, माँ की एक ही बात सब ठीक हो जाएगा पूरा माहौल बदल देती है।
1: बिल्कुल सर।
0: खाने का समय, सोने का समय, बीमार पड़ने पर देखभाल, मेहमानों का इंतजाम, बजट देखना, ये सब चीजें माँ बिना किसी पद या तनख्वाह के संभाल लेती हैं। इसे अनदेखा मैनेजमेंट कह सकते हैं। अगर ये लय बिगड़ गए जाए तो पूरे घर का कामकाज अस्त व्यस्त हो जाएगा, या मैं कह सकती हूँ विक्रम जी, उल्टा पुल्टा पर जाएगा,
1: असंतुलित हो जाएगा।
0: हाँ, और माँ रिश्तों को जोड़ कर रखती है। ये सब करने के लिए माँ को कोई प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग नहीं मिलती। अनुभव, अंतर्ज्ञान और बिना शर्त प्यार से वहाँ ये सब काम करती है। आज के समय में माँ चाहे घर पर रहे या नौकरी करे, उसकी यहाँ भूमिका खत्म नहीं होती, बस थोड़ा रूप बदल जाता है।
1: बिल्कुल, आपकी बातें सुनकर मुझे एक श्लोक याद आ गया। कहते हैं, ओम सहो असि सहो में देवी, अर्थात माता सहने की मूर्ति है।
0: अवश्य।
1: सहकर हमको कुछ सहने नहीं देती, पेट काटती हैं लेकिन हमारा पेट भरा होना चाहिए।
0: हाँ।
1: चलिए, मेरा तीसरा सवाल ये होगा श्रीमती जोनकी जी, कि कहते हैं माता एक शिशु का सबसे पहला गुरु होती है।
0: हाँ।
1: यह तथ्य कहाँ तक समर्थक है?
0: देखिए विक्रम जी, माता को बच्चे का पहला गुरु कहना सिर्फ एक कहावत नहीं है, विकास मनोविज्ञान इसे सपोर्ट करते हैं। स्कूल, किताबें और शिक्षक, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन जीवन की पहली शिक्षा माँ ही देती है। भाषा, उच्चारण, लहजा, सब कुछ बच्चा सबसे पहले माँ से ही सीखता है। सच बोलना, दूसरों का सम्मान करना या साझा करना, दया करना, ये सब बातें स्कूल में तो बाद में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बच्चा इन्हें सबसे पहले माँ के बर्ताव को देखकर सीखता है।
1: पहचान कराना भी।
0: हाँ, और संस्कार की नींव माँ ही रखती है। माँ की गोद में बच्चा खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। इस सुरक्षा से ही बच्चे में दुनिया को समझने और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास पैदा होता है। डर लगने पर माँ है ना कहकर ही बच्चा शांत हो जाता है। यही भावनात्मक सहारा उसकी सीखने की नींव बनता है। स्कूल की पढ़ाई भूल भी सकती है, लेकिन माँ की दी हुई सीख जीवन भर काम आती है। मुसीबत में लिया गया माँ का एक वाक्य अक्सर रास्ता दिखा देता है, इसलिए समाज में माँ को पहली पाठशाला कहा गया है।
1: आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ याद आ गई।
0: मुझे भी।
1: आज की इस आधुनिक दौर में मैं आशा करता हूँ कि आज के बच्चे, जैसे कि आपने कहा कि अपनी माता के महत्व को समझे।
0: हाँ।
1: आज सुबह ही मैं एक कहानी की पढ़ाई कर रहा था, मैं शीर्षक है फिसलन।
0: हाँ।
1: उसमें माँ का त्याग करके लड़का निकल जाता है।
0: हाँ।
1: फिर वापस अपनी माँ के लिए ही वापस जाता है, और कहानी ऐसे निकल जाती है जिसमें माँ का महत्व दर्शाया गया है। तो मेरा चौथा प्रश्न ये होगा श्रीमती जोनकी जी, कि तुलनात्मक अध्ययन होगा।
0: हाँ।
1: पहले की गृहिणी माताओं जो घर पर रहकर बच्चों का देखभाल भरण पोषण करती थी, पहले की गृहिणी माताओं की भूमिका और आज की नौकरीशुदा माताओं की भूमिका पर कृपया थोड़ा प्रकाश डालिए।
0: देखिए विक्रम जी, समय के साथ समाज बदला, शिक्षा बढ़ी, जीवन शैली बदली और इसके साथ माँ की भूमिका में भी बदलाव आया। पुराने जमाने की माँ और आज की माँ दोनों ही अपने बच्चों और परिवार के लिए केंद्र में रहती हैं, पर उनके काम करने का तरीका और जिम्मेदारियाँ अलग हैं। पुराने ज़माने में माँ का मुख्य क्षेत्र घर ही था। सुबह जल्दी उठती थी, घर का काम करती थी, फिर खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, उन्हें पाठशाला भेजना, फिर अपने बुजुर्गों

0: की देखभाल करना आदि सब उन्हीं की यही दिनचर्या थी। पुराने जमाने की माँ ने हमें संस्कार, धैर्य और त्याग सिखाया। ये नहीं कि आज की माँ नहीं सिखाती है, लेकिन आज की माँ आत्मनिर्भरता, समानता और संतुलन सिखा रही है, क्योंकि वहाँ आज की माँ काम करने वाली माँ है। और आदर्श माँ वही है जो परंपरा की जड़ें न भूले और समय के साथ खुद को भी बदले।
1: बहुत अच्छा। मेरा अगला प्रश्न होगा श्रीमती जोनकी जी आप पर है कि आप लगभग 30 साल से हिंदी अध्यापन से जुड़ी हैं और एक कर्मठ माँ भी हैं। तो श्रीमती जोनकी जी, आज के इस आधुनिक दौर की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: देखिए, अगर संदेश देना हो तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो कि हमारा समय थोड़ा सीमित है,
1: समय का तकाजा,
0: युवा पीढ़ी से यही कहूंगी कि दुनिया तुमसे कहेगी तेज भागो, सबसे आगे निकलो, मैं कहती हूँ अपनी गति से चलो। अगर कहीं थक जाओ तो जाकर माँ के पास बैठ जाना। युवा पीढ़ी को लगेगा कि माता पिता पुराने ख्यालात के हैं, बिना सभी बातों में तांग रहते हैं। तुम्हारे चलना सीखने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए सैकड़ों रातें जागी हैं, अब उनकी बारी है धीरे चलने की। तुम्हारा एक फोन, दो मिनट की बात, वो उनके पूरे दिन को रोशन कर देती हैं। समय निकालो, बाद में टाइम नहीं मिला कहने से बड़ा पछतावा और कोई बात नहीं है। उड़ो पर इतना दूर मत जाओ कि माता पिता को भूल जाओ। सदैव याद रखना कि उनकी आंखें हर दम दरवाजे को ताकती है कि कहीं मेरा बच्चा आ जाए, क्योंकि जितना भी हम बड़े हो जाएं, अपने माता पिता के लिए उनकी संतान ही है।
1: कहते हैं जब माँ नहीं होती तब माँ के महत्व का अनुभव होता है। तो श्रोताओं, माँ पर आधारित इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनते हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। श्रीमती जोनकी जी, आपकी ज्ञानवर्धक बातें तथा शिक्षाप्रद तथ्यों ने हमारे ज्ञान के पाठ को और बढ़ा दिया।
0: मैं इस कार्यक्रम को इसी की मैं सभी माताओं को नमन करती हूँ जो आगे के भविष्य को संभाल रही है।
1: नौकरी करते हुए भी आज नौकरी करना दिखावा नहीं, जरूरत है।
0: अवश्य
1: आज की माताएं जरूरतों को मिलाती हुई अपने घर गृहस्थी को संभालती हुई बच्चों को संस्कृति युक्त करती हैं। एक माँ के लिए उनका बच्चा चाहे कितना भी अच्छा चाहे कितना भी बुरा, उनका बच्चा ही होता है। तो श्रोताओं, आपने हिंदी स्पीकिंग यूनियन के साप्ताहिक कार्यक्रम में अपना समय दान दिया, श्रीमती जोनकी जी ने अपना समय दान दिया, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: श्रीमती जोनकी जी, आपके विचार परक बातों के लिए आपको सहर्ष सहृदय साभार।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अगले सप्ताह के नए विषय एवं नए वक्ता को सुनने के लिए आप हमारे जान सरोवर कार्यक्रम से जुड़े रहे। हम आज्ञा चाहते हैं
0: आप सभी
1: सुखद समृद्ध जीवन बिताएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सुबह का नजाना का दूसरा भाग, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, देवी और सज्जनों, एक बार फिर स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह से तालुक का प्यार भरा नमस्कार। आज है शनिवार का दिन, शनिवार 30 मई साल 2026। यस, वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे। इस वीकेंड को मना रही है यह त्यौहार, बहुत ही प्यारा और महान त्यौहार है ये। और हैप्पी मदर्स डे रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से। बहुत से लोग इस समय अपनी मम्मी के यहाँ है, कुछ लोग शाम को जाएंगे, कुछ लोग कल जाएंगे अपने सासू माँ या माँ से मिलने के लिए, और कुछ ना कुछ तोहफा तो ज़रूर लाएंगे, हाँ कि नहीं। यस, सो आपकी डेडिकेशन 4028085 पर, या आप हमें हमारे टिकटॉक पेज पर अभी जो आप हमें देख रहे हैं यहाँ पर भी भेज सकते हैं, या फ़ोन कर सकते हैं कैट जगह विद सैंक पर। और जैसे कि हम मातृ दिवस मना रहे हैं, सो एक छोटी सी कहानी आपके नाम। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। रामू के पिता का देहांत तब हो गया जब वह बहुत छोटा था, फिर भी सारी जिम्मेदारी सीता के कंधों पर आ गई। यह दिन रात मेहनत करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। सीता सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, लोगों के घरों में काम करती और खेतों में मजदूरी करती थी। कई बार घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, ऐसे समय में वह अपना हिस्सा रामू को खिला देती और स्वयं भूखी सो जाती। लेकिन उसने कभी अपने बेटे को यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में कठिनाइयाँ हैं। रामू अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन उसके विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि उसे शहर से एक अच्छे विद्यालय में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन फीस बहुत अधिक है। यह सुनकर रामू उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ इतनी बड़ी रकम नहीं चुका पाएगी। जब सीता को यह बात पता चली तो उसने अपने पास बची हुई एकमात्र कीमती चीज़ अपनी शादी के समय मिली सोने की चूड़ियाँ बेच दी। उन चूड़ियों से उसे बहुत लगाव था क्योंकि वे उसके पति की निशानी थी। फिर भी उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट से बेच दिया। रामू शहर जाकर पढ़ने लगा। वर्षों की मेहनत और त्याग के बाद वह एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। नौकरी मिलने के बाद वह गांव लौटा और अपनी माँ को सम्मानपूर्वक अपने साथ शहर ले गया। एक दिन रामू ने माँ से पूछा, माँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? सीता मुस्कुराकर बोली, बेटा, माँ का सुख अपने बच्चे की खुशी में होती है। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माँ, आपके त्याग का ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। कहानी का ये शिक्षा है कि माँ का प्रेम और त्याग संसार में सबसे महान होता है। वह अपने बच्चे की खुशी और सफलता के लिए हर कठिनाई का सामना कर सकती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उसके त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी लाइन पे एक दोस्त है, उनसे मिलेंगे। गीता बाई जी, नमस्ते, वेलकम।
1: नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: हैप्पी मदर्स डे।
1: आपको भी हैप्पी मदर्स डे।
0: हाँ, अगला गीत किसके लिए?
1: जितने भी माँ है दुनिया में, मैं सभी उन लोगों को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मामा है?
1: नहीं, मेरी माँ तो गुजर गई, ना भाई है ना बहन है।
0: पर आप ही तो माँ है, बच्चे आपके यहाँ आएंगे।
1: जो बच्चे हैं, नाती पोते हैं।
0: ओके, सो अगला गीत हम आपके नाम करेंगे। ओके
1: ओके
0: ओके, शुभ दिन। यस, ओके, आपको भी शुभ दिन कहेंगे। और बेशक बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे टिकटॉक पेज पर आप हमें देख रहे हैं, थैंक यू, और रेडियो पर सुन रहे हैं, सो सो नाइस टू बी विद यू। और यस, अगला गीत विश्वानी बाबूलाल जी के नाम हम करेंगे। आप रहती है लाहौजा, सो हैप्पी मदर्स डे। आप भी एक माँ हैं, आपके बच्चे हैं, सो यह त्यौहार आपके लिए ढेर सारा प्यार खुशियाँ लाए। विश्वानी बाबूलाल जी, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। और आप कहते हैं कि आपकी मामा नहीं है, क्या कर सकते हैं, यही तो दुनिया का

दस्तूर है कि माँ बाप हमेशा साथ नहीं देते, एक दिन उनका भी समय आता है और वो भी छोड़कर चले जाते हैं, है कि नहीं। फिर भी हम भी माँ बाप हैं तो हम अपने बच्चों के साथ यह पर्व मनाते हैं, है कि नहीं। और रवि दिनू जी हाँ, आप अपनी मम्मी को कहते हैं हैप्पी मदर्स डे, मम्मी है माला, पापा है हरी, सो हैप्पी फादर्स डे टू हरी दिनू एंड हैप्पी मदर्स डे टू मम्मी माला। और यही गाना हम करेंगे हमारी माँ जी हाँ रीता सीतालू के नाम। आप रहती है मोहताबा साइलेश, फिर स्वस्ति, अनुष्का, साइलेन, रानी, परी और सब सीतालू परिवार की ओर से रीता सीतालू को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और टिकटॉक पर बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, जयश्री, मीरा, माधवी डोमर, लीला बहादुर थापा, वो भी हमें देख रहे हैं। और फिर यही गीत हम चलाएंगे रेदर के नाम और किंग के नाम, सिंगर्स किंग और जय प्रताप सिंह। चलिए साथ सुनते हैं यह प्यारा सा गाना माँ पर आधारित, कुमार विशु के स्वर में।

माँ देवी है, माँ जननी है, माँ शक्ति है। धरती को हम माता कहते हैं, गौ को भी हम माता कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं कि नहीं। और हमारे धर्म, हमारी धर्म, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में, उपनिषद में, वेद पुराण में माँ को देवी का रूप कहा गया है। माँ को देवी के रूप में पूजते हैं, लक्ष्मी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ। और बेशक माँ, जैसे हमने कहा, माँ जननी है। जननी का मतलब है जन्म देने वाली। सो वो महान होती है, वो तो जीवन देती है, वो जीवन लेती नहीं है, वो जीवन देती है। क्या आप जानते हैं बहुत ऐसी महिलाएं जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उनकी प्राण चली जाती है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। सो धन्य है वो माँ जो एक जीवन को लाती है और वही जीवन बड़ा होकर माँ को भूल जाता है। कैसे विडम्बना है ये। सो मातृ दिवस अभिनंदन, पितृ दिवस अभिनंदन, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और अगला गीत प्राची की आवाज़ में, मैंने देखा माँ को। ये गीत क्रिस के नाम, जो हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, शारन, सिल्वी, शिवम वंदना, माधवी डूमर। यस, नेक्स्ट गाना केयान, सिवान, अकील, मेविन और सब डूमर परिवार के नाम, इंदुशिका, इंदु, माधवी डूमर और बॉबी, बॉबी देव जी आपके नाम भी। अगला गीत रिचे भी हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर, और यहाँ पर एसएमएस भी हम पढ़ेंगे। यस, हैप्पी मदर्स डे टू देवयानी गजाधर, मोदी से होल प्लान मायो, बेटी रानी, वीना, उमा, शांति, सरिता, बेटा राज, रजिशिया, वी, शिवराज, कृष्टि एंड यस, इंदिरा लौतन, मदाल बेस से, गोपी सिंह जो लंदन में है उनके नाम यह गीत, उनकी माँ के नाम भी। ऑलराइट, आशा जानू, विशिंग हर मामा हैप्पी मदर्स डे, मामा कुमारी एंड शुभ।

ऋषभ, आरती राज और आशा जानू कहती है लव यू मामा। यस, मातृदिवस अभिनंदन माला जी की ओर से। और इंदिरा चिंतराम जी, मातृदिवस अभिनंदन आपको। टीना जी, जहीर, शिरहिन हमद, इंदिरा लौतन भी हमारा साथ दे रही है। थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पे, ट्विटर, जितने लोग हमें रेडियो पर सुन रहे हैं और बेशक हमारा साथ दे रहे हैं, तो हो जाए प्यारा सा गीत आपके नाम।

देवकी भी माँ कहलाई, यशोदा भी माँ कहलाई। देवकी ने जन्म दिया कृष्ण भगवान को, यशोदा माँ ने उसकी लालन पालन की, दोनों माँ कहलाई। और कई कई सुमित्रा भी माँ कहलाई, और कई कई चाहे वो कैसे भी थी, राम ने कभी उसका निरादर नहीं किया। हालांकि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए मजबूर कर

दिया जैसी आपकी आज्ञा हो माँ। और वो लड़का जो राम भगवान जो है मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे, सब वो चले गए वनवास। और जब वनवास से लौटते हैं तो कैकेयी माँ बहुत उदास होती है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो राम से क्षमा मांगती है। तो राम उनसे कहते हैं, माँ तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, तुम्हारी आज्ञा सर आँखों पर। तो देखिए कितने महान हैं राम भगवान, जो अपनी माताओं का आदर सत्कार करते हैं। श्रवण कुमार एक दूसरा उदाहरण है, जिन्होंने अपने माँ बाप को माँ बाप का साथ दिया अंत समय तक। और बेशक जब अंत समय तक उन्होंने साथ दिया, तो ये एक उदाहरण है कि कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं कि जिसके लिए वो अपना प्राण भी निछावर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट गाना वीणा नागा सी शंकर जी के नाम, उनका ये गाना उनके लेट मम्मी हेमावती नागा की याद में। और सभी माताओं को वीणा नागा सी शंकर कहती है हैप्पी मदर्स डे। और राइट दिनेश जी आपको भी, और परमेश्वर लाल आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी। हेलो बीबी, हाय उर्मिला। सो चलिए जितने भी लोग हमें टिकटॉक रेडियो मॉरीशस के टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं और रेडियो मॉरीशस पर सुन रहे हैं रेडियो के ज़रिए या इंटरनेट पर हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, सो गीत आपके दुनिया भर में जितने भी लोग हमारी आवाज़ को अपने घरों में स्वागत कर रहे हैं। सो और एक गाना माँ पर कहते कि माँ ना होए कभी कुमाता, माँ ना होए कभी कुमाता, माँ तो माँ ही होती है। माँ जो है अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करने की तैयार है, वो अपनी प्राण भी निछावर कर सकती है। वही माँ जो कभी लक्ष्मी होती है, कभी दुर्गा का रूप धारण करती है, कभी काली का रूप धारण करती है अपने बच्चे की रक्षा के लिए। यह जो माँ बेटी का रिश्ता होता है वो भक्त और भगवान का रिश्ता भी होता है। जिस प्रकार भक्त जब दुख में होता है तो वो माँ का नाम लेता है, हे माँ शक्ति दो, हे माँ कृपा करो, हे माँ दया करो। और जब मनुष्य को भी दर्द होता है तो सबसे पहले वो माँ का नाम लेता है, कहते हैं आयो माँ, माँ मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं, स्वाभाविक सी बात है। सो माँ जो है, माँ का दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है, हमेशा ऊंचा रहेगा। जब तक हम जिएंगे संसार में, माँ का दर्जा हमेशा ऑन द टॉप। जानवरों में भी ये प्रवृत्ति देखते हैं कि माँ किस प्रकार से अपने बच्चे की देखभाल करती है। एक जो बिल्ली होती है उनके बच्चे होते हैं, या जो कोई कुत्ते जानवर होते हैं, या कोई भी जानवर हो, राबिट हो, कोई भी जानवर हो, जब उनका जब बच्चा होता है तो बहुत सावधानी से वो लोग अपने बच्चे की देखभाल। मुर्गियों के एग्जाम्पल ले ली, मुर्गियाँ और मुर्गी जो अंडा पर बैठती है उतने दिन उसके चूजे आते हैं तो कितने प्यार से वे अपने बच्चों का देखभाल करती है। एक ही शख्स है दुनिया में जो बिन मांगे आपको इतना प्यार देता है, वो और वो है आपकी माँ। सो आपकी माँ को कभी मत भूलिएगा, ठीक है।

माँ तू देवी है, ममता की मूरत है, तेरे चरणों में बसती जन्नत है, तेरी गोद में मिलता है प्यार, तू ही जीवन का आधार। जब जब मैं दुख में गिर जाता हूँ, तेरी आंचल ही सहारा पाता हूँ, तेरी दुआओं की छाया रहती है, हर मुश्किल को आसान बनाती है। तूने अपने सपने भुलाए, तेरे दिए मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, भूखी रहकर मुझे खिलाया, हर आंसू को हंस कर छुपाया। तेरी ममता सागर से गहरी, तेरी महिमा जग में न्यारी, ईश्वर का सुंदर वरदान है तू, मेरे जीवन की पहचान है तू। माँ तेरे ऋण न चुका पाऊंगा, जीवन भर तेरा गुण गाऊंगा, सिर झुका कर करता हूँ वंदन, माँ तू देवी है, माँ तुझे मेरा अभिनंदन। इसी प्यारी सी कविता के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन आप सबको, मातृदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एमबीसी की पूरी टीम की ओर से, हमारे परिवार की ओर से। माँ का दिल कभी मत दुखाइएगा। माँ कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी वैसी बातें कह देती है, उम्र के साथ साथ हो जाता है, पर माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ का द्वार हमेशा खुला होता है उनके बच्चों के लिए। सो अपनी मम्मी पापा को ना भूलें, उन्हें ढेर सारा प्यार दें और हमें इजाज़त दें। हमारी आपकी मुलाकात हो रही है कल संडे की शाम को 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर, ऐसा भी होता है प्रोग्राम, वहाँ पर हम होंगे लाइव टिकटॉक रेडियो मनोरंजन की पेज पर, और रेडियो मनोरंजन पर भी होंगे लाइव, यानी कि आप हमें देख पाएंगे और सुन पाएंगे। सो अभी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अजय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भर नमस्कार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते। 9 बजे का समाचार, उसके बाद पिक टाइम मैगजीन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू एमबीसी रेडियो मॉरिशस।

0: 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। और इस वक्त स्टूडियो में आ गई

0: हैं अशिता रघु हमारे सहयोगी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार अशिता।
1: नमस्कार अभी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित

किया और इसमें अमरीकी खुफिया एजेंसी ने अपनी विशेषज्ञता साझा की। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन FSC की CEO दिजिरे वेंकटाचलम आज अगले 30 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका ये निर्णय पारिवारिक कारणों से लिया गया है क्योंकि उन्हें विदेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। गौरतलब है कि उन्होंने सितंबर 2025 में ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल एक वर्ष से भी कम समय का रहा है। FSC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि संस्था के कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और सभी परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा की है। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल यानी नाडेक द्वारा गठित कैनाबिस नीति सुधार संबंधी तकनीकी समिति ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल के तहत नागरिकों को 21 जून तक नाडेक के ऑनलाइन मंच पर अपने विचार, सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस परामर्श का उद्देश्य कैनाबिस से संबंधित संभावित नीतिगत सुधारों पर आम जनता के दृष्टिकोण और राय को एकत्र करना है। प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं का उपयोग तकनीकी समिति की समीक्षा और विचार विमर्श प्रक्रिया में किया जाएगा। अभ्यास के अंत में तैयार की गई सिफारिशों को अंतिम निर्णय के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रोड्रिक्स के बेलास्को स्थित नए समुद्र तट क्षेत्र का नाम अ प्लस गासनाचिबेबी होगा। कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय प्रसिद्ध रोड्रिक्स कलाकार जोसेफ निकोला एमिलिया, जिन्हें गासनाचिबेबी के नाम से जाना जाता था, को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लिया है। अधिकारियों के अनुसार ये नामकरण उनके सांस्कृतिक योगदान, संगीत के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और रोड्रिक्स की पहचान को मजबूत बनाने में निभाई गई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। और आपको हम याद दिला देते हैं कि 16 मई से शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया मॉरिशस और रोड्रिक्स दोनों जगहों पर आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। और बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण मॉरिशस में किया गया था। मातृ दिवस के संदर्भ में आज की चर्चा कार्यक्रम का विषय है आज की माँ और अल्फा जनरेशन से जुड़ी चुनौतियाँ। हमारे सहयोगी अभी उदय के मेहमान होंगे डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचरण और अंजलि अर्दीन, जो आज की चर्चा आप याद रखिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और तथा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच आप सुन पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तावित रूपरेखा पर अंतिम निर्णय लेने हेतु अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद आगे की रणनीति को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बम हासिल नहीं करेगा। उन्होंने ये भी मांग की कि होर्मुज स्ट्रेट को दोनों दिशाओं में दीर्घ समुद्री यातायात के लिए फिर से खोला जाए और वहां बिछाई गई किसी भी समुद्री सुरंग को नष्ट किया जाए। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: नहीं आती है मेरे माँ को यारो, गिनती नहीं आती है मेरे माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो दो ही लाती है। जन्नत के लम्हों का दीदार किया था हमने, जन्नत के लम्हों का दीदार किया था हमने, जब माँ ने मुझे गोद में उठा लिया था। लोग कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, लोग कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। मौत के कई रास्ते हैं, मौत के कई रास्ते हैं, लेकिन जन्म का एक ही रास्ता है और वह है माँ। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता चल ही गया है हम माँ के बारे में बात कर रही हैं, तो बेशक आज मातृ दिवस के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है और आपको बता दिया जाता है कि माँ एक ऐसा प्राणी है जो न केवल हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, अपितु हमारी धरती के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। और माँ हमारे सुबह की शुरुआत से लेकर के हमारे रात्रि काल के अंत तक का, सुबह से लेकर के रात तक का सब कुछ संभाल लेती हैं। और इसी माँ को सम्मान देने के लिए, इसी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देने की दिशा में आज हम यहाँ पर मातृ दिवस के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और हमारे साथ ऐसी दो माताएं हैं जो एक कामकाजी हैं, काम करने वाली हैं, और दूसरी गृहिणी। आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले इन दो माताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं मातृ दिवस के संदर्भ में। नमस्ते डॉक्टर वर्षा।
1: नमस्ते अभी।
0: नमस्ते श्रीमती अंजनी।
2: नमस्ते अभिजी। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।
0: जी हाँ बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी माँ हैं जो कामकाजी हैं। कहने का मतलब ये है कि वे न्यू एजुकेशनल कॉलेज की हिंदी अध्यापिका हैं। उनका नाम है डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचरण। आपका स्वागत हम करते हैं। और डॉक्टर वर्षा, आप इस कार्यक्रम में आप आए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यस्त रहती हैं हमेशा, और मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार में आप बहुत कार्य कर रही है और करते जा रही है। एकेडमिक्स जर्नल पेपर्स को लेकर के आप बहुत कुछ करते जा रही हैं, फिर भी इन सब को छोड़ छाड़ करके माँ की एक बहुत ही बृहद जिम्मेदारी को संभालने के लिए आप यहाँ पर मतलब है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद अभी।
0: और आप हैं श्रीमती अंजनी अदीन, आप एक गृहिणी होकर के भी अपने पति के कारोबार संभालती हैं। मुझे पता है कारोबार को संभालना इतना आसान कार्य नहीं है, फिर भी इन सब को छोड़ छाड़ करके आज यहाँ पर आए हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: धन्यवाद आपको भी।
0: जी हाँ श्रोतागण और दर्शकगण, हम आपको बताना चाहेंगे कि मातृ दिवस के संदर्भ में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति की जा रही है। जब हम मातृ दिवस के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। मॉरिशस में मई महीने के अंतिम जो रविवार है, इसका हम यहाँ पर मॉरिशस में हम मातृ दिवस मनाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी माताओं से मिलने जाते हैं। छोटे बच्चे अपने माँ के लिए जो पिकी बैंक होते हैं, छोटे छोटे पैसे वे लोग इसको मतलब कलेक्ट करते हैं, और बाद में उस पिकी बैंक को तोड़ करके उसको लेकर के अपने पिताजी की मदद के साथ वे लोग अपनी माँ के लिए फूल खरीदते हैं, या फिर कार्ड लिखते हैं, या कुछ एक छोटी सी भेंट देते हैं। ये बच्चे की जो मासूमियत है, माँ की जो ममता है, उनकी जो भावना है, उसमें और ज्यादा वृद्धि आती है। तो सबसे पहले डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि आपके लिए माँ का अर्थ क्या है।
1: माँ ममता, प्रेम, ममत्व भाव

0: से भरी हुई होती है और मातृ दिवस जो है माँ के प्रति प्रेम सम्मान और उनके त्याग के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। वैसे तो माँ के सम्मान देने के लिए संपूर्ण जीवन भी कम होता है, फिर भी जैसे अभी आपने बताया कि विश्व में माँ के सम्मान के लिए एक दिन हम लोग मातृ दिवस मनाते हैं।
1: और श्रीमती अंजनी, आपके लिए, आपके अनुसार?
2: मेरे अनुसार माँ एक, उनके रूप अनेक होते हैं, तो माँ त्याग, ममता, सहनशीलता, ईश्वर प्रेम का प्रति, ईश्वर प्रेम का एक अनोखा रूप है। माँ वह दीपक हैं जो स्वयं जलकर अपने परिवार के जीवन को प्रकाश करती हैं। माँ अपनी आंसू छिपाकर अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। जब सारा संसार साथ छोड़ देता है तो केवल माँ का आशीर्वाद ही बच्चे के पीछे खड़ा रहता है, और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह सीख बोलना, चलना एवं प्यार करना अपने माँ से ही सीखता है। माँ की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। कहा गया, हमारे वेदों में कहा गया है, स्त्री ब्रह्म भूवितः, अर्थात स्त्री या माँ को ब्रह्मा कहा गया है। तो बिना मजबूत नींव के कोई भवन खड़ी नहीं होती, उसी तरह माँ के संस्कार के बिना बच्चे का जीवन अधूरा रह जाता है। एक बच्चा सफल हो या असफल, निर्धन हो या धनी, बच्चे माँ की आंखों में उसका स्थान कभी कम नहीं होता।
1: और ये भी कहा जाता है दर्शकगण और श्रोतागण कि हम एक ऐसी दुनिया में बड़े होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दुनिया है माँ के पेट के भीतर। और माँ के पेट के भीतर में जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसी समय माँ उस बच्चे के प्रति का जो प्यार है वो उसका जो बीजारोपण शुरू हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसको सही तरीके से ब्लाइंड लव कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया है वो है गर्भ की दुनिया, माँ का। अब डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि जब हम लोग मातृ दिवस के बारे में बात करते हैं तो क्या मातृ दिवस केवल मॉरिशस के संदर्भ में बता रहा हूँ, केवल 30 मई के लिए ही सीमित है?
0: नहीं, वैसे तो शुरुआत में जैसे हम लोगों ने बताया, आपने भी बताया कि माँ को अगर हम जीवन भर धन्यवाद करें, उनके प्रति आभार करें तो भी कम है। आपने शुरुआत नींव से की है कि 9 महीने माँ बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, जो माँ खाती है, पीती है, जो भी अनुभव माँ करती है बच्चे भी करती है, उसका पूरा प्रभाव अभी आपने भी बताया कि संस्कार की बात की, तो ये सभी जो संस्कार है, जो नींव बनता है वो इन 9 महीने में बनता है।
1: एक ढांचा
0: जो बनता है इन 9 महीनों में बनता है, तभी जाके बच्चे का जब जन्म होता है तो इन सभी संस्कार से वो जन्म लेती है, तब जाके इस संसार में वो बच्चा जब आता है फिर हम अलग से संस्कार बच्चे में डालते हैं। तो माँ की जो महानता है जन्म, हमारे जन्म से पहले ही है। ऐसा नहीं है कि माँ का की महानता केवल जन्म के बाद या जब तक, आपने शुरुआत में भी कहा है कि माँ का जो स्थान है सर्वोपरि है, क्योंकि उनकी जो महानता है उनका गुणगान स्वयं ऋषि मुनि ने किया, और हमारे भारतीय संस्कृति में यह भी कहा गया है कि स्वयं भगवान जो होते हैं इसलिए अवतरित होते हैं कि वो इस माँ के प्रेम को समझ पाए, इस माँ के प्रेम का अभ्यास वो अनुभव कर पाए। तो जिनके पास माँ है मैं सोचती हूँ वो सबसे भाग्यशाली होती है। और हमें केवल एक दिन के लिए मातृ दिवस सीमित नहीं रखना चाहिए, पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन माँ की प्रति कृतज्ञता सभी बच्चों को, सभी को माँ के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए।
1: और श्रीमती अंजलि, आपको भी हम आपसे भी ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपके लिए

0: या मातृ दिवस केवल एक ही दिन सीमित है?
1: जी नहीं, मातृ दिवस केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए। जो मान सम्मान हम माता पिता को मातृ दिवस के दिन पर देते हैं, जो प्रेम हम माता पिताओं को मातृ दिवस के दिन पर देते हैं, मैं सोचती हूँ ये प्रतिदिन देना चाहिए। उनका मान सम्मान, उनका साथ हमको पूरी ज़िंदगी देना चाहिए। मातृ दिवस केवल एक दिन हम नहीं मना सकते, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि यह परंपरा शुरू कहाँ से हुई। तो यह परंपरा शुरू हुई अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में। एक महिला हुई थी, आना जर्विस नाम से जानी जाती थी वह महिला। वह महिला अपने माँ के निर्धन के बाद उनकी याद में एक अभियान चलाया। सन 1908 को, 10 मई 1908 को यह अभियान चलाया उनके माँ के निर्धन के बाद। तभी से वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपिता ने इस लोकप्रियता को देखकर एक कानून पास किया कि हर वर्ष मातृ दिवस मनाया जाए। सन 1914 को, 8 मई 1914, हर मई दूसरे रविवार को यह पर्व मनाया जाए। तभी बहुत सारे देशों ने, जैसे बोलते हैं, कॉपी किया कि मातृ दिवस इतना लोकप्रिय है तो सभी लोगों ने, सभी देशों ने मनाना शुरू किया, और यही परंपरा चली आई अब तक। तो मैं सोचती हूँ अगर आना जर्विस अपनी स्वर्गीय माता के लिए एक दिन घोषित कर सकती हैं, तो हम मॉरिशन जो सारे जनता मातृ दिवस मना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जीवित माता पिता के लिए एक दिन विशेष रखें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। वाई नॉट, क्यों? क्योंकि रोज़ हम वही प्रतिदिन मान सम्मान उनका साथ दे, फिर एक दिन विशेष रखें माता को स्पेशल बनाने के लिए, जो उनको पसंद है वही खाना बनाना, उनको कुछ करने ना दें। वैसे माता पिता को कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं, अगर बच्चे साथ दे तो। बच्चों का प्रेम, बच्चों का साथ, परिवार का साथ, यही माताओं को चाहिए, माताओं स्त्रियों को यही चाहिए। हमें कुछ उपहार की आवश्यकता नहीं। अगर बच्चे ठीक से हमसे बात करे, हमसे प्रेम करे, क्यों बहन जी? जी, तो बड़े बड़े उपहार की हमें कोई ज़रूरत नहीं।
0: ये तो व्यापार की दृष्टि से एक अलग लेवल सा चला गया, क्योंकि उन लोगों को भी काम करना पड़ेगा ना। आप तो व्यापार के क्षेत्र में, आपको पता चलना चाहिए।
1: उपहार देना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है उपहार देना,
0: एक खुशी।
1: हाँ, बहुत प्रेम से, आदर के साथ, लेकिन मान सम्मान के साथ अगर एक माता पिता को वही उपहार दी जाए तो कितनी खुशहाली और प्रेम वातावरण ही बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से एक दिन नहीं, हमेशा। हमारी संस्कृति ही इतनी ऊंची है कि हम प्रतिदिन मातृ दिवस मनाएं।
0: बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी माँ ही आती है हमें उठाने के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो दिन की जो शुरुआत है वो माँ के साथ शुरू होती है।
2: माँ के पैर छू कर दिन की शुरुआत होती थी।
0: बिल्कुल जी। और माँ जब उस कर्टेन को निकालते हैं, वो जो सूर्य की जो किरण हम पर, हमारी आंखों पर आते हैं, तो माँ के कारण ही ये सब होते हैं। और रात को जब हम लोग सोने जाते हैं तो हमारा जो अंतिम वाक्य है हम अपने माँ से ही पूछते हैं कि माँ, डोंट फॉरगेट, कल मुझे ये करना है, लेके जाना है, या फिर माँ ही हमसे बात करेंगे, पूछते हैं। तो हमारा जो अंतिम जो वार्तालाप है वो माँ के साथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे दिन की शुरुआत और उसका अंत माँ के साथ ही है। ओके, सो आद्यान जिसे हम कहते हैं, आदि से लेकर के अंत तक माँ के साथ ही होते हैं। इसीलिए हमें लगता है, जितने सारे लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि माँ एक दिन में, मातृ दिवस हम एक दिन में ही उसको सीमित नहीं रख सकते हैं, ना कि व्यापारिक दृष्टि से हमें उसको देखना चाहिए, लेकिन जो हमारे जो दैनंदिन है, जो हमारे जो

0: रोजाना कार्य हैं, उसको ध्यान में रख करके हमें सोचना चाहिए कि हाँ हमारे माँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम लोग ऑफिस में हैं, माँ ने एक मैसेज भेजा, उसका एक वाक्य है, आपने खाना खाया? बस यही। आप चाहे एक पुलिसमैन हो, एक मंत्री हो, या फिर एक बहुत ही ऊंच पद के हो, माँ आपके पद, आपके पैसे, आपकी शोहरत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं रखते हैं। माँ का जो मेन रुचि ये है, आपने खाना खाया
1: जी,
0: जो मैंने बनाया, या फिर आपने खा लिया, मतलब खाने से जुड़े जो प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। अब डॉक्टर वर्षा, आप हमें ये बताइए कि आप एक अध्यापिका हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में बहुत ही एक्टिव हैं, संलग्न हैं, सक्रिय हैं, और साथ ही साथ आप एक माँ हैं, दो बच्चों की माँ हैं, पति को संभालना, घर पर सभी को संभालना इतना आसान नहीं है, तो किस प्रकार से एक कामकाजी जो माँ है अपने जो कार्य हैं संभाल रही हैं, और किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए आप अपनी ममता लुटा रही हैं?
1: देखिए, कभी कभी ये अपराध बहुत सताती है कि मैं अपनी बेटी को इतना समय नहीं दे पाती हूँ। फिर भी ये है कि जब परिवार साथ देते हैं, जैसे जब भी मैं व्यस्त रहती हूँ, मेरी सास बच्ची को संभाल लेती है, कभी कभी इतनी व्यस्तता जाती है कि मैं खाना भी नहीं बना पाती, फिर मैं केवल सास को फोन करके बताती हूँ, देखिए माँ जी आज मैं थोड़ी देर से आऊँगी, वो खाना भी बना लेती है। तो यदि परिवार में, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, ताकि अगर हम लोग काम करने जाए तो परिवार के सदस्य साथ दे।
0: वे भी एक माँ है।
1: वो भी माँ है, इसलिए सहयोग देती है, माताजी भी साथ देती हैं, फिर पति भी सहयोग देते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि अध्यापिका होने के नाते कई अन्य भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, इस बहु कार्य के कारण व्यस्तता तो आती है, और इस आधुनिक समाज में इन सब से, इन सब को पार करना कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, एक योजना बनाती हूँ कि कौन सा कार्य पहले करना चाहिए, कौन सा, मतलब इसको जैसे हम लोग कहते हैं टाला जा सकते हैं, पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्यवसाय, बच्ची की परवरिश और घर व समाज के उत्तरदायित्वों के बीच लगातार संतुलन बनाए रखना पड़ता है। और जैसे कि मैं अध्यापिका हूँ, फिर हम लोगों को छुट्टियाँ मिलती हैं, फिर उसमें मैं बच्ची के साथ कंपेंसेट कर लेती हूँ, मतलब फिर ज़्यादा समय मिलता है बच्ची के साथ रहने के लिए।
0: तब एक ऐसा मौका होता है कि केवल आप और आपके जो बच्चे हैं, एक जो क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं,
1: ये छुट्टियों में हम लोग बिता पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये अच्छी बात है।
0: हाँ, तब उस समय एक अलग तरह के एक संवाद होता है ना, माँ और बेटी के बीच।
1: जी जी जी जी,
0: क्या बात। और श्रीमती अंजनी, आपके लिए स्थिति कैसी है, क्योंकि आप तो एक गृहिणी है, एक फुल टाइम जिसे हम कहते हैं माँ की जो जिम्मेदारी है आप संभालती हैं, तो क्या आप उतना समय दे पाते हैं अपने, क्योंकि अपने पति के भी कारोबार आप संभालते हैं?
2: मैं सोचती हूँ जो माताएं घर पे रहती हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है, काम उनका कम नहीं होता, ये काम कम नहीं होता, लेकिन उनके पास समय ज़्यादा होता है। तो घर की साफ़ सफाई, सभी चीज़ों की को सांझ कर रखना, तैयारी ठीक से करना, और सभी लोगों, सभी सदस्यों का ख्याल रखना, टाइम ज़्यादा मिलता है जो लोग घर पे रहती हैं। लेकिन कामकाजी महिलाओं को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है ना, कभी कभी जाना है, कभी काम पे, कभी कभी रह सकते हैं घर पर और कभी जाना है, तो दोनों को संभालना, यानी कि घर और काम को संभालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, डबल स्ट्रेस जिसे कहते हैं। जैसे कि बहन जी ने भी कहा कि खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो फास्ट फूड पे ही जाते हैं हम, बहुत ये भी करना पड़ता है, और अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अपने लिए हम महिलाओं को भी, माताओं को भी कुछ पैशन होता है जो टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम

0: टाइम हमको भी मिलना चाहिए कुछ करने का, अपने जो हमको पसंद है वो करने का, वो टाइम थोड़ा कम मिलता है, ढूंढना पड़ता है, मिलेगा लेकिन उतना मिलता नहीं
1: जी।
0: तो काम में फंस के रह जाते हैं, बच्चों को बच्चे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माँ का कर्तव्य, माँ को वही उतना ही काम करना पड़ता है, काम घर का काम और बाहर का काम दोनों ही करना पड़ता है।
2: क्योंकि जब एक बच्चा बहुत ही छोटा रहता है, लाइक एक साल दो साल, माँ ये कल्पना करती है अगर वो भरा होगा तो मुझे थोड़ा सा वक्त मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑन द कंट्ररी जो जिम्मेदारियां हैं वो और बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं अल्फा जेनरेशन के बारे में, अल्फा जेनरेशन जो अल्फा पीढ़ी है, ये एक ऐसी पीढ़ी है जो डिजिटल टूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, वे लोग पावर्ड बाय एआई, मतलब वे लोग उनके जो दिन की शुरुआत एआई के साथ होती है और अंत में भी। तो ऐसे जो अल्फा जेनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको आप एक अध्यापिका होने के नाते, एक क्योंकि आप एक अध्यापिका, एक शिक्षिका होने के नाते आप एक माँ भी है कक्षा में, तो कैसे वहां पर आप इन बच्चों को संभाल लेती हैं, क्योंकि आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे का मतलब है 40 इलाके से आए हुए हैं, 40 मेंटालिटी से आए हैं, 40 मनस्थिति और फैमिली सोशल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, कैसे आप संभाल लेते हैं?
1: देखिए, शिक्षिका समाज का मुख्य निर्माता है, जो भी शिक्षक होता है, तो बच्चों का छात्रों का हम लोग मात्र पुस्तकीय ज्ञान नहीं देते हैं, बच्चों का हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं, यानी कि नैतिक मूल्य, और आज के इस युग में तो और भी महत्वपूर्ण हो गए, और यही कार्य माँ भी करती है। तो आप देखेंगे, मेरा सौभाग्य है कि माता होने के साथ साथ मैं अध्यापिका भी हूँ, और मुझे लगता है दोनों भूमिकाएं एक जैसी हैं, कभी कभी घर पर अध्यापिका बन जाती हूँ और कभी कभी विद्यालय में
2: माँ
1: हो जाती है, बनना पड़ता है, फिर कभी बच्ची कहती है यहाँ पे मैं अध्यापिका नहीं हूँ, मतलब क्योंकि दोनों में समानताएं तो है, क्योंकि दोनों क्या करती हैं, दोनों यही कोशिश करती हैं कि हम लोग बच्चे की भविष्य का निर्माण करें, और जिस निस्वार्थ भाव से एक माँ अपनी बच्ची की अच्छाई भलाई सोचती है, कोई अन्य ऐसा व्यक्ति नहीं सोच सकता, उसी निस्वार्थ भाव से एक अध्यापक, एक अध्यापिका अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं। मैं हमेशा अपने छात्रों से, बच्ची से यही कहती हूँ कि जिस निस्वार्थ भाव से हम लोग चाहते हैं वो आगे बढ़े, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। अब आप आते हैं, आपने बताया अल्फा जनरेशन, जो बच्चे अल्फा जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा दिन नेटवर्क, मैं अपनी बेटी से सीखती हूँ, कभी कभी मैं अपने छात्रों से भी सीखती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोग पीछे रह गए हैं, लेकिन हम लोगों को भी इस आधुनिक दौर में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो आपने बताया कि नेटवर्क, मोबाइल फ़ोन, इसमें अच्छाई तो है ही लेकिन बुराई भी है, तो बच्चों को, चाहे छात्र हो चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, उनको समझाना पड़ता है कि देखिए मोबाइल का फ़ोन सुरक्षा के लिए ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, चाहे कक्षा हो चाहे घर पर हो, मैं एक सीमित समय रखती हूँ, एक दायरा कि आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है मैं आपको दिन में आधे घंटे के लिए दूंगी, उससे अतिरिक्त नहीं, उसका नियंत्रण करती हूँ, बच्ची क्या देख रही है उसमें उसका भी नियंत्रण कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ हर एक माँ को ये बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन में क्या कर रहा है, क्योंकि कभी कभी आपको पता है एआई की ज़माना है, हम लोग बच्चों को काम देते हैं, बच्चा काम अच्छी तरह से करके देता है,
2: परफेक्शन,
1: लेकिन जब वही काम आप टेस्ट करते हैं बच्चों के साथ, तब आपको पता चलता है कि ये काम एआई ने किया या बच्चों ने किया। फिर इस स्थिति में मैं बच्चों से यही कहती हूँ, चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो, कि देखिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अध्यापक को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अगर एआई आपका काम कर रहा है, परीक्षा में एआई आपका काम नहीं करेगा,
2: क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं हैं ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल असेसमेंट में है।
1: नेटवर्क का प्रयोग कीजिए लेकिन दुरुपयोग मत करें, दुरुपयोग, सही उपयोग सही मार्गदर्शन के लिए ठीक है, लेकिन देखिए अभी हम लोग कहते हैं ना कि जो भी चीज अत्यधिक हम लोग करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हानिकारक,

0: जो अति है,
1: अति तो आप प्रयोग कीजिए लेकिन अति का आप उसका आप निषेध करें।
0: बिल्कुल। और श्रीमती अंजनी, आप आपके भी बच्चे हैं, वे भी अल्फा जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो आप किस तरह से आप एक माँ होकर के उन अपने बच्चों को आप कंट्रोल में रखते हैं, वो भी प्यार के साथ?
2: जी, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, जब छोटे थे तो कंट्रोल कर सकते थे, अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि they are above 20.
0: अच्छा, okay.
2: तो ज़्यादा एडल्ट हैं तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, सभी अपने अपने मोबाइल पर, थोड़ा सा सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं माँ हूँ। हाँ। ये कभी कभी डांट पड़ती है उन लोगों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं डांटती, ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, घर का काम जब पड़ा है ऐसा, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हूँ लेकिन ज़्यादा भी नहीं स्ट्रिक्ट,
1: एक संतुलन बनाना।
0: जी, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। अल्फा जेनरेशन से जुड़ी चुनौतियां और आज की माता, यही है हमारा विषय आज की चर्चा कार्यक्रम। हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से यहां पर आएंगे और चिंतन मनन करेंगे अल्फा जेनरेशन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में।

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ बिल्कुल, आज की चर्चा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन और देख रहे हैं और इस वक्त मातृ दिवस के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो आज की जो माताएं हैं वे जो जो नई पीढ़ी हैं उनको संभाल रही हैं। और मातृ दिवस के संदर्भ में जितने सारे जो माताएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MBC टीम की ओर से आप सब लोगों को हम कहना चाहेंगे मातृ दिवस की मंगल कामना। मातृदेवो भव देवो भव, जो हमारे हिंदू शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में डॉक्टर वर्षा आप क्या कहना चाहेंगे? मातृदेवो भव पितृदेवो भव।
2: माता हमें जन्म देती है, माता हमें जीवन देती है, माता हमारा पालन पोषण करती है और माता हमारी पहली गुरु होती है, इसीलिए उसका स्थान ईश्वर के समान पूजनीय है। दूसरी ओर आपने बताया भी पितृ देवो भव, तो पिता भी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और समाज में जीने योग्य बनाते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। कहते हैं कि भगवान नहीं आते हैं, लेकिन भगवान किसके रूप में आते हैं? माता पिता के रूप में। इसीलिए हमें अपने माता पिता को वह मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देती हैं, निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करती हैं। मैं कार्य करती हूँ, मैं अध्यापिका हूँ, इसके लिए मुझे वेतन मिलती है, लेकिन मैं माँ हूँ इसके लिए मुझे वेतन नहीं मिलते हैं। और इसके लिए कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसको वेतन मिले, माँ नहीं पूछेगी। अभी शुरुआत में आपने भी बताया कि माँ कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि माँ में आत्मीयता ममता भरी होती है। माँ शब्द में ही, आप चाहे दुखी हैं, चाहे कुछ भी, आप सुख में भी, किसी भी पल, आपने शुरुआत में कहा था दिन हो या रात हो, जीवन में सुख हो या दुख हो, सबसे पहला जो शब्द आता है अनायास आता है माँ, वो निकलता है किसी भी
1: चोट लगती है। हाँ, आयो माँ,
2: जी जी,
1: मा, शब्द माँ
2: अपने आप अनायास, ये शब्द हम लोगों को सीखना भी नहीं पड़ता है,
1: बिल्कुल
2: अपने आप आता है। तो बच्चों में इसीलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव और पितृ दोनों ही,
1: बिल्कुल
2: दोनों का स्थान पूजनीय है, इसीलिए तो मातृ दिवस मनाया जाता है। अभी पितृ दिवस भी हम लोग मनाते हैं, कुछ लोग इसी रविवार को मनाएंगे और कुछ लोग अगले रविवार को मनाते हैं, क्योंकि दोनों का स्थान पूजनीय है।
1: और आपके लिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव क्या इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लागू है, सार्थक है?
3: मातृदेवो भव पितृदेवो भव इस युग में क्या हर युग में लागू होता है? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। परमात्मा जब एक बच्चे की तकदीर लिखता है तो कर्म अनुसार उसके तकदीर में दुख और सुख दोनों लिखते हैं, लेकिन अगर एक माता पिता को यह अनुमति मिल जाए कि वो अपने बच्चे की तकदीर लिखे, तो वो अपने बच्चे की तकदीर में केवल सुख लिखेगा। और जो माता

0: पिता अपने बच्चे के तकदीर में केवल सुख लिखता है वो ईश्वर से भी महान होते हैं। तो इस युग में नहीं बल्कि हर युग में मातृदेवो भव और पितृदेवो भव ही होना चाहिए, ये मेरे विचार से।
1: और हम कहते हैं कि जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि मातृ दिवस के साथ साथ पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे भी मनाया जाता है, और पिताजी भी इस पारिवारिक ढांचे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगर पिता है तो दुकान के सब खिलौने हमारे हैं, ये भी कहा जाता है। तो पिता का भी एक महत्व होना चाहिए, और कभी कभी हम भूल जाते हैं मातृ दिवस जब आते हैं केवल मदर्स डे कहते हैं कि पिता शब्द पीछे हट जाते हैं, लेकिन पिता का भी एक महत्व है, पिता का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको ये उपहार मिलते हैं तो आपके पति वो पीछे हैं, पीछे रह जाते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा फील होता है?
2: नहीं, पति को भी उपहार मिलता है।
0: पिताजी का मतलब है सपोर्ट। वो जो सपोर्ट नारी के पीछे उनके पति से मिलता है ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो आपने बोला पिताजी पीछे रह जाते हैं, बहुत एकदम सही बात है, और होना भी चाहिए, उनको पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको सपोर्ट चाहिए। हम माताओं को जो सपोर्ट चाहिए वो पिताजी दे रहे हैं पीठ में।
1: बिल्कुल,
0: सपोर्ट कहते हैं इसे,
1: पीठ सपोर्ट।
0: एग्जैक्टली।
2: अगर पिताजी सपोर्ट नहीं करेंगे तो माताजी जितने भी कार्य करती नहीं कर पाएंगे।
1: उनको आगे बढ़ने
2: के लिए वो सपोर्ट, वो सहारा चाहिए।
0: और पिताजी को बहुत खुशी होती है जब बच्चे उपहार लेकर आते हैं, वो खुद नहीं लेंगे, माताओं को लेने देते हैं, तो ये खुशी पिता को मिलता है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि हम जो अपने जिंदगी अपनी जीवन में नहीं कर पाते, हमें अच्छा लगता है जब बच्चे को हम वही चीज़ दे सकते हैं जो हमें नहीं मिला। वो हम अपने बच्चों को जब देते हैं तो जो खुशी माताओं को मिलती है वही सेम खुशी जो हमारे पीठ पर जो सपोर्ट रहता है उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।
2: माँ पहचान देती है, पिताजी नाम देती
0: है, दोनों साथ मिलके। हाँ,
1: और ये भी कहा जाता है कि पिताजी में भी पिता में भी ममता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। सूरदास की कविताओं में ये इस बात की पुष्टि की गई है। महात्मा गांधी ने स्वयं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मुझ में वो ममता है। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं है, होना चाहिए इस तरह से?
2: देखिए, माँ दिखाती है।
1: बिल्कुल।
2: पिताजी कभी, मेरे पिताजी स्वयं नहीं दिखाते थे, मतलब सख्त पिताजी जो होते नहीं दिखाते हैं, वो भी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन करते हैं। बस ये है कि जिम्मेदारियां अधिक होती हैं इसलिए वो नहीं दिखा पाते, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि पिता में वो नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो भी आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, शायद नहीं जताते या नहीं दिखाते, क्योंकि आमतौर पे स्त्रियां ज़्यादा भावुक होती हैं, हम लोग अपना प्रेम दिखाते हैं, इमोशन जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन पिता उतना नहीं दिखा पाते, लेकिन नहीं है इसको कहना गलत होगा।
1: बिल्कुल। और पिताजी की आंखों में इतने आंसू बहते हैं तब जब एक उनकी बेटी शादी करके वो वहाँ से जिस समय वो दहली से निकल करके जा रहे हैं, उस समय उनकी आंखें नम पड़ जाती हैं, उनकी जो मतलब कांपने लगते हैं कि मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़ करके जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो पिताजी में भी वो ममतामयी भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जितने सारे लोग इस कार्यक्रम को सुन रही हैं या फिर देख रही हैं, एक विनम्र आग्रह की जाती है कि आप लोग अपने माता अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनको उतना महत्व दीजिए जितना महत्व आप अपने काम को देते हैं। हमारा काम जो है आजकल के समय में एक प्रायोरिटी बन गई है। उस प्रायोरिटी की आर में हम अपने परिवार को, अपने माता अपने पिता को भूल जाते हैं। हमारे जो MBC टीम है, हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, खासकर आश्रमों में जाते हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत

0: सारी माताएं हैं, ऐसे बहुत सारे पिता हैं, उन माताओं को जब हम देखते हैं, वे चाहते हैं, उन उसके अंदर में एक ललक है कि हम उनको मतलब गले मिलाएं, उनको थोड़ा सा प्यार दें, उनकी आंखों में आंखें देख करके कहें कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम लोग करते हैं, हमारी अपनी एक कोशिश है, हमारे अपना एक साहसिक प्रयास होता है कि हम उनके लिए खाना बना करके लेकर के जाते हैं आश्रम के उन माता या फिर पिता से मिलने के लिए। लेकिन एक दिन तो हम कर रही हैं, हम रोजाना नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके यहाँ आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनके साथ जितना हो ज्यादा से ज्यादा आप उनको सम्मान दें और प्यार दें। अब जितने सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जैसे अभी आपने कहा भी, जब तक आपके माता पिता आपके साथ है, आप उनको प्यार और उनको सम्मान दें। क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा समय आता है जब दुर्भाग्यवश वो साथ नहीं दे पाते, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु होती है। तो मैं यहाँ पे सभी दर्शकों से, सभी से यही आग्रह करूँगी, अगर आपका सौभाग्य है कि आपके माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, उनको वो प्यार वो सम्मान चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आधुनिक जीवन है, हम सभी व्यस्त हैं, उनको क्या चाहिए? अभी आपने शुरुआत में कहा कि उनको एक फ़ोन करें, उनसे बात करें। ऐसा नहीं कि केवल कल मातृदिवस है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो बाकी 365 दिन आप क्या करते हैं? माँ से बात करते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो अपने परिवार के साथ समय बिताए, समय बिताए, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया, एक ऐसा वक्त आएगा जब वो नहीं होंगे, तब आपको वो दुख होगा कि काश काश मैं अपने माता के साथ, मैं अपने पिता के साथ उनको वो समय दे पाती, क्योंकि समय और प्यार यही चीज उनको चाहिए होता है। इससे ज्यादा वो लोग चाहिए नहीं। अगर आप खाली हाथ भी माँ के यहाँ जाओगी, वो भी आपको खाना ये सब कुछ देती रहती है। माँ के हाथ हम लोग खाली जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो हमेशा थैली भर कर।
0: मॉरिशस में ये परंपरा है, जब हम अपनी माँ के यहाँ जाते हैं तो उनके यहाँ के जो भाजी है उनके, हालांकि भाजी आपके पास भी है लेकिन माँ की भाजी है,
1: क्योंकि माँ के हाथों का खाना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो तो अलग है। अलग मैं भी खाना बनाती हूँ, लेकिन जैसे माँ बनाती है, जैसे सास बनाती है, बेटी भी कहती है कि मैं माँ जो है दादी के जैसी या नानी के जैसे खाना नहीं बना पाती है। हाँ, नहीं बना पाती, क्योंकि उनके पास वो अनुभव है, वो शायद तरीके हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए घर में जो सास है, ससुर हैं, जो भी सास ससुर जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने उन सभी का आपको मान सम्मान करना चाहिए, और केवल एक दिन ही नहीं, नहीं अभी पूरा
0: पूरा पूरा
1: आजीवन
0: आजीवन। और आपके लिए श्रीमती अंजनी जी, क्या संदेश?
2: आज मातृदिवस के अवसर पर हम सभी माताओं को नमन करते हैं जिन्होंने त्याग, प्रेम और संस्कारों से अपने घर और परिवार को संवारा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। मातृदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी माताओं को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे श्रीमती अंजनी जी को, और साथ ही साथ डॉक्टर वर्षा भगीरथ कालीचंद को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं इसके लिए, और आपने ऐसे सुगम और सुंदर विचार लेकर आए हैं जहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम है उसका जो स्तर है उसमें एक वृद्धि आई है। इसके लिए हम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और MBC की पूरी टीम की ओर से आप दोनों को हम कहना चाहेंगे मातृदिवस की मंगल कामना। मुझे पता है कि आज और कल आपका जो दिन है वो बहुत ही रुचिकर है, क्योंकि आज आपको भी भेंट मिलेंगे, प्यार सम्मान सब कुछ। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी जो शब्द है, हमारे जो शब्द है माँ को लेकर के अलग अलग प्रकार के आते हैं। जब हमनी के तप लगेला तो हमनी माँ के शब्द के पुकारी लासा, जब हमनी के गोर में एगो घाव लगेला तो माँ शब्द ही सामने आवेला, तो माँ शुरुआत से लेकर के अंत तक ही आवेला। इसी के साथ आप जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, MBC की पूरी टीम की ओर से आप सब लोगों को मातृदिवस की मंगल कामना। अगर माँ के बारे में

कुछ लिखना है तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि माँ ने खुद हमें लिखा है। अगर हम माँ के बारे में कुछ रचना कुछ चीज की रचना करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि माँ ने खुद हमें रचा है। माँ ही है, अगर माँ है तो दुनिया है, और उनकी दुनिया में बहुत बहुत मासूमियत है, प्यार है और अपार शक्ति है। उसी शक्ति के बल पर आज हम सब लोग जीवित हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को मातृ दिवस की मंगल कामना। आप लोगों ने आज की चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और ध्यानपूर्वक सुना और देखा, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। अभी उदय को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।

0: आइए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपके साथ अशिता जी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष मौर्य, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के सीईओ डिज़िरे वेंकटेश्वरम आज अगले महीने 30 जून को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका ये निर्णय पारिवारिक कारणों से लिया गया है, क्योंकि उन्हें विदेश में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। और तलब है कि उन्होंने सितंबर 2025 में ये पद संभाला था और उनका कार्यकाल एक वर्ष से भी कम समय का रहा है। एफएससी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आश्वासन दिया है कि संस्था के कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और सभी परिचालन गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी। साथ ही बोर्ड ने उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की घोषणा भी की है। 16 मई को शुरू हुआ मतदाता पंजीकरण अभियान आज

शनिवार दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया मॉरिशस और रोड्रिग्स दोनों जगहों पर आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। बुधवार तक 153 नए मतदाताओं का पंजीकरण दर्ज किया गया है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र नंबर 18 बेलहोस कैट्रबोन में शुक्रवार तक 14 नए पंजीकरण किए गए, जबकि लगभग 400 लोग मतदाता सूची में अपने विवरण की जाँच की

जो लोग अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं या अपने पते और अन्य जानकारी में संशोधन करवाना चाहते हैं, उनके पास आज दोपहर 1 बजे तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का समय है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा आयोजित एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मॉरिशस और सेशल्स की विभिन्न संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए स्मार्ट इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित करना और मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। आपको हम याद दिला देती हैं कि हाल के दिनों में बंदरगाह पर सुरक्षा अभ्यास, मॉरिशस पुलिस और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच साझेदारी और अब ये प्रशिक्षण, इन सभी को मिलाकर अमरीका मॉरिशस के बीच सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अमरीकी पक्ष के अनुसार ये सहयोग एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्लादिमीर पुतिन ने उन्नत तकनीकों में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की घोषणा की है। अस्ताना में आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस ने विभिन्न देशों के वैज्ञानिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक समुदायों को साथ लाकर एक AI संगठन गठबंधन स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि अगले वर्ष रूस में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन किया जाए ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग और शोध को और मजबूत किया जा सके। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। 7 बजे बढ़ते हैं अब हम शोक समाचार की ओर।

0: Choc son chassonnier. Gueule de loup Verdun Saint-Pierre-Mé. Gueule de loup Verdun Saint-Pierre-Mé. Un hôtel sale qui 69 years old qui Shrimati Tilotama Dhanwa. Shrimati Tilotama Dhanwa. पैदाशी नाम फेकनाथ और जिन्हें सुरेखा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कृष्ण कुमार शर्मा धनवा के घर सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों सौ सैंपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On the hour. Every hour, Radio Marches.

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम मुहतरम सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं। यहाँ पर गुलहाय अकीदत का आगाज़ हो रहा है, जिसमें हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है बफ़ज़ल रब्बे कायनात और ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना साहिब मुत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर आफ़ियत से होंगे। सामीन, आज की इस प्रोग्राम को हमने कुछ इस तरह तरतीब दिया हुआ है। गोशे तफसीर में सूरा अल-महदा के 13वें रुकू की तफसीर आप समाप्त कर सकेंगे, उसके बाद एक दुआया कलाम, और गोशे नसीहत में वक्त के वली, और गोशे समा में उसके बाद हम आपको पेश करेंगे हज पर मुश्तमिल कलाम। उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें ज़रूर पसंद फरमाएंगे। आगाज़ सूरा अल-महदा के 13वें रुकू की तफसीर से करते हैं। बेशक मुफसिर हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ अब्दुल्ला कादरी, दामत बरकातुहु आलिया, समाअत कीजिए।
1: सूरतुल माईदा की आयत नंबर 94। सूरतुल माईदा का रुकू नंबर 13, सातवें पारे का तीसरा रुकू। या अय्युहल्लज़ीना आमनु लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइम मिनस्सैदि तनालुहु अईदीकुम वरिमाहुकुम। ईमान वालों, जरूर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा ऐसे बाज शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुंचे। जैसा कि आप इस वाक्य को जानते हैं कि सन 6 हिजरी

ज़िलक़ादा के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ से 1400 सहाबा इकराम को लेकर उमरे के लिए आप तशरीफ लाए, मक्के शरीफ की तरफ रवाना हुए। लेकिन जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक दिया और उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि आप उम्रा अदा करने नहीं आए बल्कि जंग करने आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और इसी मकसद के लिए हजरत उस्मान गनी को भेजा गया और वो मक्के शरीफ गए और उन्होंने इन लोगों को समझाया कि ज़िलक़ादा का महीना है, ये हुरमत वाला महीना है, इसमें मुसलमान जंग नहीं करते। फिर मुसलमान हालत एहराम में है, हालत एहराम में जंग नहीं की जाती। और तीसरी बात यह कि मक्का शरीफ और इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है ये हुदूद हरम है, तो हुदूद हरम में भी जंग करना हम गलत समझते हैं। लेकिन वो इसके लिए राजी न हुए। काफी दिन तक मुसलमान हुदैबिया के मकाम पर रहे और इसके बाद फिर इन्हें वापस जाना पड़ा और अगले साल उन्होंने इस उम्रे की कजा की। जब इंसान सफर में होता है तो आम तौर पर होता यही है कि सफर में आदमी खाने पीने का सामान इतना रखता है जितनी जरूरत होती है और ख्याल ये होता है कि इतने दिन में हम जब उस शहर में पहुंच जाएंगे तो वहां तो खाने पीने के सामान मुहैया हो जाएंगे। तो मुसलमान एक मखसूस सामान सफर लेकर चले, लेकिन बीच में रोक दिया गया और एक ऐसे इलाके में रोका गया कि जहां पर वीराना था, खाने पीने का इंतजाम नहीं था। उस वक्त उन्हें भूख भी शिद्दत की थी और खाने के लिए कुछ था भी नहीं। इस हालत में इन्हें इम्तिहान में डाला गया। शिकार, वो जानवर जिनका शिकार किया जाता है और वो परिंदे जिनका शिकार करके खाना हलाल है, वो बकसरत आ गए और इनकी सवारियों पर छा गए। हाथ से पकड़ना, हथियार से शिकार कर लेना बिल्कुल आसान था, लेकिन चूंकि हालत एहराम में थे, हालत एहराम में शिकार हराम था, इन्हें जरूरत भी थी, तो अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान इन पर डाला और सहाबा इस इम्तिहान में पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई और इस आजमाइश में मुसलमान अल्लाह के फजल से कामयाब हुए और हुक्म इलाही की तामील में वो साबित कदम रहे। ये एक बात याद रखिएगा कि एक तो हालत एहराम में शिकार करना हराम, दूसरी ये कि हुदैबिया का जो मकाम है उसका एक हिस्सा हुदूद हरम में है और एक हिस्सा हुदूद हरम से बाहर है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान जिस मकाम पर मौजूद थे तो वो मकाम हुदूद हरम से बाहर था, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि अब सब अपने एहराम खोल दें, हम आइंदा साल उम्रा अदा करेंगे, तो उस मौके पर ये हुक्म था कि एहराम खोलने से पहले कुर्बानियां हुदूद हरम में पहुंचें और कुर्बानियों को ज़िबा किया जाए हुदूद हरम में, फिर एहराम खोला जाए। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तो हुदूद हरम से बाहर थे, तो कुर्बानियां हुदूद हरम में भेजी गईं। हुदैबिया का एक मकाम हुदूद हरम के अंदर है, वहां कुर्बानियां भेजी गईं और वहां कुर्बानियां की गईं। इसके बाद सहाबा कराम ने अपने एहराम खोले। और ये भी मसला याद रखें कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं जैसे ऊंट है, बकरी है, गाय है, इनको हुदूद हरम में ज़िबा करना भी जायज है और हालत हराम में भी ज़िबा करना जायज है। हाँ, शिकार करना ये हुदूद हरम में भी मना है और हालत हराम में भी मना है। यह आयत करीमा नाज़िल हुई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय्यिन मिनस्सैद, जरूर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कुछ शिकार से, तनालुहु अईदीकुम व रिमाहुकुम, जिस तक तुम्हारे हाथ और नेजे पहुंचेंगे।

वह रिमा हुकुम तुम्हारे निजे, हाथ से पकड़ना भी आसान होगा, निजों से शिकार करना भी आसान होगा, तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। और ये आयत करीमा नाजिल हो गई इस वाक्य से पहले, और जहनी तौर पर सहाबा इसी इम्तिहान के लिए तैयार हो गए, और जब ये इम्तिहान हुआ तो वो इसमें कामयाब हुए। لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, कि अल्लाह पहचान करा दे उनकी जो उससे बिलगैब डरते हैं, यानी बगैर देखे हुए वो डरते हैं। अजाब भी उन्होंने देखा नहीं है लेकिन फिर भी उस अजाब से डरते हैं। فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ, फिर इसके बाद जो हद से बढ़े और आजमाइश में मुबतला होकर नाफरमानी करेगा, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, उसके लिए दर्दनाक सजा है। तो सहाबाए कराम साबित कदम रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलतें अता फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, ला तक्तुलुस्सैद वअंतुम हुरुम, जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार न करो। जो हालत एहराम में हो उस पर खुशकी का शिकार करना ये हराम है। जानवर की तरफ शिकार करने के लिए इशारा करना या किसी तरह बताना भी शिकार में दाखिल है और ये भी ममनू है। हालत एहराम में हर वहशी जानवर का शिकार ममनू है, चाहे वो वहशी जानवर हलाल हो या ना हो, लेकिन मांस जानवर इससे मुस्तस्ना है। हालत एहराम में काटने वाला कुत्ता, कौवा, बिच्छू, चील, इसी तरह चूहा, भेड़िया और सांप, इन जानवरों को मारने की इजाजत है। हदीस पाक में इन जानवरों को फवासिक कहा गया। काटने वाला कुत्ता, कौवा, बिच्छू, चील, चूहा, भेड़िया और सांप, इसी तरह हालत एहराम में मच्छर, पिस्सू, चींटी, मक्खी और जमीन के कीड़े मकोड़े और जो दरिंदे हमला करने वाले हैं, इनको मारना जायज है। हाँ, हालत एहराम में जू को मारने की इजाजत नहीं है। वमन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, और तुम में से जो इसे जानबूझकर कत्ल करे। हालत एहराम में जिन जानवरों का मारना मना है वो हर हाल में मना है। जानबूझकर मारना भी मना है और खतान मारना भी मना है। इस आयत करीमा में कस्तन मारने का हुक्म बयान हुआ और अहादीस तैयबा में खतान मारने का हुक्म बयान किया गया। वमन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, तो तुम में से जो कोई शिकार जानबूझकर करे, फजज़ाउ मिस्लु मा कतल मिनन नअम, तो इसका बदला यह है कि वैसा ही जानवर मवेशी से दे। यहकुम बिही ज़वा अदल मिनकुम, तुम में से दो आदिल शख्स इसका फैसला करें। हदियम बालिगल काबती, ये कुर्बानी हो काबे को पहुंचने वाली। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने हिरन का शिकार कर लिया, तो अब हिरन की कीमत का अंदाजा लगाया जाए। उसकी कीमत का अंदाजा दो आदिल शख्स लगाएंगे कि हिरन के शिकार पर जो कीमत बनी और उस कीमत से ऊंट खरीदा जा सकता है, तो एक ऊंट ले लिया जाए और वो ऊंट हुदूद हरम में नहर किया जाए। वैसा ही जानवर देने से मुराद ये है कि कीमत में मारे हुए जानवर के बराबर हो। ये हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैहिमा का कौल है। कीमत का अंदाजा दो अफराद वो करेंगे जो आदिल शख्स हों, वहां की कीमत के हाल को वो जानते हों, जहां पर शिकार मारा गया या उसके करीब उसकी कीमत का वो अंदाजा जानते हों कि उसके करीब आबादी में इसकी ये कीमत है। कफारे के जानवर का हरम शरीफ के बाहर ज़िबा करना दुरुस्त नहीं। हरम से मुराद है हुदूद-ए-हरम। हाँ, मस्जिद।

हराम शरीफ में खाने काबा के अंदर तो जिबा नहीं होगा, मगर ये कि मस्जिद हराम शरीफ से बाहर मक्के शरीफ में और मक्के शरीफ के इर्द गिर्द जहां तक हुदूद हरम है उसके अंदर ये कफारे के जानवर का जिबा होना ये जरूरी है। अब देखिये यहां पर फरमाया गया बालिगल काबती, काबे को पहुंचने वाली हो कुर्बानी, ये नहीं फरमाया काबे के अंदर नहीं फरमाया, तो इससे ये पता चला कि खाने काबा के अंदर या मस्जिद हराम शरीफ के अंदर जानवर जिबा करना मना है, या मुराद है हुदूद हरम में। आगे फरमाया औ कफारतुन ताम मसाकीन, ये कफारा दे चंद मिस्कीनों का खाना, इससे मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे हिरन शिकार की और उसका अंदाजा लगाया गया तो पता चला भाई उसकी कीमत 30,000 रुपए है, तो अब 30,000 रुपए का वो जानवर ले ले जिसकी कुर्बानी हो सकती है और हरम शरीफ की हुदूद में उसकी कुर्बानी कर दे, उसे जिबा कर दे तो कफारा अदा हो जाएगा। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जो रकम का अंदाजा लगाया गया उस रकम से गल्ला खरीद ले, अनाज खरीद ले और मसाकीन में इस तरह तकसीम करे कि हर मिस्कीन को सदकाए फितर के बराबर बराबर दे दे। और ये भी हो सकता है कि जितने मिस्कीनों के हिस्से बनते हों उतने वो रोजे रख ले, जैसा कि आगे फरमाया औ अदलु ज़ालिका सियामन, या इसके बराबर रोजे रखे। अब हम इस मसले को थोड़ा आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। मसलन किसी शख्स ने खरगोश का शिकार किया, दो आदिल शख्स ने फैसला किया कि इसकी कीमत 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए का गल्ला खरीद कर गरीबों में इस तरह तकसीम करे कि हर एक के हाथ में सदकाए फितर की रकम आ जाए, मसलन 100 रुपए है सदकाए फितर की कीमत, तो 100 रुपए के से हिसाब अगर लगाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपए में ये 10 हो गए और 5,000 में 50 हो गए, तो अब ये 100-100 रुपए जब तकसीम करेंगे तो 50 गरीबों के हाथ में आएंगे। तो अब हमारे पास तीन सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि 5,000 रुपए का अंदाजा लगाया गया, अगर 5,000 रुपए में कोई कुर्बानी वाला जानवर आता है तो हुदूद हरम में उसे जिबा कर दे। दूसरी सूरत ये है कि 5,000 रुपए को गरीबों में इस तरह तकसीम करे कि हर एक के हाथ में सदकाए फितर की रकम मिल जाए, और तीसरी सूरत यह है कि सदकाए फितर के हिसाब से देखें तो 5,000 में 50 हिस्से बनते हैं, 50 मिस्कीनों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं, तो वो 5,000 रुपए देने के बजाय 50 रोजे रख ले। ये तीनों सूरतें हैं। लियदूक वबाल अमरीही, कि अपने काम का वबाल चखे, कि जब उसने शिकार किया तो अब उस पर ये चीज लाजिम की गई ताकि वो अपने इस काम का वबाल चखे। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ किया जो हो गुजरा, यानी इस हुक्म से पहले जो शिकार किए वो माफ हैं। वमन आद फयंतकिमुल्लाहु मिन, और जो अब करेगा अल्लाह उससे बदला लेगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, और अल्लाह गालिब है बदला लेने वाला। हमारे यहाँ पर इतना तो लिहाज रखा जाता है कि हुदूद हरम में शिकार नहीं किया जाता, लेकिन बाज लोग हुदूद हरम में जानवरों को तंग करते हैं, जैसे कबूतर का मामला है तो वो कबूतरों को उड़ाते हैं और इससे वो मजे लेते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, मूवियां बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं। शरी मसला ये है कि हरम शरीफ के जो जानवर हैं, मसलन हरम शरीफ का कबूतर है वो किसी जगह बैठा है तो आप उसे उड़ाकर उस जगह पे नहीं बैठ सकते, उसका एहतराम करना है। फुकान ने लिखा कि अगर हरम शरीफ के हुदूद में कोई जंगल है, उस जंगल में हिरन है और हिरन जो है किसी दरख्त के साय में बैठा है तो शिकार करना तो मना है,
उस हिरण को वहां से उठा भी नहीं।

सकते। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाए मक्के शरीफ मदीने शरीफ पहुंचे, तो वैसे भी मक्के शरीफ मदीने शरीफ का अदब है, और मक्के शरीफ तो ये तो हुदूद हरम है, इसके तो मसाइल बड़े सख्त हैं। एहतियात का तकाजा ये है कि मक्के शरीफ हो या मदीने शरीफ, वहां के कबूतर और इस तरह के जो जानवर हैं इन्हें तंग न किया जाए। हाँ ये जरूर है कि चलते चलते बस औकात हमें निकलना जरूरी होता है, और जगह जगह कबूतर बैठे हुए होते हैं तो हम गुजर रहे होते हैं, उस वजह से वो उड़ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी वजह से हरम शरीफ के जानवरों को तकलीफ न पहुंचे। उहिल्ला लकुम सईदुल बहरि व तआमुहु मताअल लकुम वलिस्सय्यारा, हलाल है तुम्हारे लिए दरिया का शिकार और उसका खाना तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए है। وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, और तुम पर हराम है खुश्की का शिकार जब तक तुम एहराम में हो। इस आयत में ये मसला बयान फरमाया गया कि जो शख्स हालत एहराम में हो दरिया का शिकार उसके लिए हलाल है, यानी दरिया की मछली का शिकार हालत एहराम में भी कर सकता है। हुदूद हरम में अगर दरिया है तो वहां से भी मछली का शिकार किया जा सकता है। हाँ खुश्की का शिकार यह हराम है। दरिया का जानवर और खुश्की का जानवर, इसकी पहचान क्या है? तो फरमाया गया कि दरिया का जानवर वो है जिसकी पैदाइश दरिया में हो, और खुश्की का जानवर वो है जिसकी पैदाइश खुश्की में हो। आगे शायद फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैही तुहशरून, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठना है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, अल्लाह ने अदब वाले घर काबे को लोगों के क़याम का बाइस किया कि वहां पर दीनी और दुनियावी उमूर का क़याम होता है। डरने वाले वहां पनाह लेते हैं क्योंकि वहां अमन है, कमजोरों को वहां अमन मिलता है, तिजारत करने वाले नफा पाते हैं, हज और उमरा करने वाले वहां हाजिर होकर हज और उमरा अदा करते हैं। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। वशहरुल हराम, और हुरमत वाला महीना यानी माहे ज़िलहिज्जा जिसमें हज किया जाता है। वल हदिया वल कलाइद, और हरम की कुर्बानी, और वो जानवर जिनके गले में अलामतें लटकी हुई होती हैं, इन सब को तुम्हारे फायदे के क़याम का सबब बनाया, इन खाने काबा और ज़िलहिज्जा का महीना, फिर कुर्बानी के जानवर, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फायदे के क़याम का इसे सबब करार दिया। ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ये इसलिए कि तुम यकीन करो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, और ये कि अल्लाह सब कुछ जानता है। اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, खूब जान लो कि अल्लाह का अजाब सख्त है। وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। एक ही आयत में दोनों चीजें बयान की गई, अल्लाह के अजाब का खौफ भी होना चाहिए और रहमत की उम्मीद भी हो। मा अल रसूल इल्ल बलाग, रसूल पर नहीं मगर हुक्म पहुंचा देना, जब रसूल ने हुक्म पहुंचा दिया तो तुम पर हुज्जत कायम हो गई, तुम पर फरमाबरदारी लाजिम है, अब उजर पेश करने की कोई जगह बाकी नहीं। मा अल रसूल इल्ल बलाग, रसूल पर तो सिर्फ हुक्म पहुंचाना है। वल्लाहु यालम मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो, इसको तुम्हारे जाहिर बातें सबका इल्म।

0: है, तुम्हारे दिल में निफाक है, इखलास है, सब वो जानता है। قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, आप फरमा दीजिए कि गंदा और सुथरा बराबर नहीं, अगरचे तुझे गंदे की कसरत अच्छी लगे। यानी हलाल और हराम, नेक और बद, मुसलमान काफिर, खरा खोटा, ये एक दर्जे के नहीं है, ये बराबर नहीं है। और यहां फरमाया गया वलौ अअजबा का कसरतुल खबीस, अगर नापाक लोगों की कसरत तुझे ताज्जुब में डाले तो भी इस बात को समझ ले कि सारी दुनिया में अगर नापाकों की कसरत हो और एक शख्स पाक हो तो वो एक पाक शख्स सब पर गालिब है, ये सारे नापाक मिलकर भी उसके बराबर नहीं हो सकते। आज बड़ी अजीब सोच है, लोग माशरे को देखते हैं और ये देखते हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, बदअकीदगी बढ़ने लगी, खबासत बढ़ने लगी, तो लोग उसी की तरफ चलने लगे। हालांकि उन्हें ये रास्ता अपनाना चाहिए कि पाक लोगों का रास्ता क्या है, मैं उस रास्ते पर चलूं। फत्तकुल्लाह, तो तुम अल्लाह से डरो। या उलिल अलबाब, ए अकलमंदो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरतुल माईदा का 13वां रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रुकू के नूर से हमारे कुलूब को रोशन और मुनव्वर फरमाए। इस रुकू में खाने काबा का जिक्र है, इस रुकू में हज की कुर्बानियों का जिक्र है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हर साल हज मकबूल मबरूर नसीब फरमाए, बार बार उम्रा मकबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर साल रमजानुल मुबारक में उम्रा मकबूल अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जाहिर बातिन को रोशन फरमाए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।
1: सामिन कराम, अभी आप मुफ्ती मोहम्मद आसिफ अब्दुल्ला कादरी दामत बरकातुम अलैह की ज़बानी सूरा अल-मैदा के 13वें रुकू की तफसीर समाप्त कर रहे थे। रब्बे ज़ुल-जलाल इन बातों पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पेश खिदमत है गोशे नूरी में ये दुआया कलाम।

उमैर था अपने ऊंचे महल से निकलकर शेख अब्दुल हलीम के पास आया। उसके चेहरे पर तकब्बुर झलक रहा था और लिबास इतना कीमती था कि हर कोई रश्क करता था। यूसुफ ने शेख की तरफ देखकर कहा, ए फकीर, तेरे पास क्या है? तूने पूरी जिंदगी भीख मांग कर गुजार दी और मुझे देख, मेरे काफिले अरब के हर बाजार में चल रहे हैं, क्या यही तेरी अकल है? शेख मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने अपनी किस्मत को दौलत समझ लिया है, मगर याद रख, अकल जब तक किस्मत से आगे नहीं चलती तब तक जिंदगी का असल मकसद अधूरा रहता है। यूसुफ हंस पड़ा और कहा, चलो फकीर, अगर तेरी अकल इतनी बड़ी है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे एक इम्तिहान में डालूंगा। अगर तू पास हो गया तो मैं तेरा मुरीद बन जाऊंगा, वरना तुझे इस शहर से निकलना होगा। शेख ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, जो अल्लाह को मंजूर है। अगली सुबह यूसुफ ने शेख को अपने आलीशान महल में ले जाकर एक कमरा दिखाया जिसमें तीन दरवाजे थे। एक दरवाजे पर ताले लगे थे और उनके ऊपर नक्शे और अलामत बनी थी। यूसुफ ने कहा, इन तीन दरवाजों में से एक दरवाजे के पीछे एक तिजोरी है जिसमें सोने के सिक्के हैं, बाकी दो दरवाजों में मौत छुपी है। एक दरवाजा खुला तो सांपों से भरा कमरा मिलेगा, दूसरा खुला तो आग का समंदर होगा। तेरी अक्ल कहती है कि कौन सा दरवाजा खोला जाए? शेख ने ना तो दरवाजों की अलामत देखी ना तालों की बनावट, बस सजदे में गिरा और दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को सही राह दिखा ताकि तेरी रजा में फैसला कर सकूं। कुछ लम्हों के बाद उसने पहला दरवाजा खोला और एक अंधेर कमरे में दाखिल हो गया जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। यूसुफ हंस पड़ा और बोला, फकीर, अब तेरा खेल खत्म, ये अंधेरा कमरा मौत की निशानी है। मगर तब शेख ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारी और एक नुक्ता कहा, जहां अंधेरा होता है वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है। कमरे के अंदर एक रोशनदान खुला और एक छुपी हुई तिजोरी नजर आई। जब तिजोरी खोली गई तो उसमें वाकई सोने के सिक्के थे, मगर साथ ही एक कागज भी रखा था जिस पर लिखा हुआ था, अकल से काम लेने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इस जुमले के बाद यूसुफ का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी दौलत और तिजारत शेख की हिकमत के सामने कुछ भी नहीं है, मगर गरूर जल्द नहीं जाता। उसने सोचा कि अब एक और इम्तिहान लिया जाए, ऐसा इम्तिहान जो फकीर को इसके हाल पर छोड़ दे। इस बार यूसुफ ने शेख को शहर के बाहर एक वीरान इलाके में ले जाकर छोड़ दिया और कहा, यहाँ सिर्फ एक कुआं है, न खाना न पानी न आदमी, अगर तो वाकई अकल वाला है तो तीन दिन में इस वीराने से निकलकर वापस शहर आ जाना, वरना मैं समझ लूंगा कि तेरी अकल फरेब थी। शेख ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी चपल उतार दी, जमीन पर बैठ गया और कहा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। रात का सन्नाटा था, आसमान पर सितारे फैले हुए थे और दूर से लुमड़ियों की आवाजें आ रही थीं। शेख अब्दुल हलीम ने वजू किया, दो रकात नमाज पढ़ी और फिर सूफियाना अंदाज में तस्बीह पढ़ने लगा। तीसरे रोज सुबह जब सूरज निकला तो यूसुफ अपने नौकरों के साथ आया ताकि फकीर की लाश देखे, मगर हैरत की बात यह थी कि शेख उस कुएं के पास बैठा था, न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसके पास एक बकरी और कुछ खजूरें भी थीं। यूसुफ ने शेख से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किस्मत उस पर मुस्कुराती है जो अल्लाह की राह में सबर करता है। एक राहगीर जो रास्ता भटक गया था मुझे देख कर रुका और मुझसे दुआ मांगी, मैंने उसे रास्ता बताया और बदले में वो मुझे यह बकरी और खजूरें दे गया। पहले इम्तिहान में शेख की अकल ने उसे कामयाब किया और दूसरे इम्तिहान में उसके सबर और तवक्कुल ने। यूसुफ अंदर ही अंदर टूटने लगा, मगर उसने अभी भी हार नहीं मानी। यूसुफ अब इस बात को किसी तरह हजम नहीं कर पा रहा था कि एक फकीर जिसके पास न दौलत है, न तिजारत, न खादिम, वो कैसे अकलमंद हो सकता है। लेकिन एक बात वो भूल गया था कि अकल सिर्फ किताबों और सौदों में नहीं, दिल की रोशनी और तकव्वुल में भी होती है। एक रात अपने महल की छत पर बैठा यूसुफ अपने वजीर से कहता है, इस फकीर ने मेरी नाक कटवा दी है, लोग अब मुझे नहीं उसे हिकमत वाला समझने लगे हैं, मैं उसे ऐसा इम्तिहान दूंगा जहां न अकल काम आएगी न किस्मत, सिर्फ चालाकी और फरेब चलेगा। वजीर ने आंखें झुकाई और कहा, मगर हुजूर, अगर वो वाकई अल्लाह का बंदा है तो जुल्म की हर चाल उल्टी पड़ सकती है। यूसुफ ने कहा, अब वो फकीर शहर के सामने मेरी इज्जत का सवाल बन चुका है, अब या मैं रहूंगा या वो।
यूसुफ ने शहर में ऐलान करवा दिया कि एक ताजर को सफर हिंद पर रवाना होना है।

जो बहुत अहम तिजारती मुआहदा है। हमें इसके साथ एक ऐसा आदमी चाहिए जो रास्ते में इसके माल और अमानतों की निगरानी करे। इस काम के लिए उसे 10,000 दिनार मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर रास्ते में एक दिन भी गलती हो गई तो उसकी जान ले ली जाएगी। ये ऐलान शेख तक भी पहुंचा। कुछ सूफी शागिर्दों ने उसे मना किया, हुजूर ये तो यूसुफ की चाल है। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, जिसकी अकल का सहारा अल्लाह की रजा हो वो किसी के चाल से नहीं डरता। शेख अब्दुल हलीम काफिले पर जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह जब काफिला रवाना हुआ, यूसुफ भी उस ताजर के भेस में था। निकाब ओढ़े हुए काफिले में ऊंट माल से लदी गाड़ियां और हिफाजत के लिए पहरेदार थे। शेख को रास्ते भर में खिदमत पर लगा दिया गया, कभी ऊंटों की रस्सियां बांधना, कभी पानी लाना, कभी माल की देखभाल करना। मगर हर बार शेख ने न सिर्फ काम किया बल्कि ऐसे तरतीब से किया कि रास्ता आसान हो जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, यूसुफ ने एक थैली माल की चुरा कर रेत में दबा दी और अगली सुबह हंगामा मचाया। हमारी अमानत गायब है और इस पर निगरानी किसकी थी? काफिले के तमाम लोगों ने कहा, निगरानी तो इसी फकीर की थी। काफिले वालों ने शेख की तलाशी ली मगर शेख के पास कुछ ना मिला। अब यूसुफ ने कहा, अब तो ये कबूल कर के माल उसी ने चुराया है, वरना हक के तौर पर जान ले ली जाएगी। शेख को एक दरख्त से बांध दिया गया। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ धूप और प्यास की मार थी और शेख प्यास की वजह से कमजोर होते जा रहे थे। काफिले के तमाम लोग तमाशा देखने लगे। शेख ने फिर तस्बीह उठाई और दुआ करने लगा। उसी वक्त एक चरवाहा दूर से बकरियां चरा रहा था, दौड़ता हुआ आया और कहा, मैंने कल रात एक आदमी को इस रेत के नीचे कुछ दबाते हुए देखा था, जब मैंने पूछा तो वो डर गया और चला गया। चरवाहे ने कहा, चलो मैं उस जगह को दिखाता हूँ। काफिले वाले चरवाहे के साथ थैली की तरफ दौड़े और जब रेत की खुदाई की तो थैली अंदर दबी हुई मिली। काफिले वालों ने कहा, अरे ओ चरवाहा, ये तो बताओ वो आदमी कौन था जिसने ये कारनामा किया है? चरवाही की नजर सीधी यूसुफ की तरफ गई। यूसुफ ने शर्मिंदगी से अपनी निगाह नीचे कर ली। शेख की रस्सियां खोल दी गई। यूसुफ ने खामोशी से नकाब उतारा और जमीन पर सजदा कर दिया और शर्मिंदगी से कहा, ऐ अब्दुल हलीम, तू सच्चा फकीर है और मैं झूठा बादशाह। मेरी अकल मेरे गुरूर में डूबी हुई थी और तेरी अकल अल्लाह के नूर से रोशन थी, मुझे माफ कर दे। शेख ने उसे उठाया और कहा, जिसे अकल अल्लाह के दर से मिले वो माफी देने में देर नहीं करता। शेख ने यूसुफ को माफ कर दिया। जब काफिला वापस शहर में पहुंचा तो शहर के लोग जमा हो गए। यूसुफ ने सबके सामने ऐलान किया, आज से मेरी तमाम दौलत, तिजारत और महल अल्लाह की राह में वक्फ है और मैं शेख अब्दुल हलीम का मुरीद बनता हूँ। शहर की मस्जिद में यूसुफ ने पहला इमामती सजदा किया। शेख ने उसे सिर्फ एक बात कही, असली अकल वही है जो किस्मत बदलने से पहले अल्लाह को पहचान ले। तौबा के बाद यूसुफ ने अपनी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। आलिशान महल सूफियाना खानकाह में तब्दील हो गया और वो खुद हर सुबह शेख के साथ मस्जिद की सफाई किया करता था। अगर उसके दिल में अब भी एक सवाल हर रोज चुभता था, क्या मेरी किस्मत वाकई बदल चुकी है? क्या मैं अब भी उस राह पर हूँ जो अल्लाह तक ले जाए? शेख ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा यूसुफ, तूने तौबा कर ली है मगर दिल का घमंड पूरी तरह दब जाता है जब बंदा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खुद को मिटा देता है। यूसुफ ने कहा, हुजूर बताएं मुझे क्या करना होगा? शेख ने यूसुफ को तीन काम सौंपे। पहला काम, 3 दिन और 3 रात शहर के सबसे गरीब मोहल्ले में रहना। फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी से कुछ ना लेना बल्कि सिर्फ देने वाला बनना। दूसरा काम, हर दिन कम अज कम 5 लोगों की मदद करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा काम। तीसरा काम, हर रात मस्जिद में जाकर अल्लाह से सच्ची दुआ करना, बगैर किसी दरख्वास्त के सिर्फ शुक्रगुजारी के अल्फाज कहना। यूसुफ ने ये तीन काम कबूल कर लिए। 3 दिन बाद यूसुफ वापस आया मगर अब उसका चेहरा वो नहीं रहा था जो पहले था। अब उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। शेख ने कहा, यही असली अकल है जो दिल को रोशन करती है और किस्मत को बदल देती है। कहानी का खुलासा यह है, अकल सिर्फ दानिश और फहम नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन, सबर, तवक्कुल और दूसरों की मदद भी है। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान।

और आखिर में सामीन, जैसा कि मालूम है, हज बैतुल्ला शरीफ के बाद अब हुज्जाज कराम मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवा दवा है, पेश खिदमत है। इसी की मुनासिबत से दो कव्वालियाँ और इन्हीं के साथ ही गुलाए अक़दर प्रोग्राम का मुकर्रा वक्त इख्तिताम को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

పాటలు పాడతాను. ఈ పాట మీకోసం. మా అమ్మ కోసం రాసిన పాట.

0: की पसंद।
1: किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
0: आपकी पसंद।

हेलो जी, नमस्कार आदा, बस सत श्री अकाल और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपके पसंद प्रोग्राम लेकर आ गई है देवी नाम का साथ देने के लिए 4 बजे तक। आपका चहेता फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां हर गीत के साथ जुड़ी है आपकी भावनाएं, आपकी यादें और आपके अपनों का प्यार। दोस्तों, सप्ताहांत की इस प्यारी दोपहर में हम लेकर आए हैं मधुर गीतों का खूबसूरत गुलदस्ता। अगले 1.5 घंटे तक आपके संदेश, आपकी शुभकामनाएं और आपकी पसंद के गीत हमारे साथ रहेंगे। तो मुस्कुराइए, चाय की चुस्कियाँ लीजिए और संगीत के इस सुहाने सफर में हमारे साथ बने रहिए। और पहला गीत आप सबों के नाम, और आपको पता ही है कि हम आपका फ़ोन लेते हैं 402-8085 पर। हम लाइन खोलने वाले हैं और साथ में 5251700 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं अपनों के नाम। वैसे सप्ताहांत में कल स्पेशली है मदर्स डे, परिवार दिवस भी मनाएंगे पापा के लिए भी, तो आप सभी को हम कहेंगे इन एडवांस हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फैमिली डे। और कुछ गाने हमने चलाए हैं वहाँ पर, और अब भी अगर आपको कोई गाना सुनना है, आपको कोई गाना पसंद है कुछ, मगर कुछ हट के वही गाने बार बार नहीं सुनाना है हमको, बस कुछ थोड़ा सा आप होमवर्क कीजिए और कुछ ऐसे गाने की मांग कीजिए जो अभी सुना नहीं है। बस पहला गाना दिल का रिश्ता, हमारा और आपका रिश्ता तो है दिल से, संगीत से और प्यार से। बस ये गाना आप सबों के लिए है।

जय दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। किसी अपने की मुस्कान, एक प्यारा संदेश या फिर कोई पुराना गीत जो हमें बीते दिनों की याद दिला देता है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है मेरे दोस्त, और प्यार जताने से गहरा होता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। एक्चुअली जो है विश्वानी दुमन जी हमेशा की तरह हमसे जुड़ी हुई है वाकवा से। नमस्ते जी विश्वानी जी, और वे सुनना चाहती है आंसू और मुस्कान मूवी का गाना ओ माँ। तो ये गीत उनकी बहन इंदिरा के लिए शारदा, साथ में सहेली है नीला, प्रतिभा शोभा और गीता गजाधर, और सभी माताओं के लिए। और वे कह रही हैं हैप्पी हैप्पी मदर्स डे, और आप में हमारी पूरी टीम के लिए भी थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। तो ये गाना आपके लिए विश्वानी जी और आपके परिवार के लिए।

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: आपकी पसंद

जी दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आपके पसंद प्रोग्राम के साथ। मैं हूँ देवीना, आपके संग 4 बजे तक। वैसे संगीत जो म्यूजिक है, एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, या सीधे दिल तक पहुंचता है। कई बार कोई गीत हमें हमारे बचपन में ले जाता है, जवानी में ले जाता है, या किसी खास दोस्त या परिवार के सदस्य की याद दिला देता है। और आज हमें अनेक संदेश प्राप्त हुए हैं, मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए, अपनों के लिए, माताओं के लिए, परिवारों के लिए। मगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस अगला गाना जो है किसी बेवफा के लिए है, बस एक बेवफा है। सुनी निगम की आवाज़ में, साथ में कोरस, फिल्म है बेवफा। और इस गाने की मांग की है हरीश जी ने बुबासिया से। इस गाने को आपने आपने मांग की थी ना हरीश जी, तो बस ये गाना आपके लिए, किसी खास के लिए।

2:46 हुए हैं आपके पसंद प्रोग्राम एम टू रेडियो मॉरिशस पर देविना के संग 4 बजे तक। कैसे हैं मेरे दोस्त, आप सब लोग आज काफ़ी बिजी होंगे, मगर टाइम निकाल कर जितने लोग हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है वहाँ अभी कुछ ख़राबी है चल रही है, बस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, तब तक के लिए हम कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं यहाँ पर। सो बस फ्रॉम सुदेविया वाकवा, गुड आफ्टरनून दीदी जी, आपको भी गुड आफ्टरनून, एंजॉइंग योर शो, थैंक यू सो मच। अगला गीत ट्रियोले के दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, आत्माराम भैया मालिंगा के, मामा अनुषा, पापा किरण, मामा यशना, पापा नीरज, माँ सत्यभामा, इंदिरा इन सभी बच्चों की तरफ से। फिल्म है तलाश, गीत है मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, एंड टू ऑल योर टीम्स थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे, आपको भी गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू टू। सो बेस्ट ये गाना आप सबों के लिए।

जहाँ दिन बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी AM2 रेडियो मॉरिशस पर। बस आप सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। आटा और चावल ये दोनों सब्सिडी वाले उत्पाद हैं। इन्हें धोखाधड़ी तरीके से यानी गलत तरीके से निर्यात किया गया था। इस मामले की जांच के लिए फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को सौंप दिया गया था। इस बीच व्यापार मंत्रालय कानूनी ढांचे को मजबूत कर रहा है और ऐसे नए नियम तैयार कर रहा है जिनका उद्देश्य इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकना, उनका पता लगाना और उन्हें सजा देना है। इनमें 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा शामिल है। परिवार कल्याण मंत्रालय या पालक परिवारों यानी फोस्टर फैमिली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने जा रहा है और नए कानूनी मानदंडों की घोषणा कर रहा है। मंत्रालय एक ऐसा मंच भी स्थापित कर रहा है जहां ये परिवार आपस में संवाद कर सकेंगे और अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। उप प्रधान मंत्री आर्यन नवामारी ने आज फिनिक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान इस बात की घोषणा की। मॉरिशस में बैंकिंग कानून पर एक व्यापक पुस्तक शिव पोताया की पुस्तक लॉ ऑफ बैंकिंग इन मॉरिशस का विमोचन पोर्टिस नगर पालिका में आयोजित एक समारोह के दौरान किया गया। लगभग 200 पृष्ठों में की इस पुस्तक में लेखक ने विभिन्न केस स्टडी के आधार पर मॉरिशस के बैंकिंग कानून की बुनियादी अवधारणों का विस्तृत विश्लेषण किया है। ये पुस्तक खासकर बैंक ऑफ मॉरिशस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र के संचालन में उसके महत्व को समझाती हैं। विदेश में थाई के बचाव कर्मियों के अनुसार लाओस में बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे 4 पुरुषों को 10 दिन बाद बचा लिया गया है। ये लोग 7 अलग अलग गांव से हैं जो सोने की तलाश में सुरंगों में गए थे, लेकिन 20 मई को आई अचानक बाढ़ के कारण मध्य सेजोम्बुन प्रोविंस के दूरदराज पर्वतीय इलाके में गुफा के अंदर ही फंस गए। बचाव कर्मियों ने बुधवार को केवल 5 लोगों को जीवित पाया था। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। वैरोद्यमिंगम थ्रियोले में 87 साल के 87 years old श्री ईश्वर प्रसाद बकुरी, श्री ईश्वर प्रसाद बकुरी जिन्हें लोग हरिदत्त नाम से जानते थे और जो पहले स्कूल में अध्यापक थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे यानी इस समय इनके मकान रॉयरोद्यमिंगम थ्रियोले से उठाकर एसएसएस लेन थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जा रही है। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोज हिल में 78 साल की 78 years old बीबी फजीदा फाउदो, पैदाशी नाम भातू और जिन्हें लोग फजीदा नाम से अधिक जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज जैसे पहर के 3 बजे इनके मकान नंबर 15 रामकिलावन बुधन स्ट्रीट रोज हिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM पिचिकाओं घोंगुब में 53 साल के 53 years old श्री दीपक चतुरी जिन्हें लोग मंगोल नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के मकान पिचिकाओं घोंगुब से उठाकर घोंगुब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM नंबर 84 मोसेयालीन एवेन्यू कैटोबोन में 63 साल के 63 years old श्री हरिदत्त गोकुल जिन्हें लोग उमेश मौसंगातो नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान नंबर 84 मोसेयालीन एवेन्यू कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: माँ
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं,
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: 819 kilohertz. This is Radio Marxist.

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: आपकी पसंद. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे प्यारे दोस्तों, अभी हो चुका है 3:11 AM2 रेडियो मॉरिशस से जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद. आज है देविना आपके संग 4 बजे तक आपकी पसंद प्रोग्राम में. आपकी खुशियों में हम भाग ले रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी से ही मदर्स डे, फैमिली डे. और वैसे कहते हैं परिवार वह अनमोल छाव है जहाँ हमें प्रेम, सुरक्षा और अपनापन मिलता है. चाहे हम कितने भी व्यस्त बिजी क्यों न हो, परिवार के साथ बिताए कुछ पल पूरे दिन को खूबसूरत बना देते हैं ना. जैसे कि कल है रविवार, संडे को मदर्स डे स्पेशल डे मना रहे हैं, सो सभी परिवार एक साथ मिलने आएंगे. और क्यों ना घर पर रहने के बजाय हम समुद्र किनारे जाएं, कभी कुछ रेस्टोरेंट में जाएं, क्यों हमेशा माँ जो है पकाए, किचन में रहे, सभी के लिए खाना बनाए, क्यों ना साथ में सब मिलकर खाना बनाए, या कुछ अगर अच्छा रेस्टोरेंट है कहीं पर तो जाकर मम्मी को लेकर जाइए ना. उस एक दिन के लिए उनको बस इस सब से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बस आप लोग जो है ना उसके मुक्त कीजिए. उनको घुमाने ले चलिए, उनके साथ समय बिताएं, सिनेमा ले जाएं, कोई अच्छी फिल्म दिखाने ले जाए, या फिर कोई शॉपिंग लेकर जाए, या फिर बस समुद्र किनारे अच्छा सा समय बिताए मामा के साथ, पापा के साथ, परिवार के साथ. और ऐसे में जो है अगला जो फरमाइश है हम देखते हैं. अगली फरमाइश, प्रणाम देवीना जी. प्रणाम जी, यह है मनीता जिसकी ओर से. आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे. हाँ ठीक है, फ्रांस से आपके प्यारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं. ओहो, सो हमको कहें, आपको कहेंगे बोन अप्रीमी जी. और फ्रांस में होंगे तो अगर हो सके तो प्लीज़ फिल्म है माँ का चल गाना, माँ है मोहब्बत का नाम. ऑफकोर्स मेरी प्यारी माँ सुमंती के लिए सेंट जूलियन विलाज, माँ को बहुत मिस कर रहे हैं ऑफकोर्स हम जानते हैं. तो फ्रांस की दोनों बेटी की तरफ सचिता, मनीता, बहन है आरती, बबीता, रेखा, भाई सत्यम एंड भाभी उषा. और सभी दुनिया के सभी माओं के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच. MBC की पूरी टीम को भी थैंक यू सो मच मनीता जी. और धन्यवाद आपको आपके प्यारे प्रोग्राम के. ओ हो, थैंक यू सो मच और वेलकम मेरी जान. सो बस शुभ संध्या आपको भी. तो बस और सभी छोटे बच्चों की तरफ से भी राहुल यादव के शाह नानी को प्यार भेज रहे हैं फ्रांस से. धन्यवाद. सो थैंक यू सो मच डियर. तो ये गाना आपके लिए और सभी परिवार के लिए, सभी माओं के लिए.

हजारों सलाम। स्वागत है आपके संदेश, आपकी शुभकामनाएं और आपका प्यार हमें हर बार नई ऊर्जा प्रदान करता है, बिलीव मी। और जहां कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, घर पर, काम पर या सफर में, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं अगला जो है गाना, अगली फरमाइश जो है धनी जी की ओर से, बुआशेरी से हैं और इनको ये गाना सुनने को मन कर रहा है, यश और हिमिश के लिए भी। सो अनवर के आवाज़ में जनता हवलदार मूवी का गाना है हमसे का भूल हुई। धनी जी सुनिए आपका मनपसंद गाना। और हम कहेंगे कि कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं है, अकेले आए थे, मगर जब जाते हैं ना बहुत सारी यादें, और जो भी हमारे आसपास है ना उनकी कदर कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा, बस आप भी खुश होंगे, वे भी खुश होंगे।

हाँ जी, 3:25 हुए हैं आपके पसंद प्रोग्राम में साथ देने के लिए, दिल से शुक्रिया। सो नमस्ते विद्या जी, अब यूनियन पॉक, हैप्पी मदर्स डे आपको भी। तो फिल्म दादी माँ से लिया गया वो गाना आपको सुनना है, हमने नहीं देखा है। बस बहन सती के लिए सुरेखा, अमृता, इंदिरा, विमला, वेदना, प्रीति, आशना, निशा और दिव्या, और जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं ना, ये गाना मन्ना डे साहब की आवाज़ में है और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ों में भी। दादी माँ मूवी का गाना आप सबों के लिए आपकी पसंद प्रोग्राम में।

जो एक्चुअली ये गाना जो है गीता जी प्यार से दिल से प्यार भरा नमस्कार आपको, ये गाना आपको सुनना था सो हमने ढूंढ लिया आपके लिए खोया खोया चांद। और ये गाना आपके पति रोहित के लिए, तीन बेटों के लिए, दो बहुएं हैं, तीन जो छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तनीष आरव आदित्य, साथ में प्यारी सी जानवी के लिए।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: जाग लग जाना गाना जो है जाएगा नीता जी के लिए, संजना विराज की है, नीता के दिन माँ के लिए और सभी जो उनकी बेटी जो है, और साथ में होगा लीला जी और बशरी सभी लोचन परिवार, काशी परिवार, सभी माताओं के लिए, हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच। और सो गोज़ टू लॉन्ग माउंटेन की पूजा के लिए, और ये जो है मामा की नारायणी है, मामा नारायणी, पापा है सुभाष, भाई है वशिष्ठ और बहन है यामिनी, उनकी ओर से ये गाना।

अगला प्यारा सा गाना जो है ये होगा श्यामला गुरंदन जी के लिए। ये गाना उनको बेहद ही पसंद है, उनकी सभी सहेलियों के लिए, उनके सभी परिवार के लिए, रघुनंदन परिवार जो है, उनके भैया के लिए, भाभी के लिए, सभी सहेलियों। तो बस इस गाने को आप एंजॉय कीजिए, इसको सुनिएगा प्यार से।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: माँ,
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जी हाँ, ये जो गाना है ये होगा अनिता जी की ओर से, मोडालबिया की है, करुणा अमृता सभी दोस्तों के लिए। फिल्म है हाथ की सफाई, रफी साहब की आवाज़ और साथ में लता जी की आवाज़। इसको एंजॉय कीजिए।

जी हाँ, देखते देखते 4:55 हो गए हैं और आपने हमारा साथ दिया इतने प्यार से कि क्या कहें। सो बस हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। कल मिलते हैं RMP रेडियो मनोरंजन पर 12 से 3 तक सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दौरान। और ज़िंदगी में तो कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा हमारे साथ रह सकती है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा अवश्य होता है। बस उसी अच्छाई को खोजते रहिए और जीवन को गीतों की तरह गुनगुनाते रहिए। और समय जो है, अब हम समय हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, आपसे अनुमति लें। इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करने वाले हैं और हमारे बाद आएंगी डॉक्टर अलका दनपत लेकर साहित्य दर्पण प्रोग्राम। और कल है मातृ दिवस, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे में नाम जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर, इससे पहले जो गाना था ना, इसमें नाम जोड़ना चाहेंगे शीला जी का, दीपिने से है, उनको ये गाना सुनना था। अरबी के लिए अनिता जाफी कौफला, कवि से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्योति औषतो बिनागैस, आशनी रेखा, सुरेखा, माधव फैमिली एंड रोज बेल की प्यारी सी सुरेखा जी अपने भाई बहनों के लिए ये गाना, एक गाना मांग रही है, तो ये गाना आपके नाम करते हैं। तो बस ये कहेंगे आप सभी को टेक केयर और हैव ए नाइस सैटरडे, शुभ संध्या। कल मिलते हैं संडे को। सो लव यू ऑल, बाय बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण। प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज तो बड़ा ही प्यारा दिन है। या तो आप माँ होंगे या आप अपनी माँ के घर गए होंगे। आप अपने बच्चों के साथ अपना प्यारा सा दिन मना रहे होंगे या कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे कल मनाने के लिए। और फिर MBC तो आपका सुबह से ही साथ दे रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। इतने प्यारे प्यारे गाने, इतनी आपकी फरमाइशें, और अपनी माँ को लेकर हम सभी बड़े ही संवेदनशील होते हैं। और जीवन भर तकलीफ हो या सुख हो, दोनों समय माँ याद आती है। कुछ उपलब्धि हो, हम माँ को ज़रूर बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में उपलब्धि को लेकर सबसे अधिक सच्चे भाव में जो प्रसन्न होती है वह माँ होती है। दुनिया बधाई देती है, कहीं पर ईर्ष्या भी हो सकती है, कहीं पर केवल दिखावा भी हो सकता है, लेकिन माँ जो है जब वह आशीर्वाद देती है तो वह सच्चे मन से होता है। क्योंकि माँ हर रूप में अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। वो कहानी तो आप सबको पता ही है ना, एक लड़के की प्रेमिका ने कहा कि मैं तो तब तुम्हारे साथ रहूँगी जब तुम अपनी माँ का कलेजा ला के दोगे। अरे सचमुच उस लड़के ने यही किया, माँ को मार डाला। और जब चलने लगा, थोड़ी दूर ही गया था तो एक पत्थर से उसका पाँव टकराया। कलेजा बोला, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? ये कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है कि तुम माँ को कितना भी नुकसान पहुँचा दो, फिर भी वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही मांगती है। तो श्रोताओं, ये जो मदर्स डे है, आज मातृ दिवस जो हम मनाने जा रहे हैं, और विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग दिन और तिथियां रखी हुई हैं, लेकिन मॉरिशस महीने के अंत में मनाते हैं ताकि हम अपनी माता को अच्छा गिफ्ट भी दे सकें, ख़रीदारी भी कर सकें। पर ये सच बात है भाई, ख़रीदारी या गिफ्ट माँ की भावनाओं के आगे बहुत छोटी चीज़ है। ये तो हम जैसे उनके घर गए तो थोड़ा सा पकड़ा दिया कि माँ ये मेरी तरफ से, सच पूछा जाए माँओं से तो वो कहेंगी कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार, तुम मुझे सम्मान और इज्जत देते रहो, ये ही सब कुछ है। मेरे साथ तकनीकी सहायक के रूप में लुडोविक जुड़ चुके हैं, उनका भी धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप भी जुड़ सकते हैं 4028085 पर, और तब तक हमें गीत आपके लिए डालते हैं।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
1: श्रोताओं, केवल मदर्स डे नहीं ना, पापा भी तो हैं पीछे। ये जो पिताजी हैं, पा हैं, ये भी तो बराबर का सहयोग देते हैं ना। मेरे तकनीकी सहायक लुडोविक यही कह रहे हैं, इट शुड बी पेरेंट्स डे। सचमुच मैं भी इसी की समर्थक हूँ। ठीक है, हम ये बिजनेस है कि मदर्स डे है, कार्ड दो, गिफ्ट दो, होटल में जाओ, बाहर खाओ, लेकिन पापा भी उस प्यार के उतने ही हकदार हैं। तो चलिए, हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं टेलीफोन पर, हम उनको लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते जी, कैसे हैं?
2: मैं हूँ धनेश्वर चौहान जवेल से। मैं ठीक हूँ बहन जी, आपकी कृपा से।
1: स्वागत है आपका, भगवान की कृपा बनी रहे।
2: हाँ तो, और भगवान की कृपा तो बनती है, लेकिन आपकी वाणी से तो घर आंगन सब पवित्र हो जाए।
1: यह आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं।
2: नहीं तो आप मान लेने के बराबर है ना।
1: क्या बात है, बहुत धन्यवाद।

0: आप तो माता है गुरु माता।
1: अरे चलिए आज कुछ क्या सुनाएंगे आप?
0: तो देखिए बहन जी, मैं तो जितना तैयार किया तो वही तो सरस्वती माता की कृपा से
1: जी,
0: मैं
1: तो जी, जी
0: चार घंटे सुना सकूंगा।
1: सच मुझे आपको ईश्वर शक्ति दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र में भी आप अपनी रुचियों को उनका परिष्कार करते हैं, नया नया प्रयोग करते हैं। बस जो आदमी ऐसा है वो सदा जवान रहता है। तो चलिए उन चार घंटों में से कुछ हमें सुना दीजिए।
0: तो मैं चार घंटा की बात नहीं, सिर्फ दो मिनट में
1: क्या बात है
0: सुनाऊंगा।
1: जरूर जरूर।
0: हाँ तो आप सभी को मातृ दिवस अभिनंदन।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: जी शुरू करिए। शायद आपका फोन कट गया, आप एक बार फिर से ट्राई करें। तब तक हम, हाँ बोलिए।
0: हेलो
1: जी धनेश्वर जी, सुन रहे हैं।
0: हाँ
1: जी।
0: तुझे सूरज कहूँ या चंदा, सुनते हैं?
1: जी जी बिल्कुल क्लियर, सुनाइए।
0: ओके। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में धोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
1: बहुत सुंदर धनेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा आपने गीत सुनाया। सचमुच उसमें जो मुख्य बात है, उनका दिल कभी ना दुखे, इस बात का ध्यान हम सबको रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो।
2: नमस्ते। नमस्ते।
1: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: नाम एमिसी सिंह।
1: हाँ काठरबोन से।
2: हाँ काठरबोन से।
1: जी बोलिए मिसेस सिंह।
2: मिस सिंह, मैं आपको माता दिवस को हैप्पी हैप्पी बर्थडे।
1: बहुत धन्यवाद मिसेस सिंह, बहुत धन्यवाद।
2: तो एक सामान होते हैं सभी माताएं।
1: जी जी।
2: आप सभी मेरी माता हैं, आप सभी को हैप्पी हैप्पी हैप्पी दिवस से माता दे, और यही शुभकामना और को आगे बढ़ेगा माँ होने के लिए,
1: नाते
2: माँ होने के लिए, माँ से माँ होने के लिए। और एक गीत भी सुना देती, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
1: बहुत सुंदर मिसेस सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
3: शुभ नमस्कार अलका बहन।
1: नमस्कार भाई साहब, आज का दिन सभी माता पिता सभी को अभिनंदन।
3: धन्यवाद। मैं कुछ सुनाऊंगा इसी संबंध में आपके।
1: जरूर।
3: और सहयोगी कौन है
1: आज मेरे साथ? लुडोविक जी हैं।
3: लुडोविक को सादर सप्रेम नमस्कार।
1: यंग लड़का है और बोल रहा है केवल मदर्स डे नहीं, फादर्स डे भी पेरेंट डे होना चाहिए।
3: महत्व है
1: क्योंकि उसने कहा मैं दोनों को एक उपहार देने वाला है, माताजी को भी पिताजी को भी।
3: अच्छा बाद में पिताजी पर कहूंगा।
1: जी जी बोलिए।
3: माँ पर बोलना
1: चाहूंगा। जरूर जरूर।
3: आज के विषय पे सभी को मैं सुनाना चाहूंगा कि माँ क्या चीज है।
1: वाह जरूर सुनाइए।
3: और उसके प्रति हमारी सर्वोपरि और कर्तव्य क्या है।
1: बिल्कुल सही बात है।
3: देखिए बहन जी, माँ प्रेरणा का स्रोत है।
1: वाह बहुत बढ़िया।
3: माँ जीवन है। माँ का प्यार शांति है। बड़े भाग्य से मिली माँ तो मैं कहूंगा जननी माँ ही तो स्वर्ग है। ऐसे हमारे संस्कृति में भी है।
1: जी जी बिल्कुल।
3: श्री रामचंद्र भगवान जन्मभूमि के बारे में और माँ जननी माँ के संबंध में बताया है। उसका श्लोक तो मुझे पता है।
1: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा

0: da pigari e sì.
1: तो बहन जी माँ क्यों आलू बहन जी
0: जी जी सुन रही हूँ
1: माँ केवल एक शब्द नहीं बल्कि ममता त्याग और निस्वार्थ
0: सचमुच सचमुच
1: परिवार रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने हेतु अब कुछ न्योछावर कर देती है
0: बिल्कुल सही
1: हमारी संस्कृति में भी मातृदेव भव माँ को देवता तुल्य मानना का संदेश
0: हाँ सचमुच जी
1: केवल एक दिन मातृ दिवस तक सीमित न रखें माँ का उत्सव रोज है प्रतिदिन है
0: बिल्कुल
1: यदि मातृ दिवस पर मिलने वाली प्यार और सम्मान को साल के हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जाए
0: तो जीवन में तनाव कम हो जाएगा
1: तनाव कम और निश्चित रूप से यह दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं
0: किसको रोज आशीर्वाद मिले तो दुनिया ही बदलने लगती है
1: क्योंकि माँ तो सबसे भी महान है
0: स्वर्ग
1: की कल्पना करना बहन जी कोई गलत बात नहीं है
0: जी
1: नहीं हुआ लेकिन स्वर्गवासी कोई बनना नहीं चाहता
0: सब मौत से डरते हैं
1: लेकिन स्वर्ग तो चाहते हैं ना
0: हाँ स्वर्ग चाहते हैं लेकिन मृत्यु नहीं
1: पहले हाँ। स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो मरो तो क्या कर्म क्या है देखिए भाई मैं कहूंगा सावधान रहना चाहिए सभी को राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग पहुंचना चाहता था
0: लटक गया बीच में
1: लटक गए
0: जी राजा नहुष पहुंचे तो पतन ही हो गया
1: बहन जी अंत में
0: हाँ
1: जोड़ना चाहूंगा
0: जी जी
1: कि बचपन में हम माँ के ज्यादा निकट रहे
0: अच्छा
1: पिता जी के उतना नहीं
0: अच्छा
1: लेकिन माँ के ज्यादा निकट रहे रहते थे इसी भांति मैं कहूंगा कि वृद्धावस्था में माँ का साथ दें उन्हें खुश रखें
0: बहुत जरूरी है उनकी खुशी बहुत जरूरी है
1: बहुत जरूरी तो ऊपर वाला करेगा क्या उस पूरे समय का पुण्य हमारे खाते में
0: सही बात है बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: बहन जी आपको माता दिवस की शुभकामनाएं
0: बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद
1: हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद शुभ संध्या
0: आपको भी शुभ संध्या चलिए एक और श्रोता को लेते हैं हेलो
2: हाँ बेटी
0: हाँ नमस्ते नानी जी कैसे हो
2: अच्छा है बेटी तो कैसे हो
0: मैं ठीक हूँ नानी जी आज तो आपका दिन है
2: धन्यवाद माता पिता के धन्यवाद
0: बहुत कुछ आपसे सीखते हैं
2: माता पिता के तो लोग के सब कोई के धन्यवाद
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: जैसन एगो त्योहार बड़ी निमन त्योहार बाटे बड़ी खुशी के बात बाटे
0: आज तो नानी जी बहुत उपहार मिले होंगे
2: हाँ बेटी भगवान के बगल से
0: सबको
2: दया हो
0: नाती पोते सब आए होंगे
2: निमन जीवन हो चले लड़का लोग
0: आप लोगों का यही आशीर्वाद चाहिए
2: एगो गीत दूर लालिन के गा देते हैं
0: जरूर जरूर
2: माता पिता लाखों में एक हो माता तेरी गुना न भुलाना माता पिता लाखों में एक न वही मास माता गर्भ में रखली जन्म दिहलन मोरे माँ हो माता तेरी गुना न भुलाना गोदिया में ले ले माता दूधवा पियवले बच्चों से कर दे प्यार हो माता तेरी गुना न भुलाना माता पिता लाखों में एक हो माता तेरी गुना न भुलाना चलने को सिखाया माता खिलाने को सिखाया चलने को सिखाया माता खिलाने को सिखाया पिता देवेलन बड़ा प्यार ओ माता तेरी गुना न भुलाना माता पिता लाखों में एक ओ माता तेरी गुना न भुलाना तेरी गुना न भुला
0: बहुत सुंदर नानी जी बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे लोकगीत के लिए सचमुच शुरू से ही समाज में माँ के सम्मान की बात बार बार कही गई है एक और श्रोता को लेते हैं हेलो
3: हेलो डॉक्टर जी नमस्कार
0: नमस्कार धनी जी कैसे हैं
3: मैं ठीक हूँ अच्छा।
0: सुनाइए
3: आप अच्छी है ना
0: जी जी बिल्कुल
3: भगवान ने हर चीज को डॉक्टर जी
0: हाँ
3: जुड़ा से बनाया है
0: हाँ

0: हर चीज को,
1: बिल्कुल,
0: तो माता पिता का भी एक जोड़ा है।
1: हाँ। उनके बच्चों के विकास के लिए
0: मातृ पितृ दिवस का अभिनंदन।
1: मैं तो साफ ही कह रही, दोनों गृहस्थी की गाड़ी दोनों के सहारे
0: तब शोभा देता है।
1: जी जी बिल्कुल जी,
0: जैसे रात और दिन है।
1: हाँ, ठंडा गरम
0: एक जोड़ा है।
1: जी जी,
0: तो दिल दुखता है जब माता
1: देखिए लुडोविक ने भी कहा,
0: इंसान बनाता है।
1: धनी जी, लुडोविक भी कह रहा है मैं तो अपनी माता जी और फादर पिताजी को भी दूंगा।
0: डॉक्टर जी
1: जी,
0: ये मान लिया जाए बच्चों के किशोरी उम्र में।
1: हाँ।
0: कभी कभी माँ छोड़कर चली
1: हाँ,
0: जाती है,
1: दुर्भाग्य,
0: अलग हो जाती है,
1: दुर्भाग्य,
0: या कि गुजर जाती है।
1: जी जी, कुछ भी
0: तो
1: हो सकता है।
0: ये पिता ही है जो भार उठा लेता है अपने बच्चों का।
1: सचमुच
0: सोच लीजिएगा, किशोरी उम्र में।
1: हाँ, नहीं तो आपने बहुत किया, हम आपका
0: जी,
1: हम आपका बहुत सम्मान करते हैं कि आपने बड़ी मेहनत की है।
0: जी, सब बोझ पूरा कर देते हैं अंत समय तक।
1: जी,
0: जब तक जीते हैं उनका सहारा बनकर।
1: सचमुच सचमुच
0: जी, तो ऐसा देखिए श्रवण कुमार जी माता पिता के दोनों
1: कांवड़ में उठा
0: के लेकर
1: कांवड़ में
0: कांवड़ तरह लेकर चले जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता दुखी थे,
1: देख नहीं पाते थे, अंधे थे।
0: ये कर्तव्य है। हाँ। एक एक जिम्मेदारी है एक बच्चे का,
1: बिल्कुल,
0: तो निभाया उन्होंने। हाँ। दोनों का माता पिता
1: दोनों
0: तब शोभा देता है। ये माता पिता एक जोड़ा है।
1: चलिए, हम तो धनी जी आपके विचार से सहमत है और हम तो माता पिता दोनों का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तो, माँ अकेली बहुत अकेली हो जाती है, पिता साथ दे दें तो ताकत बन जाती है। ऐसे पिता भी
0: तब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ये इंसान जाने अपने ये सब चीज इंसान आकर करता है, भगवान के न्याय में ये सब नहीं है।
1: चलिए धनी जी, बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते बहन जी।
1: आपका नाम?
2: गमंती जिंगरी।
1: हाँ गमंती जी, अरे वाह, इतनी दूर से हमारे साथ जुड़ गई, बोलिए।
2: हाँ, सौभाग्य की बात है ना। हाँ। माँ का आशीर्वाद है।
1: हाँ बिल्कुल, कहिए। हाँ। गमंती जी।
2: हाँ देखिए ना बहन जी, मेरी दृष्टि से सिर्फ एक ही दिन माँ के जो है वो दिवस, मातृ दिवस एक ही दिन नहीं है,
1: रोज है।
2: मेरा
1: रोज
2: अपना
1: है।
2: विचार है, मैं सोचती हूँ मातृ दिवस रोज है मेरे लिए।
1: सही बात है, माँ रोज रोटी खिलाती है,
2: मेरे लिए रोज है। और संसार के सभी माताओं को मेरा शत शत प्रणाम, और माँ के आंचल और चरण के आशीर्वाद बहुत बड़ा अनमोल चीज है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत धन्यवाद।
2: और मेरे लिए बहन जी मातृ दिवस रोज है।
1: क्या बात है, ईश्वर करे आप इसी भाव के साथ अपनी माँ से जुड़ी रहें। एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो, शायद लाइन कटी है, तो थोड़ी देर में आपसे फिर मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर। तो श्रोताओं, एक श्रोता जुड़ी गए, ले लेते हैं उन्हें। हेलो, थोड़ी देर में हम आपको लेते हैं, हमारे तकनीकी सहायक कुछ संकेत कर रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा। चलिए श्रोताओं, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ इतने लोग जुड़े, अभी और लोग भी लाइन पर आ रहे हैं, तो तकनीकी सहायक मुझे संकेत कुछ कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ी देर में अपने साथ फिर से जोड़ेंगे। हमें आप 10 मिनट का समय और दीजिए, फिर से हम जुड़ेंगे आपके साथ। श्रोताओं, मातृ दिवस के लिए अभी जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े, बहुत ही सुंदर बातें उन्होंने कही, और जो पहला गीत हमने गाया सुनाया आपको, यशोदा और कृष्ण को लेकर था। देखिए ना, कृष्ण की दो माएँ हैं, एक जन्म देती है, एक उसे पालती है, और कृष्ण दोनों माओं के लिए संघर्ष करते हैं और दोनों माओं के लिए जीवन में जीते हैं। श्रोताओं, माँ का जो स्थान है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का मिला हुआ रूप होता है। माँ निर्माण भी करती है, जन्म भी देती है, फिर पालन पोषण भी करती है, और कभी कभी थप्पड़ भी लगाती है, डांटती भी है। और यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगी, किसी ज़माने में पिता बहुत ज़्यादा कभी कभी रौबीले और कभी कभी डांट वाले, तो बच्चे उनसे थोड़ा डर के रहा करते थे। वो परिवार में एक भाव होता था पिता के सामने।

0: ऐसा मत करना, तो बच्चे माँ के आंचल में ज़्यादा रहते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा प्रजातांत्रिक मूल्य है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मीडिया से जुड़े हैं, और पिता लोग भी अब पढ़ने के कारण समझते हैं कि बच्चों पर रौब से नहीं प्रेम से रहना चाहिए। तो मेरे विचार में परिवार को चलाने के लिए माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन माँ को क्यों हम बार बार याद करते हैं? क्योंकि माँ के पास एक कोमल दिल होता है, वो बच्चे की छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाती है। उसे भूख लगी होगी, यहाँ तक कि बच्चा कितनी दूर बैठा हो, वह कुछ पका रही होती है, उसे लगता नहीं ये उसको पसंद था। आप देखिए कितनी छोटी सी चीज़ से वो जुड़ी होती है। वो कहीं जाती है, कोई रंग देखती है, कोई चीज़, नहीं ये मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, ये उसकी चॉइस है। मतलब वो अपना जीना भूल जाती है जब अपने बच्चों का निर्माण करती है। तो इसीलिए उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही तत्व होते हैं। इसीलिए कुछ माएँ इतनी बहादुर हो जाती हैं कि वे जगत माता का रूप ले लेती हैं, देश के हित के लिए काम करती हैं, पूरा देश उनके लिए उनके बच्चे बन जाता है। और ये नाम इतिहास में हम देखें, पुराणों में देखें, अपनी कहानियों में देखें, हमको बहुत मिलते हैं। श्रोताओं, यहाँ देखिए यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, नवजात शिशु था जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले गए थे। इतने छोटे बच्चे को उन्होंने बिना गौतम बुद्ध के पाला पोसा। गौतम बुद्ध तो सिद्धि के लिए गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बार बार वो यही कहती है। मैत्री शरण गुप्त ने यशोधरा जो खंड काव्य लिखा है उसमें उन्होंने यशोधरा के मन को खोल के रख दिया है। वह स्त्री है, वह पत्नी है, वह माँ है, वह स्वाभिमानिनी है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जब सन्यासी होकर लौटते हैं, बौद्ध प्राप्त करके लौटते हैं, सब उसे कहते हैं कि देखो श्रावस्ती तक वे आ गए। वह कहती है नहीं, जहाँ मुझे छोड़ कर गए थे उनको वहाँ तक आना ही होगा। और गौतम बुद्ध सन्यासी होने के बावजूद भी महल के अंदर प्रवेश करते हैं ताकि यशोधरा का मान बना रहे। और श्रोताओं, यशोधरा ने एक माँ का कर्तव्य, जानते हैं कितना भारी कर्तव्य उसने पूरा किया? जबकि वह एक राजा की बेटी थी, राजा की पुत्रवधू थी, गौतम बुद्ध की राजकुमार की पत्नी थी, लेकिन इस लड़की ने अपने पुत्र को जब पाल पोस कर बड़ा किया, जिस दिन गौतम बुद्ध लौट कर आए उसने उस समय दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र राहुल को गौतम बुद्ध को दिया और ये कहा कि तुम्हारा ये पुत्र सदैव तुम्हारा अनुगामी बने। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। जिस सिद्धि हेतु स्वामी गए थे, यशोधरा ने अपने बच्चे को संयम, साधना, न्यायपूर्ण बुद्धि देकर उसको एक अनुयायी बनाया जिसने बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो मैं यही आपसे कह रही थी कि माँ केवल घर में भी हो सकती है, एक बच्चे की, चार बच्चों की, दस बच्चों की, लेकिन कभी कभी माँ पूरी मानव जाति की माँ बन जाती है। उसका त्याग, उसकी सेवा पूरी मानव जाति को ऐसा कुछ वरदान देता है कि युग युगों तक लोग उसे याद करते हैं। जैसे माँ सीता के बच्चे लवकुश, आज तक सब उन्हें याद करते हैं। माँ कौशल्या का पुत्र राम, पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। तो श्रोताओं, माँ का बड़ा ही विशाल रूप है। वह कभी लक्ष्मी है, कभी सरस्वती है, कभी गौरी है, कभी दुर्गा है, तो कभी काली का भी रूप धारण करती है। तो चलिए, मेरे साथ शिव जुड़ चुके हैं, हम श्रोताओं से जुड़ते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो अलका दीदी,
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी, मैं हूँ राधा मोचदास
0: जी। राधा जी, क्या सुनाएंगी
1: जी? मैं कह रही हूँ आपसे मातृ दिवस की शुभकामना आपको, पूरे सभी माताओं को। और मैं ये कहूँगी कि आप भी माँ से कम नहीं है, आप हमें हमेशा,
0: आपने माँ बना दिया, इससे बड़ा गौरव क्या है मेरे लिए, ये तो उन्नति है व्यक्ति की।
1: हाँ, 2 बजे का प्रोग्राम मैंने आपका सुना,
0: बहुत धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा। आपने ऐसे किसे सुनाए
0: जी
1: जिसने दिल को छू दिया,
0: क्या बात है।
1: मैं क्या कहूँ कि मैं सभी माताओं को बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे हमेशा समझते हैं कि हमारी माँ

0: समर्थ है, हमारे लिए कुछ भी कर सकती है।
1: हाँ
0: माँ इतना समझता है। हमारा एक मेरा एक छोटा सा नाती है, अभी
1: अच्छा,
0: बड़ा हो गया है, जब छोटा
1: जी,
0: था ना
1: हाँ,
0: उसका जो खिलौना कुछ भी टूटता था,
1: हाँ,
0: मैसी कुछ भी,
1: हाँ,
0: तो वो अपने दोस्तों से कहता है मेरी माँ बना देगी।
1: क्या बात है, मतलब आपको उसने
0: कुछ भी
1: इंजीनियर भी
0: टूटता
1: बना
0: खुद
1: दिया।
0: तोड़ता था, वो खुद तोड़ता तोड़ मरोड़
1: अच्छा
0: देता था और
1: अच्छा
0: बोला था मेरी माँ बना देगी। उसे लगता था कि मेरी माँ समर्थ है हर चीज
1: देखिए
0: में।
1: कितना विश्वास होता है ना बच्चे में।
0: हाँ माँ पर बच्चों का कितना विश्वास होता
1: जी
0: है।
1: जी
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: एक बात अफसोस होती है कि माँ 10 बच्चों को पाल देती है, वो अपाहिज हो, अच्छा
1: हाँ,
0: हो, कुछ भी। लेकिन जब आज हम सुनते हैं कि
1: एक
0: वही
1: बच्चा माँ
0: पांच
1: को नहीं
0: छह
1: देख
0: बच्चे
1: पाता।
0: एक माँ को नहीं देख पाते, उन्हें आश्रम में छोड़ आते हैं, तो ये बहुत दुखदायी होता है।
1: दुखदाई है, लेकिन राधा जी मैं एक बात बोलूंगी, कभी कभी
0: जी
1: आश्रम में छोड़ना भी गलत नहीं होता है। मैं एक ऐसे
0: जी
1: परिवार को जानती हूँ जहाँ महिला को अल्जाइमर है और घर
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: सभी लोग नौकरी करते हैं। जब उन्होंने
0: जी
1: गॉड मालात को रखा या किसी को रखा तो घर से
0: हाँ
1: चीज़ें गायब होने लगी, और ये अल्जाइमर की
0: ओ
1: पेशेंट हैं तो इनको
0: हाँ
1: पता ही नहीं घर से
0: हाँ
1: क्या जा रहा है, और जो
0: हाँ
1: परिवार है
0: हाँ
1: सारा नौकरी पर है, तो जब चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी तब पता चल रहा
0: वो
1: था कि ये
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है ये नहीं है, तब समझ आया कि
0: हाँ
1: गड़बड़ हो
0: ये
1: रही
0: भी
1: है।
0: गलत है।
1: और मैं एक ऐसे
0: हाँ
1: परिवार को जानती हूँ जहाँ पर अल्जाइमर के एक पेशेंट से चुपचाप उसकी चेकबुक पर साइन भी करवा लिए गए। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आश्रम गलत नहीं है, कभी कभी
0: वो
1: जाने
0: ठीक है।
1: पर
0: हाँ
1: आप भेजते भी हैं तो संपर्क जरूर रखना चाहिए, उनसे
0: संपर्क
1: मिलना
0: जरूर
1: जाना
0: रखना चाहिए
1: चाहिए,
0: और हमेशा देखना ऐसे कि
1: देखना
0: ताकि
1: चाहिए।
0: माँ को
1: हाँ
0: लगे कि हम अपने परिवार में ही
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल, और कभी कभी
0: ऐसा
1: घर
0: लगना
1: लाना चाहिए
0: चाहिए।
1: सबसे मिलवाने के लिए,
0: हाँ
1: फंक्शन में
0: मिलवाना
1: ले जाना चाहिए,
0: चाहिए।
1: ये थोड़ा
0: हाँ
1: एफर्ट परिवार को करना
0: क्योंकि
1: चाहिए।
0: देखिए अभी जहाँ दुनिया जा रही है
1: जी
0: ना, अभी
1: जी
0: अब देखिए अभी दुनिया
1: स्वार्थ की
0: जहाँ जा
1: दुनिया
0: रही
1: हो
0: है,
1: गई है,
0: सब लोग बहुत व्यस्त हैं ना अपने अपने
1: बिल्कुल
0: कामों
1: बहुत
0: में।
1: व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा
0: हाँ उनके पास समय नहीं, इसलिए मैं
1: समय।
0: सभी को बहुत शुभकामना देती हूँ
1: राधा
0: दीदी,
1: जी अपने
0: आपको
1: बच्चों के
0: भी
1: लिए भी समय नहीं
0: पूरे
1: अब तो।
0: परिवार को।
1: जी
0: आप हमेशा माँ ही की तरह हमें बहुत अच्छे से शिक्षा देती हैं और देती रहें, मेरी यही शुभकामना है।
1: बहुत धन्यवाद राधा जी आपके
0: शुभ
1: विचारों के लिए,
0: संध्या।
1: आपको शुभ
0: हाँ शुभ
1: संध्या
0: रात्रि।
1: और आपको भी
0: हाँ
1: मातृदिवस अभिनंदन। चलिए एक
0: बहुत
1: और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
2: हेलो नमस्कार,
1: नमस्कार
2: मेरे
1: जी,
2: हमारे प्यारे डॉक्टर जी, प्रणाम
1: आप कैसी
2: प्रणाम,
1: हैं?
2: मेरी गुरु माता भी है।
1: आप ठीक है ना?
2: मैं संगीता हूँ,
1: हाँ
2: मोरार
1: संगीत,
2: बेस।
1: आपकी आवाज ही संगीतमय है।
2: हाँ, मैं कहती हूँ कि जितनी माँ है सब अपने बच्चे को बहुत प्यार से देखती हूँ,
1: बिल्कुल।
2: बच्चे लोग खुश रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे पति नहीं है लेकिन हम पिता
1: करो।
2: माता दोनों
1: हाँ
2: दोनों को प्यार देती है अपने
1: देखो
2: बच्चे को।
1: संगीता जी, अभी आप बता रही हैं मैंने पिता का भी प्यार दिया, आपसे
2: हाँ
1: पहले धनी जी ने फोन किया था, उन्होंने
2: हाँ
1: माँ का प्यार भी अपने बच्चों को दिया।
2: माँ का
1: हाँ
2: प्यार।
1: वहाँ पत्नी
2: हाँ
1: चली गई तो पूरी जिम्मेवारी उन्होंने निभाई।
2: हाँ कोई बात नहीं, हम ऐसे ही हम लोग रहते
1: जी
2: हैं।
1: जी
2: प्यार बच्चे को बहुत प्यार से देखना चाहिए, प्यार करना
1: सचमुच
2: चाहिए,
1: बहुत
2: तब
1: प्यार।
2: बच्चे भी आपके साथ
1: हाँ
2: पति है
1: साथ निभाते हैं। जी जी
2: साथ
1: बिल्कुल
2: निभाते हैं,
1: बिल्कुल।
2: ऐसे ही प्यार से बात करना चाहिए, प्यार से
1: हाँ
2: तो कभी कभी झगड़ा नहीं हुई, कभी कुछ
1: हाँ
2: नहीं
1: तो
2: हुई, सब
1: ज्यादा एहसान, कुछ लोग बहुत
2: हाँ
1: एहसान करते हैं ना, तब बच्चे फिर
2: एहसान
1: दूर
2: नहीं।
1: होने लग जाते हैं।
2: हाँ दूर नहीं अच्छा है,
1: हाँ
2: बच्चे के साथ बहुत मिल के रहना चाहिए,
1: हाँ कभी
2: यहाँ
1: कभी
2: से
1: उनकी
2: रहना।
1: गलतियों को भी स्वीकार लेना चाहिए।
2: हाँ हाँ बच्चे हैं, हम
1: जी
2: लोग लाए हैं बच्चे को, हम
1: हाँ
2: लोग
1: उनको
2: कौन
1: माफ
2: माँ
1: करना
2: करते
1: चाहिए,
2: हैं।
1: उनकी
2: हाँ
1: गलतियों को भी हंस के ले लेना चाहिए ताकि
2: हाँ
1: वो माँ के दरबार में परिवार में खुश हो सके वे।
2: खुश हो सकते हैं
1: बहुत
2: हमारे
1: धन्यवाद
2: बच्चे हैं।
1: संगीता जी।
2: हाँ कौन माँ कहते हैं कि हमारे बच्चे बुरे हैं, ऐसे हैं, सब माँ अपने बच्चे लोग खातिर बहुत
1: हाँ सचमुच
2: लड़ती है,
1: सचमुच।
2: लड़ती है। हाँ एक छोटा सा किताब बदल देती
1: बोलिए।
2: हूँ, एक माँ है।

0: हम लोग ऐसे ही हम भगवान की तरह हम लोग रहना चाहिए।
1: बहुत ही बात है, ईश्वर शक्ति दे आपको। चलिए
0: आपको भी बहुत धन्यवाद,
1: शुभ संध्या। एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो शिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वे संकेत कर रहे हैं। हेलो
2: हेलो अलका जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ, कब से फोन लगा रही हूँ तो फोन ही नहीं, फिर टेक्निकल खराबी आ गई,
1: लाइन ही लंबी है आज।
2: नमस्कार बोलती हूँ और लोदी वो जो आपका टेक्नीशियन है उनको भी बहुत बहुत
1: जी
2: अभिनंदन
1: जी,
2: है
1: आपको। आज वे बहुत थके हुए हैं, दिन भर वे लोग बाहर थे, वहाँ पर भी एक मातृ दिवस का प्रोग्राम था, वहाँ से दौड़े हुए अभी पहुँचे हैं यहाँ पर।
2: अच्छा।
1: तो मैं देख रही हूँ कि आज बहुत काम है यहाँ पर।
2: हाँ हाँ, तो सर्वप्रथम मैं संसार की सभी मातृशक्ति को, माताओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ
1: जी,
2: क्योंकि और अभिनंदन भी करती हूँ और बहुत सारी जो माए हैं सभी को वो शुभकामनाएं दे रही
1: जी। जी बिल्कुल।
2: तो जैसे कि सभी तो बोल ही रहे कि माँ की जगह तो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता, उनके जैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता, माँ तो माँ ही है।
1: अरे माँ तो छुपा छुपा के खिला देती है बच्चे को,
2: छुपा छुपा
1: कौन
2: के
1: खिलाएगा?
2: जैसे कि आपने कहा ना कि जो बच्चे को पसंद होता है वो अलग से छुपा देती है,
1: उसकी
2: नजरें बचा कर। मेरी माँ थी ना तो ऐसा ही करती थी,
1: याद तो मुझे भी याद है।
2: हाँ,
1: उसे पता होता था।
2: नहीं है बहन जी, माता को गए हुए 16 साल हो गए और पिताजी को तो लगभग 30 साल हो गए। माता पिता दोनों को अभिनंदन, ये पितृ दिवस और मातृ दिवस
1: जी,
2: दोनों की शुभकामनाएं देती।
1: कोई बात नहीं, अब बाप मातृ रूप है
2: जी। और थोड़ा मैं साहित्य की ओर जाती हूँ,
1: जैसे
2: की शुरुआत ही में तो अगर हम साहित्य की ओर जाते हैं, जो जो कवि हुए हमारे सूरदास जी, इन्होंने माता यशोदा कृष्ण का जो वर्णन किया है अपने पदों में, जो वात्सल्य वर्णन उन्होंने किया है, तो ऐसा शायद ही कोई कवि किया होगा।
1: मध्यकाल में तो किसी ने क्या करना था, आधुनिक काल में भी कोई नहीं है ऐसा,
2: कोई नहीं। और जैसे कि वो तो साक्षी थे, ये सब देखा हुआ, जैसे कि उनके सामने ये सब गुजरा हुआ है, कृष्ण की बाल लीलाएं और माता की जो ममता है,
1: बिल्कुल
2: वात्सल्य है, वो तो अनुपम अद्वितीय है हमारे साहित्य में बहन
1: जी।
2: ये तो
1: जी,
2: जब जब से ये शुरू होता है तो मैं तो बस कृष्ण और यशोदा मैया का ही सोच रही हूँ। किस तरह का माँ बेटे का प्रेम था, उन्होंने संसार को कितना बड़ा उदाहरण
1: ये दिया। पद कितने लोग जानते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन
2: खाए। जी जी जी, और किस तरह से हाँ उन लोगों का प्रेम निश्चल शुद्ध, हालांकि वो तो भगवान थे, अवतार लेकर मनुष्य लीला कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उसके माध्यम से हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है कि माता कैसा होना चाहिए और पुत्र कैसा होना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, अगर हम चरितमानस लेंगे तो उसमें जो
1: तो कमाल है,
2: हाँ जो राम जी की माता है और अन्य भाइयों की जो माताएं हैं सुमित्रा के गई, उनका भी वात्सल्य का कोई
1: और छोर नहीं है,
2: छोर नहीं है कोई उनकी। कौशल्या मैया का तो वो तो अद्वितीय ही है।
1: वो तो ये कहती है कि तुम वनवास जाओगे, मुझे चिंता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बिना भरत और राजा प्रजा कैसे रहेगी, ये मुझे चिंता हो रही है।
2: ये सोचिए
1: कि भरत का क्या होगा,
2: किस तरह की माताएं हुई हमारे इतिहास में, हमारे साहित्य में, और ये सब हम सुनकर अपने को बहुत गर्व महसूस होता है
1: कि हम ऐसी संस्कृति के
2: उन ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिनकी जिनके जिस देश में जहाँ पर उनका अवतरण हुआ था हम वहाँ से आए हुए हैं, और हमारा भी लहू उन्हीं का है और हम में भी वो गुण अवश्य कहीं ना कहीं है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आपको भी, एनबीसी में जितनी माताएं हैं, जितने पिता हैं, सभी को, मैं किसी को नहीं जोगे, अगर पिता ने पिता भी तो
1: बिल्कुल बराबर, ये तराजू है, तराजू
2: हाँ मजबूत खंभा होता है बहन जी,
1: बिल्कुल बहन जी, समाज में जो हम खड़े होते हैं,
2: वो कितना बीमार हो या बूढ़ा हो, वृद्ध हो गया, फिर भी अगर एक पिता होता है घर में तो वो दूसरी शक्ति,
1: उसका होना ही बहुत बड़ी बात होती है।
2: हाँ, तो मैं दोनों को बहुत नमन करती हूँ, और मेरे माता पिता जो स्वर्गवासी हो गए हैं उन्हें भी मैं बहुत याद करती हूँ, उन्हें भी मैं सच सच नमन करती हूँ कि जहाँ भी होंगे भगवान उनको सुखी रखे और वे हमें आशीर्वाद देते रहे।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी, आपके सुंदर बातों के लिए और साहित्य की चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए एक और श्रोता को पकड़ते हैं। हेलो हेलो जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं बसंती हूँ।
0: हाँ सुनाइए, आप ही का इंतजार था हमें।
1: जी जी, थैंक यू वेरी मच
0: जी।
1: जी, मातृ दिवस के उपलक्ष्य की एक भेंट
0: सुनाइए।
1: माँ, हाँ माँ शब्द कितना लघु है पर कितना महान है इसका अर्थ। है जग में कितने प्रकांड विद्वान पर नहीं उन्हें इसके मतलब का ज्ञान। माँ का हृदय पाना हो तो बनना पड़ता है माँ। यह वात्सल्य, वात्सत्य, वह प्रेम, यह ममता भाग्य में नहीं है सबका होता। माँ की श्रेष्ठता का भखान नहीं कर सकती कभी जवान। त्याग की प्रतिमा, सहनशीलता की देवी, घिसती संतानों की खातिर है साबुन जैसी। माँ ही पहले बोलता सिखलाती और वही प्रथम गुरु है कहलाती। ईश्वर से भी अधिक पूजनीय है हमारी यह जीवन देने वाली माँ। माँ की सेवा से बड़े पुण्य का काम, उनके ही चरणों में पाते स्वर्ग धाम। इनकी सेवा से बनते मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इनके कार्य पर बन जाता जीवन सारा काम। ए अलका जी,
0: जी
1: मैं ये अंत में यही कहूंगी आपसे,
0: हाँ।
1: The most beautiful necklace a mother can wear is not gold or gems, but her child's arms around her neck.
0: Yes, very beautiful words.
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कविता सुनाई और एक माँ को सम्मान दिया, बहुत धन्यवाद
1: जी। थैंक यू।
0: चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो
2: बहन जी, क्षमा करिए, एक बात बोलना भूल गई।
0: कोई बात नहीं, आप दो बात बोलिए।
2: देखिए शिव जी को मेरा शुभ नमस्कार।
0: हाँ, शिव जी आपको भी नमस्ते दे रहे हैं विद ए गोल्डन स्माइल।
2: जानता हूँ शिव कैसे हैं
0: जी,
2: दिखा है उनको।
0: सचमुच वो शिव ही है, भोले भंडारी है वो।
2: अरे बाप रे बाप, नहीं बोलो।
0: नहीं, किसी काम को मना नहीं करता, ये उसकी विशेषता है।
2: शिव जी, जो बात मैं भूल गई।
0: हाँ,
2: माँ 6 मास बच्चे को गर्भ में पालती है।
0: 9 मास,
2: क्षमा करिए, 9 मास। और पिता 9 मास सोचता है कि आने वाले का भविष्य
0: क्या होगा। बिल्कुल,
2: ये है पिता, क्योंकि पिता पर बोलना मैं भूल गया। और पिता के आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देती।
0: पिता वो रीढ़ की हड्डी है घर की।
2: हाँ।
0: और पिता का कंधा मानो बच्चे को भविष्य दिखाता है।
2: दिखाता है। और अपने कहूंगा कि पिता का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है।
0: बिल्कुल
2: पिता,
0: लेकिन ऐसे पिता का नहीं जो रोज पीकर घर आए और अपनी पत्नी को मारे। पिता पिता ही फिर होना चाहिए, ये नहीं कि पिता पीने वाला हो, पिता ना हो, ना पिता हो।
2: पिता पिता जो है वो क्या कहे, पति तो बह है। हाँ, लेकिन परम पति भी है।
0: वही ना, राक्षस बन के ना घर में रहे।
2: नहीं, नहीं, नहीं। और पिता कहूंगा और माता की सेवा का फल।
0: हाँ,
2: निश्चित रूप से मिलता है।
0: हाँ, आशीर्वाद
2: जैसी
0: ये सच
2: और
0: बात है,
2: कोई संपत्ति नहीं।
0: हाँ,
2: बालक के मन को जानने वाली माँ।
0: हाँ,
2: और भविष्य को संवारने वाला पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी है।
0: ज्योतिषी और ये सच्चे साथी हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो आपको गलत राह नहीं दिखाते, जो आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे।
2: नहीं नहीं, कभी नहीं, हर दिल दे दिया ना आशीष।
0: हाँ,
2: बहन जी, अभी कितने लोगों ने श्रवण कुमार के संबंध में, मेरे ख्याल से राधा जी ने कहा।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
2: ये श्रवण कुमार की माता पिता के माता पिता अपनी बच्चों के मुख देखने के लिए अंधा होना पसंद किया। देखिए, और बाद में श्रवण कुमार उन्हें तीर्थ पर ले जाते हैं,
0: कांवड़ पर बिठा के तीर्थ करवाते हैं।
2: माँ पर ऐसे कितने अच्छे माँ, जैसे मदरसा। हाँ, सुनीति, कौशल्या, सुमित्रा,
0: सीता, सभी सभी बहुत महान माए।
2: यही
0: यहाँ तक कि शिवाजी, जीजाबाई, पन्ना धाये, आप कहीं पर भी पन्ने पलटिए। बहुत धन्यवाद नवीन भाई दोबारा जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
3: हाँ, हाय गुरु माता, चरण स्पर्श प्रणाम।
0: अरे क्या बात है, माँ को माँ का आशीर्वाद।
3: बहुत धन्यवाद जी, जी। क्या कहेंगी, मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं
0: आपको भी, वही सब जो आप मुझे दे रही है सब आपको भी।
3: आपका चरण में इतना प्यार मिले, भर भर प्यार मिले।

0: श्वास श्वास की रक्षा करती, पग पग प्राण बचाती है, कितना प्यार जताती है। हमारे देश की समस्त माताओं को शत शत नमन बहन जी।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी वाणी में आपने सुंदर सी पंक्तियां सुनाई, इसके लिए हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आप जुड़े
0: तो
1: हमारे साथ।
0: बहन जी, माँ त्याग की मूर्ति है।
1: हाँ,
0: वह जन्म देते समय भी दर्द सहती है और
1: आजीवन तो अपने मत, दिन में तारे नजर आ जाते हैं।
0: हाँ बहन जी, लेकिन थोड़ी घड़ी में भूल जाते हैं जब अपने नन्हे
1: का मुखड़ा देखती है। जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं पता ही नहीं क्या दर्द होता है।
0: हाँ, क्या दर्द हुआ क्या नहीं बहन जी। मैं तो माँ नहीं बन पाई, लेकिन जब लोगों के मुखड़े मुख से सुनती हूँ ना बहन जी, तो दिल खुश हो जाता
1: कोई
0: है।
1: कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने बायोलॉजिकल बच्चे को नहीं जन्म दिया, दिल तो है ना माँ वाला।
0: हाँ,
1: जो आसपास है उनकी माँ
0: से भरा हुआ है मेरा दिल।
1: बस जो जो आसपास आए उसको आशीर्वाद दीजिए तो आप माँ ही हैं। मैं तो पहले ही कहती हूँ ना, 2 बच्चों की 10 बच्चों की माँ होना आसान है, लेकिन पूरे देश की माता, समाज की माता, गाँव की माता बनना कठिन है। वो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है। हर एक से प्यार से जुड़ना पड़ता है
0: बहन जी। तो मैं ये कहूंगी बहन जी कि माँ तो आजीवन अपने बच्चों की परवरिश के लिए दर दर सहती रहती है बहन जी।
1: सब त्याग करती है, सब
0: बहुत त्याग करती है और सहनशीलता की मूर्ति है, देवी है बहन जी। एक तरह से वह रक्षक है, शिक्षक है, कवच भी है, पालक भी बहन जी। वह दुर्गा भी है, काली भी है, कुछ कैसे कहते हैं, हर वक्त तत्पर रहती है अपने बच्चों की सेवा के लिए।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी, आप हमारे साथ जुड़ी।
0: ओके धन्यवाद बहन जी। अगर आप चाहें तो बहन जी, मैं श्रवण कुमार के बारे में एक पंक्ति सुना देती हूँ।
1: सुना दीजिए।

0: बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी आवाज़।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, जुड़ गई तुम, मिल गया फोन।
2: मुश्किल ही तो सही, पर मिला तो सही।
0: मिला तो सही, अभी है 10 मिनट, मिल गया तुम्हें।
2: जी, सुनाओ। सबसे पहले मैं संसार भर के समस्त माता पिता को मातृ दिवस, पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: और खास तौर पर अपनी जननी, अपनी माता जी के चरणों में सत्सत प्रणाम करते हुए, सत्सत प्रणाम करते हुए मैं एक छोटी सी कविता सुमन के रूप में
0: सुनाइए। आशा जी।
2: सुबह हो या शाम, माता पिता को करो प्रणाम। सुबह हो या शाम, माता पिता को करो प्रणाम। माता पिता की सेवा में ही सारे सुख तीरथ धाम। माता पिता की सेवा में ही सारे सुख तीरथ धाम। माता पिता को लाखों प्रणाम। माता पिता से मिला है हमें यह जीवन, लार दुलार से सवारा उन्होंने हमारा यह बचपन। दुख के कांटे चुन लिए ताकि सुख के शीतल छैया में खिले यह मधुवन। साकार किए हमारे सारे सपने गवाए के अपने उम्र तमाम। साकार किए हमारे सारे सपने गवाए अपने उम्र तमाम। माता पिता को बारंबार प्रणाम। उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद कवच है संतान का। धरती पे रूप माता पिता है भगवान का। अगर उनका दिल दुखाया तो, अगर उनका दिल दुखाया तो सीना फट जाएगा आसमान का। कभी कर्ज उतार नहीं सकते, कभी कर्ज उतार नहीं सकते हम उनके त्याग का। कुछ बन कर करो उनका रोशन नाम, कुछ बन कर करो उनका रोशन नाम। माता पिता को बारंबार प्रणाम, माता पिता को बारंबार प्रणाम।
0: बहुत धन्यवाद कवित्री जी, बहुत सुंदर कविता लिखी। और आपकी माता जी को भी विशेष प्रणाम, जो उन्होंने एक मॉरिशस की कवित्री को जन्म दिया।

0: बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद, बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को भी पकड़ते हैं चलते चलते। हेलो,
1: माता दी।
0: हाँ नमस्ते, कैसी हैं?
1: मैं रूमिला जी
0: रूमिला,
1: हूँ, थोड़ा ठीक
0: सुनाइए।
1: हूँ। एक छोटी सी भजन
0: अरे
1: गाऊंगी,
0: जरूर, आपका स्वागत है।
1: मुझे इस

0: चंदन, किस्मत से भी तुम्हें पाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से ही तुम्हें पाया। जय माता दी, माता
1: धन्यवाद,
0: माता पिता के
1: दोनों को
0: उन
1: प्रणाम
0: उन्हों को दोनों को चरण
1: आज।
0: वंदना। उनसे
1: जी
0: प्यारा कोई नहीं है इस
1: सचमुच
0: धरती
1: कोई
0: पर।
1: नहीं इस
0: हाँ
1: धर सच्चा, उनसे प्यार जो सच्चा प्यार है बस वहीं पर है।
0: हाँ
1: बहुत धन्यवाद
0: ओके।
1: जी,
0: मातृ दिवस अभिनंदन सभी को
1: आपको
0: और
1: भी,
0: पिताजी को
1: आपको भी
0: भी,
1: रोमिला जी।
0: आपको भी। हाँ
1: चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो, हाँ
2: हेलो,
1: जी नमस्कार जी,
2: नमस्कार जी बहन जी,
1: आप
2: और
1: आपका शुभ नाम?
2: मैं नागेन,
1: नागेन, सुनाइए जी
2: मॉडल बेसी।
1: जी जी कहिए
2: हाँ, माँ का पर भर कार्य है ना।
1: जी
2: हाँ, कल तो माँ दिवस है ना।
1: जी रोज ही है, मातृ दिवस तो रोज ही होता है, पराठे तो माँ ही खिलाती
2: हाँ,
1: है।
2: देखो बहन, माँ का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, कह नहीं सकता। तो उन सारी माँ को जिस संसार में है, हम सबको प्रणाम करते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: माँ तो लोग कहते हैं, माँ तो जननी है, माँ तो शक्ति है। तो हम सभी माँ को प्रणाम करते हैं,
1: जी
2: और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें
1: बहुत
2: मौका दिया है ट्यूबर
1: धन्यवाद, आप
2: करने
1: जुड़े,
2: का।
1: मैं
2: एक
1: धन्यवादी हूँ,
2: एक
1: आप जुड़े
2: एक
1: हमारे
2: गीत पेश कर सकता
1: साथ।
2: हूँ माँ
1: हाँ जी,
2: पर?
1: हाँ बोलिए।
2: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ

0: जा होती है माँ बच्चे की जा होती है। तुम मुस्काए मैं मुस्काई, तुम रोई मैं रोया, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी हो। ओ माँ, ओ माँ,
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर,
0: ओ माँ,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। अगर संसार के सारे पुरुष माँ और नारी जाति को सम्मान देने लगे तो आधी से ज्यादा समस्याएं कम हो जाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ।
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी, चलिए एक अंतिम श्रोता को लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्कार जी,
2: बैग से
1: जी।
2: हाँ, मैं सभी हिंदू माताओं को, सभी माताओं को, महेश्वर माता जी को प्रणाम करती हूँ। मातृ दिवस अभिनंदन
1: जी।
2: मेरी ओर से तो मेरी तो माता जी नहीं है, मैं,
1: लेकिन आज आप माता है ना।
2: हाँ, मैं माता हूँ।
1: अब आप उस गौरव के साथ जीजिए।
2: हाँ तो माँ का याद,
1: जिनके जाने का वक्त है वो तो जाएंगे ना, पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन वो कर्तव्य दे गई हैं आपको कि अब तुम माँ बन के पूरा करो।
2: हाँ, मैं तो यही मेरे बच्चों की संस्कार देती हूँ, जो मेरी माता जी,
1: बिल्कुल अब अपनी ड्यूटी करनी है हमें।
2: हाँ, मेरी ड्यूटी, हाँ, जो बोलते तो माँ तो हमेशा दिल में रहते। एक गाना गा सकती हूँ
1: जी, सुनाइए, दो लाइन केवल।
2: हाँ, माँ तो है माँ, ऐसी दुनिया में है कोई कहा, माँ का फर्ज तो कोई नहीं ले सकता है, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: शुभ मातृ दिवस।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता और लेते हैं। हेलो,
3: हेलो
1: जी, नमस्ते।
3: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए।
3: सब जी, सब माता पिता के प्रणाम करती हूँ।
1: बहुत धन्यवाद।
3: एक छोटा गाती हूँ,
1: केवल एक लाइन
3: जी,
1: सुनाइए।
3: ले लो ले लो दुआए माँ बाप की, हो ले लो ले लो दुआए माँ बाप की, कैसे उतरे है कचरे पाप की, ले लो ले लो दुआए माँ बाप की।
1: बहुत

धन्यवाद बहन जी, सचमुच आज दुआओं का दिन है, हम जितनी दुआएं माता पिता से बटोर सके बटोर लेनी चाहिए। और मैं सभी अन्य श्रोताओं से क्षमा मांगना चाहूंगी कि अब समय हो चला है, हम उनका फोन नहीं ले पाएंगे। बस इस गीत के साथ मुझे और शिव को अनुमति दीजिए, शुभ संध्या, फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मातृ दिवस अभिनंदन।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: सचमुच माँ जैसी दुनिया में है कोई काम। हाँ, अभी थी साहित्य दर्पण की बारी, अब आपके लिए खेल खिलाड़ी 5:01।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।
1: नमस्कार और आदाब प्यारे देवी और सज्जनों, AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पे सुस्वागतम प्यारे श्रोता और मित्रों। खेल खिलाड़ी प्रोग्राम लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपका सेवक रोशन। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं और रेडियो सेट के बिल्कुल निकट भी है। और आज का विषय मातृ दिवस, अभिनंदन हो आपको। माता है शीतल चंदन, माता को शत शत वंदन, मातृ दिवस अभिनंदन। आज है अंतिम शनिवार, तो ऐसे में मासिक प्रतियोगिता, कौन होगा विजेता? जी हाँ, कौन होगा विजेता आज, ये तो जानना भी बाकी है। तो चलिए आज का जो खेल खिलाड़ी प्रोग्राम है, पहला सेगमेंट 5:30 तक सिनेमा दिल से, और सिनेमा दिल से मातृ दिवस पर अभी ये आधारित होगा। और जीतने वाले को मिलेगा डेलिजियो पिज़्ज़ेरिया एंड कैफेटेरिया की ओर से 500 रुपीस का फूड कूपन, जो पाया जाता है रॉयल रोड 8 माइलस्टोन ट्रियोले। तो चलिए पहला गाना आपके लिए हम बजाने ही वाले हैं।
4: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: ये जो गाना है, पहला गाना माँ के प्यार को दर्शाते हुए शहीद कपूर गाते हैं अपनी माता के लिए, आतिफ असलम की आवाज में। जरा आप शांतिपूर्वक सोचिए और बताइए कि इस गाने में कौन है वो अभिनेत्री जिन्होंने माता का प्यार बरसाया शाहिद कपूर पर।
5: हो तू ही मेरे पास जन्म जन्म, तू ही
1: 4028085 पर जवाब दें कि शहीद कपूर की माताजी का रोल इस फिल्म में किसने निभाया था।

0: जन्म जन्म तक मेरी माँ का रहे साथ, मेरे सर पर सदैव रहे उनके पावन हाथ। बहुत ही सुंदर सा गाना आतिफ असलम जी की आवाज में, फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो। हीरो नहीं यहां तो जीरो आपसे बात कर रहा है। सवाल था कि इस फिल्म में शाहिद कपूर जो मुख्य अभिनेता है, उसकी माताश्री का रोल किसने निभाया था? और सही जवाब है यस्टर्स की लीडिंग लेडी पद्मिनी कोल्हापुरे, द 80s स्टार। और सबसे पहले जो जवाब आया है वो अली साहब की ओर से, लिस्कालिए से, और साथ ही साथ उषा जी हाइलैंड से, स्वस्ति जी कटरबोन से, इंद्रा जी न्यूग्रोव से, अनीता जी मौदाबिया से और शिव्या फ्रॉम खोंगोमा। बहुत बधाई, पहले ही प्रश्न में इतनी स्पर्धा, इतनी कंपटीशन। देखते हैं कि किस के हक में जाता है आज का गिफ्ट वाउचर। चलिए अब हम जो दूसरा सवाल है, मातृ दिवस के शुभ अवसर पर माताओं के त्याग को याद करते हुए ये दूसरा गाना प्रस्तुत है सुस्वागतम, स्वर्गीय केके की आवाज में मेरी माँ। चलिए इस गाने से हम केके जी को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। कल उनकी पुण्यतिथि है, यानी 31 मई 2022 को वो इस जग को अलविदा कह गए थे, पर उनकी अमर आवाज नहीं। ये जो गाना है फिल्म
1: 80 and 19 kilos, this is Radio Mauritius।
0: फिल्म यारियां से ये गाना है मेरी माँ केके जी की आवाज में। और आपको जो दूसरा प्रश्न का जवाब देना है वो इस प्रकार है, केके का पहला गाना कौन सा था, बॉलीवुड गाना, आपको वो गाना ढूंढना है और हमें बताना है। 1996 में फिल्म रिलीज हुई थी। अब तो आपको

ज्यादा इशारा मिल गया होगा। दिमाग पर जोर लगाइए और जवाब दीजिए कि के जी का पहला गाने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कौन सा था। 4028085 कत्सों दुई कतो में सैंक।

की दमदार आवाज में यारियां फिल्म का गाना मेरी माँ। बहुत ही सुंदर सा गाना था और आपको एक जवाब देना था कि स्वर्गीय केके जी का पहला हिंदी फिल्मी गाना कौन सा था। एक छोटा सा टुकड़ा उन्होंने गाया था, विनोद सहगल, हरिहरन जी और सुरेश वाडकर जी के साथ। आपको तो पता चल गया माचिस वाला गाना, छोड़ाए हम वो गलियां। लेकिन आप रेडियो मॉरिशस की गलियों को याद करना छोड़ना नहीं। और सही जवाब दिया उषा जी फ्रॉम हाइलैंड्स, इंदिरा जी फ्रॉम मेबर्ग, बुबासे से हरीश भाई, नन्नाल जी फ्रॉम ऑड ऑस्ट्रेलिया, शोभा जी फ्रॉम वाकवा, इंदिरा जी फ्रॉम ऑडा बे और कुंगुमा से शिव्या जी। बहुत ही चतुर हैं हमारे श्रोता जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मातृ दिवस अभिनंदन मदर्स डे स्पेशल खेल खिलाड़ी। चलिए, एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने माँ की भूमिका बखूबी निभाई थी। कभी एक नायक की नायिका बनी थी तो कभी उसी नायक की माँ भी बनी, कभी शारदा प्रताप सिंह नामक माता बनी अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की, तो कभी दुर्गा सिंह नामक माता बनी शाहरुख खान और सलमान खान की। प्यारे प्यारे सहेलियों और मित्रों, बड़े प्रेम से बताइए, माता के स्नेह को ध्यान में रखते हुए कि किस महिला कलाकार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सी अभिनेत्री हैं वो जिन्होंने माता का रोल बखूबी निभाया था। 4-0-2-8-0-5-402-80-85 पर प्लीज उत्तर दें हमें आप। On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: जी हाँ, बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि कौन सी अभिनेत्री ने इतने सारे बड़े बड़े नायक की माँ का रोल निभाया था। अभी तो करण अर्जुन का गाना चल रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान स्टारर, और जाहिर सी बात है कि वो है राखी जी। और राखी जी ने अमिताभ बच्चन की हीरोइन का रोल निभाया था फिल्म बरसात की रात में, त्रिशूल, काला पत्थर, परंतु फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन जी की माँ का रोल भी निभाया था दिलीप कुमार साहब के साथ, याद है ना आपको?
1: कब दूर बहार चमन से।
0: चलिए, थोड़ी देर में आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे दूसरा भाग खेल खिलाड़ी का, जहां पर फुटबॉल और जनरल नॉलेज पर बातें होंगी और प्रश्न भी।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: थोड़ी देर में दूसरा भाग खेल खिलाड़ी का, और जिन लोगों के पास में माँ है उन्हें आप हमेशा प्यार दीजिए, क्योंकि जितना प्यार आप उन्हें देंगे उतना ही कम होगा, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनका ऋण तो आप जीवन भर चुका नहीं पाएंगे, और जिन लोगों के पास माता नहीं है उनकी याद में हमेशा आप श्रद्धा के फूल बरसाते रहें। और आपके लिए एक छोटा सा नजराना, जिन लोगों के पास माँ नहीं है आज, वह उनको आप याद कीजिए और ये गाना भी आप सुनिए।

0: जो माता चली गई है वो तो आ नहीं सकती है, परंतु आप उनकी यादों में हमेशा खोए रहें। जो जो भलाई उन्होंने आपके लिए किया होगा उन्हें आप सोच सोच कर जीवन व्यतीत करें और अपने बच्चों को बताएं कि आपकी माता ने आपके लिए क्या किया था। चलिए अब 5:26 हो गए हैं।
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist. खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

जी हाँ, खेल खिलाड़ी के दूसरे भाग में आप लोगों का हम यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं। मंथली कंपटीशन, मासिक प्रतियोगिता, कौन बनेगा आज विजेता, यही तो अंत में हमें करना है घोषणा। और आज है महाफाइनल यूरोपियन यूएफए चैंपियंस लीग 2026।

आने ही वाली है वो रात्रि, दो जबरदस्त फाइनलिस्ट्स की होगी मुलाकात। फाइनल काउंटडाउन शुरू, आप भी हो जाइए तैयार गुरु। चैंपियंस लीग का महाफाइनल, चैंपियंस लीग की रात्रि स्पेशल। कितने मैचेस, गोल्स, येलो कार्ड्स, रेड कार्ड्स, वॉ के जलवे के बाद आया है ये अंतिम मुकाबला टाइटल होल्डर पेरिस सेंट जर्मेन, जो फ्रेंच चैंपियंस भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जानी आर्सेनल, इंग्लिश चैंपियंस, यानी डबल धमाका। फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, स्पैनिश लुइस एनरिके वर्सेस स्पैनिश मिकेल आर्टेटा। दोनों तरफ के जो हेड कोच मैनेजर है वो स्पैनिश है। डेम्बेले डुए एंड कंपनी वर्सेस राइस साका एंड कंपनी। यही है चैंपियंस लीग का जादू, कुछ समझे सहेली और बाबू। क्या पेरिस सेंट जर्मेन की लगातार दूसरी चैंपियंस लीग ट्रॉफी या आर्सेनल की पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी? पेरिस सेंट जर्मेन के चांसेस इंग्लिश टीम्स के खिलाफ बड़े ही अच्छे हैं। क्या इस बार भी पीएसजे मार जाएगी बाजी, पर आर्सेनल के खिलाड़ी नहीं है राजी? फाइनल तक आकर जी जान से खेलेंगे आर्सेनल के खिलाड़ी। पुस्कस अरेना बुडापेस्ट हंगरी में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, दो महारथियों के बीच में अत्यंत द्वंद्व युद्ध। फियर्स ड्यूल बिटवीन पेरिस सेंट जर्मेन एंड आर्सेनल। बुडापेस्ट हंगरी में

0: वो स्लाय को होना चाहिए था क्योंकि वो हंगेरियन है, लेकिन लिवरपूल इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाई, इसीलिए आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन द टू बेस्ट टीम्स ऑफ यूरोप आर इन द फाइनल राइट नाउ। तो चलिए पहला प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है, फ्रेंच टीम्स की बात करें तो केवल दो टीमों की अभी तक जय घोष हुई है। टू टीम्स हैव बीन चैंपियंस अप टिल नाउ, वो है पेरिस सेंट जर्मेन और 1993 में विजेता मार्सेय। अगर इंग्लिश टीम्स की हम बात करें और उनके बारे में सोचें तो आप हमें बताइए, आपको बताना पड़ेगा कि कितनी इंग्लिश टीम्स चैंपियंस बनी है अब तक, चैंपियंस लीग के जो विजेता है कितनी इंग्लिश टीम्स अब तक चैंपियंस बनी है। यही प्रश्न है आप लोगों के लिए, शीघ्र ही उत्तर देने की आप कृपा करें 4028085 पर।
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.

0: बहुत ही भावपूर्ण गाना और भावुक भी हो गए हम ये गाना सुनते सुनते। अरिजीत सिंह की आवाज ही ऐसी है। हमने सवाल किया था कि कितनी इंग्लिश टीम्स अब तक उन्होंने चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जीती है, और तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि छह टीम्स। जी हाँ, लिवरपूल ने छह बार, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तीन बार, चेल्सी ने दो बार, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने दो बार, मैनचेस्टर सिटी ने एक बार, एस्टन विला ने एक बार। बिल्कुल, यानी 15 बार इंग्लिश टीमों की जीत हुई, लेकिन छह टीम्स ने ये कप अब तक जीते हैं। सही जवाब दिया धीरज भाई फ्रॉम ट्रियोले, ऋषि भाई फ्रॉम वाशेगी, आत्मा जी फ्रॉम तुडोदूस, दीला जी फ्रॉम मौलाशु, हरीश भाई फ्रॉम बोबासे, अली साहब फ्रॉम लिस्कालिए, नन्नलाल जी फ्रॉम मॉड ऑस्ट्रेलिया, शोभा जी फ्रॉम वाकवा और इंद्रानी जी फ्रॉम लिस्कालिए। इतने सारे लोग फोन करके सही जवाब दे रहे हैं। लकी ड्रॉ बहुत ही दिलचस्प होगा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वादे के अनुसार आपके लिए वर्ल्ड कप 2026 परिश्रम और पराक्रम का मिक्स। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको 2026 वर्ल्ड कप के बारे में हम हर सप्ताह एक सवाल आपके लिए करेंगे। वैसे तो रेडियो मस्ती पर अरविंद भाई 8:30 सुबह रोज आपको वर्ल्ड कप के बारे में बताते हैं, आपकी जानकारी तो बढ़ी होगी। तो चलिए आप जरा गौर से प्रश्न सुनिए, कृपया आप रिलैक्स होके बताइए उस एक मात्र अफ्रीकी टीम के नाम। बिल्कुल, वो एकमात्र अफ्रीकी टीम, यूनिक अफ्रीकन टीम का नाम बताइए जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। केवल एक टीम अभी तक सेमीफाइनल में पहुंची है, पर अफसोस फाइनल में कदम नहीं रख पाई वो टीम। कौन सा है वो देश, कौन सी है वो टीम, जरा आप सोच के तो हमें बताइए। 4028085 पर कत्सौ पर आपको अपने लम्हे को लेजी नहीं बल्कि क्रेजी बनाना चाहिए, समझे आप।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

ढूंढने से आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे कि प्रश्नों का जवाब आपको तो बड़ी ही आसानी के साथ प्राप्त हो गया। हमने सवाल किया था कि कौन सा वो एकमात्र अफ्रीकी टीम है, अफ्रीकी देश है, जिसने सेमीफाइनल तक कदम रखा था। इससे पहले क्वार्टर फाइनल तक सेनेगल गई थी 2002 में, कमेरून गए थे 1990 में और घाना इन 2010। लेकिन गत बार खटार 2022 में मोरक्को ने पहली बार सेमीफाइनल में कदम रखा और ये पहली अफ्रीकी टीम है। हो सकता है कि इस बार भी ऐसी टीम सेमीफाइनल में क्या फाइनल ही में कदम रख लें। और सही जवाब दिया धीरज भाई फ्रॉम ट्रियोले, इंदिरा जी फ्रॉम ओडाबिया, दीरा भाई फ्रॉम मौनाशो, वक्वा से शोभा जी, शिव्या गेन फ्रॉम कुंगुमा, इंद्रानी जी फ्रॉम निस्कालिये और नन्नलाल जी फ्रॉम ओडस्थालिया। चलिए आपके लिए मातृ दिवस के अवसर पर एक टोंग ट्विस्टर हो जाए। जी हाँ, टोंग ट्विस्टर बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम आपको कहेंगे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जल्दी जल्दी आपको बताना है। लेकिन मातृ दिवस के अवसर पर हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी बोले, मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। जरा नोट कर लें, मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। ये आपको 5 बार जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा और आपको हम ऑन एयर लेंगे अभी। गौर से सुने एक बार फिर, मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। जल्दी जल्दी 5 बार, मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। अच्छा से प्रोनाउंस करना पड़ेगा, मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मलाई नहीं, मीठी अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना, मुस्कुराहट बोलना, मस्कराहट नहीं। तो एक बार फिर अंतिम बार मैं आपको बता देता हूँ, मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। ये आपको

0: चलिए हम देखते हैं, पहले श्रोता का हम स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी, पूरा मॉरिशस नीला जी को सुन रहा है।
1: जी
0: कैसे नीला जी, ठीक है? ओके नीला जी, शुरुआत कीजिए। 5 बार ये टंग ट्विस्टर को आपको बोलना है, बताइए।
1: मेरी माँ ने मुस्कुराकर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुराकर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुराकर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुराकर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुराकर मुझे मीठी
0: मीठी मलाई पिलाई। आप थोड़ा रुक गए थे, लेकिन 5वीं बार आप थोड़ा अटक गई। कोई बात नहीं, आप थोड़ी अटक गई, लेकिन फिर भी आपको कहेंगे बहुत बधाई हो। देखते हैं कि और कोई है इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए या नहीं। धन्यवाद नीला जी, देखते हैं कि आपकी होती है जीत या नहीं। ओके,
1: हैप्पी मदर्स डे टू यू टू।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो। हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: शिव्या फ्रॉम कोंगोमा।
0: शिव्या फ्रॉम कोंगोमा। हाँ जी, आपका
1: यस,
0: स्वागत है शिव्या।
1: थैंक यू।
0: ओके, टोंग ट्विस्टर आपको आपको समझ में आया?
1: यस।
0: ओके, सो प्लीज स्टार्ट।
1: मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई।
0: वन
1: मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई। मेरी माँ ने मुस्कुरा कर मुझे मीठी मलाई पिलाई।
0: बहुत ही बढ़िया। आप थोड़ा रुक रुक सी गई थी, लगातार नहीं बोल पाई, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की है शिव्या जी। बहुत ही
1: यस,
0: बधाई हो आपको।
1: थैंक
0: बाय।
1: यू। बाय
0: जी हाँ, समय के अभाव के कारण हम केवल दो श्रोताओं को ले पाए, और नीना जी और शिव्या जी ने सही सही तरीके से ये टोंग ट्विस्टर को सही उच्चारण करते हुए, लेकिन इतना ज़्यादा कंटिन्यूअसली स्विफ्टली नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है। उन लोगों के भी नाम हम लिस्ट में शामिल कर रहे हैं लकी ड्रॉ के ज़रिए। देखते हैं आज किसकी होगी जीत। चलिए, एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए हम लाए हैं, और आपको जरा मातृ दिवस के अवसर पर एक फैमिली पजल, एक भेजा फ्राई जिसे कहते हैं, आप ये प्रश्न सुनेंगे तो मुझ पर डांट पीसेंगे, डपट पड़ेंगे मुझे। आप मुझे डांटेंगे कि कौन सा प्रश्न लेकर मैं भेजा फ्राई की तरह आया हूँ। लेकिन खेल ऐसा ही है बाबू, जरा सुनिए, एक फैमिली पजल है। अगर हम आपसे कहें आपकी इकलौती मौसी की माताश्री की दूसरी पुत्री की इकलौती संतान कौन हो सकता है? जरा गौर से सुने, आपकी इकलौती मौसी की माताश्री की दूसरी पुत्री की इकलौती संतान कौन हो सकता है? जरा आप ध्यान लगाकर सुनिए, और कृपया आप जवाब दें 4028085 पर, 4028085 पर। आपकी इकलौती मौसी की माताश्री की दूसरी पुत्री की इकलौती संतान कौन हो सकता है?

0: बहुत ही आसान है, आपको फैमिली ट्री करना पड़ेगा, एक के बाद एक आपको इसे सुलझाना पड़ेगा। 4028085। और ये आप प्रश्न को आप सुन रहे हैं और आपका जो दिल है वो डांस करने लगेगा।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।

जी, हमने सवाल किया था कि आपकी इकलौती मौसी की माताश्री की दूसरी पुत्री के इकलौती संतान कौन हो सकता है। तो आपकी इकलौती मौसी की माताश्री तो आपकी नानी हुई, उसकी दूसरी पुत्री आपकी माँ हुई, और आपकी माँ की इकलौती संतान तो आप खुद हैं। जी हाँ, तो जो सही जवाब है वो खुद आप ही है, स्वयं आप ही। और सही जवाब दिया नीला जी फ्रॉम वाक्वा, देवानंद जी फ्रॉम रिविया डेजोंगी, गमंती जी फ्रॉम ओशनवा और कल्याणी जी फ्रॉम मेबर्ग। थोड़ी देर में लकी ड्रॉ करेंगे और आपको बताएंगे कि आज किसकी हुई है जीत। और आज का जो विजेता है, जिसको प्राप्त हो रहा है डेलीजो पिज़्ज़ेरिया एंड कैफेटेरिया जो पाया जाता है रॉयल रोड विच एम इंटरियोरे की ओर से, वो है उषा जी फ्रॉम हाइलैंड्स। आज उसकी जीत हुई है और हम आपको वो वाउचर पोस्ट करेंगे। बहुत ही बधाई हो। और सभी लोगों को हम कहेंगे मातृ दिवस अभिनंदन, हर माता को एमबीसी की ओर से है वंदन। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आपको।

0: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: शाम के 6 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। ज़रूरतमंद बच्चों को सिर्फ एक छत ही नहीं बल्कि प्यार, सुरक्षा और अपनापन देने वाले परिवारों के लिए अब और बेहतर सहयोग की तैयारी की जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए

0: नए कानूनी प्रावधान लाने जा रही है। मदर्स डे के मौके पर SOS चिल्ड्रंस विलेज में उन महिलाओं केयरर्स को सम्मानित किया गया जो हर दिन परिवार से दूर बच्चों के जीवन में माँ का प्यार और नई उम्मीद भर रही है। देश भर से आए युवा रिजी में एक मंच पर जुटे, जहां नशे की समस्या, सोशल मीडिया का प्रभाव और कला और संस्कृति जैसे कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। मॉरिशस में अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी सख्त नजर, डिजिटल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए नए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया गया। इबादत, सब्र और रूहानी एहसासों से भरे हज सफर का अब अंतिम पड़ाव, करीब 1500 मौशन हाजी हज के आखिरी रस्मों को अदा करने में जुटे हैं। दुआओं और इबादत के इन खास लम्हों के बाद उनकी वतन वापसी कल के लिए निर्धारित है। विदेश में भारत इस समय मौसम के दो अलग अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक तरफ कई राज्यों में भारी बारिश तो दूसरी ओर भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जिन परिवारों ने जरूरतमंद बच्चों को अपने घर में जगह देने के साथ उन्हें अपनापन और सुरक्षा का एहसास भी दिया है, उनके लिए अब और बेहतर सहयोग की तैयारी की जा रही है। परिवार कल्याण मंत्रालय बच्चों की देखभाल करने वाले इन परिवारों की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाने जा रहा है। साथ ही एक नया मंच भी शुरू किया जाएगा जहां ये परिवार अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। इस बात का ऐलान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियन नावामारी ने फिनिक्स में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया। क्लोडा जोफा गादेवादू न याचना मिश्रा का विवरण।
1: 23 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद गायतों और कोहिन ने 7 साल पहले अपने दिल और अपने घर के दरवाजे दो बच्चों के लिए खोले।
2: Les enfants pas choisir, c'est coup de moi, moi content vraiment. Mon premier fils venait comme mon trou, lui me dit ça même.
1: बच्चे चुने नहीं जाते, जो मिले वही। मेरी बेटी को जैसे मैंने देखा, मैं जान गई कि वही है। उसने हाथ थामा और नहीं छोड़ा। 19 महीने की थी, मैंने उसे गेंद दिया जो 1.5 साल तक उसने अपने साथ ही रखा शेल्टर में। 23 साल के वैवाहिक जीवन के बाद बच्चे से माँ शब्द सुनना एक अलग ही एहसास है। ये सोच समझ कर लिया गया फैसला था, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को एक स्थिर, सुरक्षित और प्यार भरा पारिवारिक वातावरण देना था। सुबह काम पर जाने से पहले उनको मोटरसाइकिल की सैर कराता हूँ, शाम को वापस आता हूँ तो वे राह तकते हैं, देर हो जाती है तो इंतजार करती है। इस शनिवार उन्होंने एक दिवसीय गतिविधि के दौरान अन्य फॉस्टर माता पिता के साथ अपने अनुभव बांटे। खेलों और मनोरंजन के पलों से परे ये उदारता, प्रेम और नई शुरुआत की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये पहल पालक परिवारों की भूमिका को भी महत्व देने का अवसर प्रदान करती है। अब तक 129 बच्चों को 99 फॉस्टर परिवारों में रखा जा चुका है। उप प्रधानमंत्री ने अन्य परिवारों को भी इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें विश्वास है कि बच्चे की जगह परिवार में है, आखिरी विकल्प शेल्टर है। खेद की बात है कि जहाँ बच्चों को कम समय तक रहना था, वही शेल्टर 18 साल तक उनका बसेरा बन जाता है। हम अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम माता पिता और अधिकारियों के साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे स्थिति को बदला जाए, अन्य लोगों को फॉस्टर परिवार बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
2: यो ला सिचुएशन ए इनविट प्लीज बन पेरेंट कमेंट डियर अस्यूम जोट रिस्पांसिबिलिटी बन फैमिली अक्यूय।
1: दिन का समापन खुशी और उत्साह के माहौल में हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट रही, कभी कभी एक साधारण सा निर्णय कई जिंदगियों को एक साथ बदल सकता है।
0: माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि प्यार, सहारा और अपनापन का एहसास होती है, चाहे जन्म देने वाली हो या नहीं। मदर्स डे के अवसर पर SOS चिल्ड्रन

विलेज में उन केयरर्स को सम्मानित किया गया जो हर दिन परिवार से दूर बच्चों को ममता, सुरक्षा और एक नई उम्मीद देती हैं। इन महिलाओं को उनके समर्पण और निःस्वार्थ सेवा के लिए विशेष सम्मान दिया गया। अंजू रामगुलाम ने इन बच्चों से आज मुलाकात की। देश भर से आए करीब 200 युवा रेजी में एक मंच पर जुटे। नशे की बढ़ती समस्या, सोशल मीडिया का प्रभाव, युवाओं का विदेश जाना और कला संस्कृति जैसे कई अहम मुद्दों

0: मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने अपने सुझाव भी रखे, जिन्हें नई नेशनल यूथ पॉलिसी में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। काविंता पेसा, करुणा लालू।
1: सब कुछ सुनियोजित करने के लिए एक ब्रीफिंग लगाई गई। इसके बाद लगभग 200 युवा 5 अलग अलग कक्षाओं के ओर बढ़े, जहां मॉडरेटर उनकी प्रतीक्षा में थे। पहले से ही विषयों का चयन किया गया था। नशीली दवाओं और अवैध पदार्थों को समर्पित कक्षा में जीवंत और उत्साहपूर्ण चर्चा देखी गई।
2: Qui fait joli joli garçon, joli joli jeune fille comme ça, qui faisait une tombe là-dedans. Oui, il commence par une fois, cinq claques une fois, une vine agitée, mais après ça, pas n'a personne. Comme une vine intoxicomane, mais qui s'en a quitté là derrière moi, qui s'en a quitté pas si pour moi.
1: Kala, Sanskriti et Manoranjan bhi yuvaon ki ruchi mein ahem vishay raha. Unke vicharon aur pratibhaon ko abhivyakt karne ke liye apryapt manch, margadarshan ki kami.
3: Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment ça talent, mais ils ont ça. L'appui là pour qu'allons du coup vous hésité.
4: Beaucoup de monde qui peut crier ma Harry Maguire, beaucoup de monde qui peut crier ma tes affaires. Beaucoup de monde qui m'a pas tu peux crier mais avec la pratique, avec la motivation, la discipline, nous progresser. Moi, on croise les jeunes, comment dire, quand ils ont un talent, exprimer.
1: Anik Sujhav, prestut ki gay.
5: Moi, chanteuse, un peu comme si, médium, mis à dire. Mais ça l'appui comment dire pour gagner pour comment dire un sponsor si pas un producteur pour prendre les difficiles.
1: Ek anivarya vishay social media bhi charcha ke kendra mein raha.
6: Aujourd'hui je suis au demander une jeune combien elle est temps les dépenser dans ce potable. Du bout de 8 et temps, elle est capable même à 12 et temps qui est vraiment pas bon. Et ça li impacté dans nous la vie familiale aussi que aujourd'hui nos parents nous pénal les temps pour que avec nos parents c'est parce que qui faire nous peut servir nous pour table.
1: कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर देना।
7: Nous transpose bonne recommandation bonne solution qui bonne jeune proposer parce que c'est extrêmement important c'est bonne jeune qui fait face à bonne problème là. Donc il est important qu'ils nous gagnent les solutions des bonnes jeunes.
1: युवाओं द्वारा प्रस्तुत सुझावों और सिफारिशों को नई नेशनल यूथ पॉलिसी में शामिल किया जाएगा, जो वर्तमान में तैयार की जा रही है।
0: मॉरिशस में अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। मॉरिशस रेवेन्यू ने डिजिटल पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग को रोकने के लिए एक खास रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया है। ये बात उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सामने आई है, जिसमें मॉरिशस और सेशल की एजेंसियों को अमरीका की FBI ने वित्तीय अपराधों से निपटने की ट्रेनिंग दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिविजन कमीशन बिल पर राष्ट्रीय सभा में बहस का दौर जारी है। जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी ने सिंगापुर के संवैधानिक सुधारों का हवाला देते हुए मजबूत और आधुनिक संस्थाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं सांसद अनाबेल साबाबादी ने कहा है कि ये आयोग योग्यता आधारित व्यवस्था और समान अवसर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। इस बीच बहस के बाद राष्ट्रसभा की कार्रवाई को अगले मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया है। काविंता पेसा, यचना मिश्रा।
8: सांसद अनाबेल साबाबाजी का मानना है कि यदि संविधान संशोधन में योग्यता यानी मेरिटोक्रेसी की अवधारणा को शामिल नहीं किया गया तो ये अधूरा रहेगा।
9: Je demande au Premier ministre de venir avec un amendement pour inclure explicitement le mot méritocratie et ses principes dans la Constitution.
8: सांसद मनोज सिबन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन को कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
10: How do we further strengthen our democratic institutions in the Republic of Mauritius? How do we ensure even greater protection of fundamental rights?
8: रोड्रिग्स की सांसद दानित ऑरियत मानो के अनुसार रोड्रिग्स के निवासियों से परामर्श किए बिना संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया अधूरी है।
11: Une réforme constitutionnelle ne peut être significative si elle est menée uniquement du point de vue du territoire principal.
8: junior mantri Rajendra

0: सिंह ने गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी अपने विचार दिए।
1: दिस इज व्हाई आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज राइट टू ब्रिंग दिस प्रपोजल टू द कमीशन टू स्टडी व्हेदर वी शुड हैव एन इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट नॉट ओनली ए मेजॉरिटी।
0: जूनियर मंत्री धनेश्वर दामहे का मानना है कि केंद्रीय बैंक के भंडारों की बेहतर सुरक्षा के लिए सिंगापुर की प्रणाली एक उदाहरण है।
2: The Singapore Constitution strictly protects the nation's reserves by establishing an elected president as its second key before the government can draw on, transfer or use the reserves.
0: अपने संबोधन के दौरान धनेश्वर दामहे ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में हुए संवैधानिक संशोधन का भी उदाहरण दिया।
3: तेल और गैस पर निर्भरता कम करने की दिशा में हिंद महासागर इलाके के देश अब नए विकल्प तलाश रहे हैं। इसी विषय पर कुल आउट्स सेंटर में हिंद महासागर आयोग और जापान दूतावास की पहल पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें हिंद महासागर के कई द्वीप देशों और टापू देशों के प्रतिनिधियों ने और ऊर्जा सेक्टर में सहयोग और आत्मनिर्भरता के अवसरों पर बात की। ऊर्जा परिवर्तन के सेक्टर में जापान के अनुभव को भी प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने रखा गया। सिंचामुतु करुणा लालू।
0: हिंद महासागर आयोग के सदस्य देश न केवल टापू क्षेत्रों से जुड़े समान चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि वे फॉसिल फ्यूल पर भी निर्भर हैं। युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हमारे देशों की स्थिति नाजुक हो चुकी है। 47 दिनों के ईंधन भंडारण की क्षमता के साथ दीर्घकालिक समस्याओं का सामना करना मुश्किल है। इसलिए अब ऊर्जा ट्रांजिशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ईंधन का आयात और मूल ढांचों की चुनौतियों के बावजूद भी मडागास्कर समुद्री संसाधनों के कारण टिकाऊ विकास और ऊर्जा ट्रांजिशन की क्षमता रखता है। हिंद महासागर आयोग के महासचिव इब्राहिम नोबियाहिशा और जापान के दूतावास की कार्यवाहक प्रमुख मायू यामाओ ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जापान की विशेषज्ञता पर प्रकाश डाला। गहरे सागर और जलवायु प्रकोपों को लेकर जापान खुद को ढालने में सक्षम है। रियूनियन और उसके साझेदारों के लिए समुद्र में टर्बाइन्स एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परियोजना है। इस ऊर्जा परिवर्तन को केवल सहयोग और साझेदारी के माध्यम से ही सफल बनाया जा सकता है।
4: Au niveau de la commission des Indiens, nous déjà on a une décision pour un achat groupé.
0: हिंद महासागर में हम समावेशी खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, मात्र आपात सामानों के लिए, जैसे लिक्विफाइड गैस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक देश आयात करके आसपास इसे वितरित कर सकता है। इस संगोष्ठी के दौरान कई प्रस्तुतियां दी गई, खासकर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स और अन्य समुद्री ऊर्जा प्रणालियां जो कि जापान की पहल हैं।
3: पीएमएसडी के नेता जावियर लुक जुवाल ने आज पोर्ट लुइस में प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और सरकारी खर्च पर नियंत्रण अगले बजट के अहम मुद्दे होने चाहिए। उन्होंने सरकार को वाट बढ़ाने से बचने की सलाह दी।
5: राजनीतिक मंच पर लंबे समय की अनुपस्थिति के बाद ज़ावियर लुक जुवाल आज प्रेस के सामने आए। पीएमएसडी के लीडर ने मौजूदा संदर्भ में सरकार की तरफ से आपात कदम उठाए जाने की इच्छा जताई। उन्होंने लघु उद्योगों के लिए वीएटी की सीमा बढ़ाने की मांग की। उनके अनुसार वर्तमान 3 मिलियन रुपए की सीमा अनुचित है। पीएमएसडी के लीडर ने उन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जिन्हें भावी बजट में ध्यान में रखना चाहिए।
6: Pouvoir d'achat, gaspillage. Ça, ben, ça fait là pas qu'à attendre plus longtemps. Depuis longtemps, nous avons causé des importations parallèles. Qui fait à Maurice un pan seul pays qui a un monopole l'eau importation de marque. Tout ce que vous trouvez là, presque tout, du moment où il représente sa marque là, Maurice, il prend un peu ce voisin pour te dire. Et monopole, bizarre, cassé.

0: शोफू मेजिकामा।
1: कानून और व्यवस्था के संबंध में उन्होंने अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस को ज्यादा साधन प्रदान करने की मांग की। उन्होंने मॉरिशस में पेंशन प्रणाली में गहरा बदलाव लाने की इच्छा जताई। ज़ावियर डुजुवाल ने जूनियर मंत्री और गणराज्य के उपराष्ट्रपति के पदों को हटाने की भी मांग की। उन्होंने VAT बढ़ाने की सभी पहल के खिलाफ सरकार को आगाह किया। प्रेस के सवाल के जवाब में उन्होंने की रेट बढ़ाई जाने पर खेद जताया और कहा कि वो MSM के संपर्क में नहीं रहा, न ही लेबर पार्टी और PMSD के बीच कोई नज़दीकी रही है।
2: इबादत, सब्र और रूहानी एहसासों से भरे हज सफर का अब अंतिम पड़ाव करीब आ गया है। करीब 1500 मौशन हाजी हज की आखिरी रस्मों को अदा करने में जुटे हैं। मक्का और मदीना की सरजमीन पर दुआओं और इबादत के इन खास लम्हों के बाद अब उनकी वतन वापसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान कई हाजियों ने इस सफर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रूहानी अनुभव बताया है। भारत इस समय मौसम के दो बिल्कुल अलग रूपों का सामना कर रहा है। एक ओर पूर्व उत्तर और दक्षिण भारत में मानसून पूर्व बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। बारिश और गर्मी के इस दोहरे असर ने करोड़ों लोगों के जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

0: 6:18 हुए हैं। देश विदेश के इन खबरों के बाद अब चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल करुणा लालू के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवा चल रही है। पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात के दौरान आसमान में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। कल सुबह तड़के ऊंचाइयों पर थोड़ी बहुत बारिश के बाद दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। इस बीच दोपहर में पश्चिम में कुछ घरी के लिए बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:37 पर, कल सूर्योदय 6:37 पर।

6:20 हुए हैं। मौसम के इस हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

शोक समाचार सुनिए। बासन रोड हाईलैंड्स में 75 साल के 75 years old जनाब अब्दुल रहीम उसैन अली जिन्हें लुक्चीबाई नाम से जानते थे की मृत्यु का इंतकाल हो गया है। जी हाँ, अब्दुल रहीम उसैन अली का इंतकाल हो गया है। इनका जनाजा आज रात आठ बजे इनके मकान बासन रोड हाईलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM।

ओम शांति हाईलैंड्स में, ओम शांति हाईलैंड्स में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री सतीश गोपी जिन्हें लोग विनंद नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे शॉबेल लेन वाकवा के रहने वाले थे। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे ओम शांति हाईलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। पिचिकॉन्ग घोगुब में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड श्री दीपक चतुरी जिन्हें लोग मंगल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के मकान पिचिकॉन्ग घोगुब से उठाकर घोगुब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। नंबर 84 मोसेयलिन एवेन्यू कैटरबोन में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री हरिदत्त गोकुल जो उमेश मशोगातो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान नंबर 84 मोसेयलिन एवेन्यू कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कैथरबो रोड बोनाकई में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री अजय बिकारी जिन्हें लोग सुदेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान कैथरबो रोड बोनाकई से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। और जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड श्री ऋषि पीरू जिन्हें लोग अजय माशो के बाब नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी पत्नी शर्मिला पीरू के मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: आज की सूचनाएं।
1: सरस्वती सभा माहिजानी होसबेल सभी भक्तों को सूचित करता है कि शिव पुराण का आयोजन 1 जून से 6 जून तक किया जाएगा। कार्यक्रम कुछ इस तरह। सोमवार से शुक्रवार कार्यक्रम की शुरुआत होगी शाम 7:30 बजे। शनिवार 6 जून को 3 बजे से ग्रह शांति पूजा पूर्ण होती और गौ पूजा, जिसके बाद महाप्रसाद भी दिया जाएगा। वेद प्रतिष्ठान गुरुकुल हवन और सत्संग का आयोजन रविवार 31 में दोपहर 4 बजे कर रहा है। जगह वेद प्रतिष्ठान गुरुकुल लावंचिया।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: माय दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: निंग हाँ,
4: अस्सलामुअलैकुम,
1: किम चू मॉरिशस।
5: नमस्कार श्रोतृंदरिकी, हृदयपूर्वक नमस्कारम।
6: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
7: ரேடியோ மொரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபீ கா।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

नार रूप अरुवार गोमटी भार देह सुकुमारस की साजनी कशी अनोखा पहर जड़ाशी लहर बिनावे जहर आठ ही पहर खणी खंजीरी।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोताओं को अनीता का प्रेम सहित नमन स्वीकार कीजिए। भक्तों, आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम चल रहा है और प्रसारण हो रहा है रेडियो मॉरिशस पर। भक्तों, प्रभु कहते हैं कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर

उत्तर तुरंत नहीं मिलता, किंतु हर प्रतीक्षा के पीछे कोई बड़ा कारण होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में निराश हो जाते हैं, पर समय और प्रभु वो रचना कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से कई आगे होती है। स्मरण रखेगा, जो देर से मिलता है वह अक्सर सबसे सही होता है। धैर्य रखो तथा प्रभु की योजना पर विश्वास रखो। तो आइए इसी सुविचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को अपने शत्रु पर प्रकट ना होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता, कुछ केवल शक्तिशाली का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं।

प्रियजन, जो नियति में नहीं होता वो मंदिर में सिर झुकाने से भी नहीं मिलता। कड़वा है पर सच है। प्रतिदिन हम भगवान से मांगते रहते हैं पर शायद गलत वस्तु आप मांग रहे हैं। भगवान वस्तुएं नहीं देते, वे तो रास्ते देते हैं। जीवन में हम सब कुछ जल्दी में चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग रोकर भी कुछ प्राप्त नहीं करते और कुछ लोग बिना मांगे भी सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जो आपके लिए लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसके पीछे भागना बंद कीजिए। हर कामना पूरी नहीं होती और हर सच समझना

भक्तों, एक विचार इस प्रकार है कि कोई कुछ भी कहे, कितना भी बुरा बोले, आप अपने मन को शांत रखिए। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे

श्रोताओं, जो स्वयं गिरकर संभले हो वह किसी को धक्का नहीं देता है। जिन्होंने दर्द देखा है वे दर्द देना नहीं जानते हैं। जिन्होंने टूटना सीखा है वे तोड़ना नहीं सीखते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे से निकल कर आया हो वह किसी और को अंधेरे में नहीं ढकेलता है। दर्द व्यक्ति को कठोर नहीं अपितु संवेदनशील बनाता है। तो इसी विचार के साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई की खुशी की खातिर ज़रा सा मुस्कुरा देना भी सदक़ा है, कोई नेक बात कह देनी भी सदक़ा है, तुम्हारा किसी को बुरी बात से रोक देना भी सदक़ा है, किसी बेनिशान ज़मीन का किसी को रास्ता बता देना भी सदक़ा है, जिस शख्स की नज़र कमज़ोर हो उसकी मदद कर देना भी सदक़ा है, रास्ते से पत्थर कांटा और हड्डी का हटा देना भी तुम्हारे लिए एक सदक़ा है, और अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ।

हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, यानी देना लेने से बेहतर है, तो शुरू कर अपने अहलों उन्हीं को दे। अयाल कौन है? तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बहन, तेरा भाई, फिर जो ज़्यादा करीब तर हो, फिर जो बात उसके करीब तर हो। बहवाला मुस्लिम बुखारी शरीफ। ऐ पाक परवरदिगार, हमने जो अहदीस समात फरमाई, हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। मिसेज अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमारे सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बार रेडियो मॉरिशस आउरी रेडियो मनोरंजन पर रोज रात के चलेला 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और आज तस्ताम दी के रात है रत्ना आप सब कोई के साथ देवे खातिर आप सब कोई के संगे जुड़ गल हुआ जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हुआ बस आशा है ये करब जा आप सब कोई मजे में हुआ और आज तब बहुत एक खास दिन है कहे के काल मनावब जा मातृ दिवस और मातृ दिवस के अवसर पर आज ढेर कोई अपन ममा हिया घूमे गल हवन तो चल आज के कार्यक्रम की बहुत लाजवाब गीत से सजावब जा और जे तोहरा मन बा कोनो गीत खास गीत तोहर माता जी खातिन तोहर पिताजी खातिन तोहर परिवार खातिन डेडिकेट करे के तो जरूर हमनी के टेलीफोन करिए 4028085 पर और आज तो ढेर जगह पर पनिया बरसता और ठंडा तो जैसे निमन से शुरू हो गल बा तो चला आज के ठंडा ठंडा मौसम में बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म गीत के संगे संगे गर्मा गर्म चुटकुला तोहर खातिन लेके आल है आशा करब जा के आप सब कोई हमनी के प्यार से साथ दे बजा रात के 11 बजे ले तो चला आज के है बढ़िया कार्यक्रम के शुरुआत एगो बढ़िया गीत के संगे करब जा चंद्रदेव जी बोधन के आवाज में रखल आज के है पहला गीत और सब माता पिता खातिन है गीत डेडिकेट करब जा

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही मजेदार कार्यक्रम संगे आज तक ढेर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन। बस प्यार से ऐसे साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम सजा बब जा तो हर पसंदीदा गीत के संगे। और आज के जोन पहला गीत के पसंद आल हवन आई आलवन शांति शांता सुकागी की ओर से। चाची शांता सुकागी हमनी के बोले गीता गजाधर के माँ बाप के मोल है गीतवा तनी चला द हमार खातिन हमार

और संगे हवन तोहर नाती प्रावेश, नातीन संजना और संगे हवन बेटा यश्वीन और शर्मिला सुकारी। तो चला सब कोई सुकारी परिवार खातिन माँ बाप के मोल और हाइये गीत करब जा। रोजबेल से नवीन लक्ष्मण जी खातिन भी है, वो भी हाइये गीत के मांग करत हवन। और उनकर पत्नी हवन चित्रा जी, संगे हवन उनकर परिवार निवेदिता और सच्चिदानंद जी, संगे हवन ललिता और धनराज चरण जी, मोदालबिया बगल से बेटी स्वीटी संगे, राज और अमृता ओबिलक हवन न्यूग्रोव बगल से, और रमेश और प्रीति जी साथ देवत हवन गाँव बुआ बगल से। चला गीता गजाधर के आवाज में रखल है गीत सुनब जा। आउरी चाचा चाची के किस्सा तो सुनते चला। चाचा गजोधर कौन दिन का जनी कौन भूत सवार होगल ओकर कपार में। चाची के बोले हाँ हम सोचा था तनी हरिद्वार जाके हम अपन सब पाप धो देवब। तो चाची बोले हाँ अपन पहला पाप तो बताव, धोए तो हम हइए हइजे हइजे बैठे बैठे धो देवब, तोरा नहीं जरूरत पड़ी हरिद्वार जाए के।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 9:13 और मजेदार कार्यक्रम के शुरुआत हो ये गल बातें और बहुत ही मजेदार ठंडा ठंडा मौसम में ऐसा बढ़िया बढ़िया गीत जब सुने के मिलेला बहुत मजा लगेला बहुत आनंद आवेला। तो चला आज के अगला गीत जो है अनीता जी खातिन चला बब जा अनीता लाल जी जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन मॉडल बे बगल से संगे हवन सब उनकर ईटू परिवार लाल जी परिवार गोगा और नागेश्वर परिवार और सब कोई माता लोगन के वो आज के दिन के बहुत बहुत शुभकामना देवत हवन। और लीलो माथुर सुकन के आवाज़ में रखल सुंदर लाठी है गीत के उ मांग कर ले हवन। तो चला है ये गीत चलावब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और खुशहाली के साथ जुड़ल रहिए बढ़िया मजेदार कार्यक्रम। और चाचा के का बोलब चाचा हमनी के चाची के बहुत प्यार से एक दिन बोले एगो बात तो बतावा कौन अच्छा काम कर ले रहा कि तोरा हम मिल गल। तो चाची बोले कौनो अच्छा काम नहीं कर ले रही हो हम तो जानत हवा हमर गांव के जोन कुआ है वहाँ ऐसे पाछे से ऐसे 2 रुपया फेंकले रही और भगवान से मंगले रही कि भगवान एगो अच्छा पति हमनी के दे दिया तो तू मिल गल। पर बाद में हम भगवान से पूछले रही हे भगवान है का दे देलक तो जानत हवा भगवान का बोले बोले 2 रुपया में तो ऐसने मिली का बोलत हवा हो

0: हमारी धमाल आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:21 और ही चला है जा पर उमा जी बहुत प्यार से हमने के संगे जुड़ गल हवन फोन जूसाक से। और आज अपन माता पिता के बहुत याद करत हवन। अपन स्वर्गीय माता पिता खातिर एगो बढ़िया गीत पानी के बुलबुला। और उमा जी है जोन गीत है पानी के बुलबुला है अभयदानंद बिजन नहीं पर महेश विश्वजीत गईले हवन। और है ये गीत करब जा तोहर मौसी खातिन और बहिन भानु खातिन। चला है जा पर नोवेल फॉन्स से हमने के संगीत जुड़ गल हवन गीता बाई और उनकर बेटा हवन शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई बेटी सुधा बाई संगे हवन बिजवी बाई दिया बाई और प्यार मल्हार। चला ठंडा करता जितना छोटा बाबू घर में हवन उन सब कोई के ध्यान रखे जा काहे के ऐसन ठंडा के मौसम में वो हाली से उनकर बीमार होई के बहुत जस्ती संभावना रहेला। और ही जितना बड़ा बुजुर्ग भी हवन उन सब कोई के भी बोलत हैं अपन ध्यान रखिए स्वास्थ्य के। और मजेदार गीत के संगे संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब जा। चलो मानती जी हमने के बोले सुंदर लाठी के है गीत तो हमनियों के बहुत खुशी रहल। चला है ये गीत तोहर खातिन हो नोवेल फॉन्स से तू भी साथ देवत हवन तोहर परिवार संगे तोहर दूगो बहिन आरती और अनंती दूगो पतो हवन अनुषा और उर्वशी और दूगो नाती नवन मितिशा और गिरीशा। बहुत बहुत प्यार सब कोई के। चला हंसते मुस्कुराते बस इसने साथ देते रहिए जा और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स काहे के हंस के कैसे जीवन बहुत नीमन लगेला। नीमन बहुत अच्छा तनाव से दूर हो जाला। तो जैसे हमर चाचा और चाची हमेशा झगड़ा करते रहेला का बोलब चाची कौन दिन खीस में आके चाचा के बोले हम तो जात हई घर छोड़ के तू हमर संगे बहुत झगड़ा करेला। तो चाचा बोले हाँ तू जइयो अपन माँ हियाँ हम जात हई मंदिर। तो चाची बोले काहे हमर वापस आए खातिन मन्नत मंगबा शिवजी से। बोले नहीं हो खुशी के मारे शिवजी के प्रसाद चढ़ावा

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जा पर हमनी के प्यारी सुनीता जी भी जुड़ गल हवन गाँव गोब से और उनको चार गर बहिन अमृता वीना जी विमला जी सब कोई हमनी के साथ देवत हवन बहुत प्यार से और चला है जा त्रियोले से चाची ललिता कुशल भी जुड़ गल हवन और आज उनका सब नाती पोती के नाम लेवत हवन समीक्षा आर्यन विधि विशेष आयान सोन श्रेया आयुषी आलिया आलीना और संगे हवन उनकर बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी संगे हवन छोटी दीदी जे हवन पोला जैसे सुखलाल मौसी दादी प्रभावती भाई आत्माराम और भाई हरीश खातिन और जितना कोई सुनत हवन सब कोई खातिन चला उनकर सब कोई के बोलब जाब मातृदिवस बहुत बहुत अभिनंदन और काल सब मातृदिवस मनायन जा है जा पर मीराबाई भी हमनी के संगे जुड़ गए हवन मीराबाई द मियाँ मॉडल भी ऐसे उनकर बेटी और दामाद खातिन वो भी अपन माता पिता के बहुत याद करत हवन बेटी और दामाद संगे पादिया परिवार साथ देवत हवन तो चला राजीव मंगर के आवाज़ में रखल अगला गीत करब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार लोगन खातिन और चचा चाची के किस्सा तो सुनते चला हो चाची जितना चचा उनकरा परेशान करेला का बोलब चाची जितना खीस में चलाल चाची बोले जे हम मर जाब एक दिन तब कौन चीज करब तो चचा बोले हम भी मर जाब चाची बोले काहे हमर हमर प्यार में हमर गम में बोले नहीं हो हम तो है खुशी के बर्दाश्त नहीं कर सकब भाइये से मर जाब

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का।

चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे संगे साथ देते रहिए जा। और ये है जहाँ पर ढेर जगह पर अभी पनिया बरसता तो पनिया बरसता है, ये मौसम के संगे संगे बरसेला मूसर के धार है गीत के मांग करत हवन साजिद जी रोजिल से, वो हमनी के संगे जुड़ गल हवन। और दीना सरोवर उनकर खास दोस्त खातिन और जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन बरसेला मूसर के धार। चंद्रदेव जी बोधन के आवाज में रखल है अगला गीत करब जा और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स। और ये चाचा के तो जब देखा तब कौनो ना कौनो परेशानी हमेशा रहेला। वो हमनी के बोले हाँ जाना था हाई जिंदगी में, कोई कोई के तो जिंदगी में होते रही कभी खुशी कभी गम, पर हमार जिंदगी ऐसा नहीं हो। हम बोले कहे चाचा तो हर जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है। बोले नहीं नहीं, हमार जिंदगी में तो कभी गम, कभी उससे भी बड़का गम, और कबो कबो तो सबसे बड़का गम, और कबो कबो तो हई गम के मारे हम खत्म। का हो चाचा जब देखा तब ऐसा बुरा बात तू बोलते रहेला, कपार फाचगी हो जाला हमर, का बोला

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 11 बजे ले चली मजेदार कार्यक्रम और ठंडा ठंडा मौसम के संगे संगे चला हाइजा पर दागो जैसे हमने के प्यार से साथ देवा धवन कुमारी जी हंसते मुस्कुराते और साथ गो बहिन संगे और सब रामफल परिवार खातिन गीत के मांग करत हवन और जितना संसार में जितना माता जी हवन जितना प्यार से हमेशा अपन बच्चा लोग के आतान करेलन और खास कर माता पिता जी वृद्ध आश्रम में लहे रहेलन और सच में बहुत है दुख के साथ अपन बच्चा लोग के अपन लइकवन लोग के आतान करेलन सर सब कोई खातिन प्रार्थना करिए जा और ही चला आशा करब जा कि है गीत जितना माँ लोग सुनत हवन उन सब कोई खातिन और बहुत ही प्यार से है गीत चलावब जा तोहर खातिन और साथ देवत हवन हमनी के ढेर कोई है जा पर श्रोता लोगन जुड़ गल हवन तो चला कुणाल बाबूलाल के आवाज़ में रखल है बहुत ही मज़ेदार गीत सब ममा लोग खातिन

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: नौ बजकर 51 मिनट आवरी चला है जहाँ पर बादवाग विदेशी जी हमने के संगे जुड़ गल हवन और उनकर खास दोस्त अनुषा खेदन खाती ने गो बढ़िया रोमांटिक गीत के मांग कर ले हवन। तो चलो मुकेश छेदी के आवाज में रखल है बहुत ही मजेदार गीत तोहर खातिन करब जाओ और बढ़िया बढ़िया गीत संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स। और चचा गजोधर का जाने कौन अपन दिमाग कौन दिशा में दौड़ावे लवन सा हमनी के बोला का जाने है काहे पढ़ाई और शादी ब्याह के आइडिया का जाने केकर दिमाग में आल रहल अच्छा नहीं रहल। आराम से सब कोई जंगल में रहत रहलन पत्थर से आग जलावत रहलन और उसने जिंगा लाला करते हम तो चल जाती सा का बोलत हव। बोले का चचा कौन जमाना के बात करत हो जमाना कितना आगे बढ़ गल बा सब कोई चांद पे जाए के बात करत और तू अभी जंगल में बैठ के जिंगा लाला करे के बात खोजत हुआ।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में चला है जहाँ पर हमनी के साथ देवत हवन श्रीमान दनपत जी सोलफेगिनो से और उनकरा तीन कोड़ी दो बरीस हो गल बा और बहुत खास दिन जब हम अपन माँ के याद करीला और ऊ है हमार जन्मदिन के दिन काहे के उही दिन जब एगो लइकवा के जन्म होला उही दिन एगो माँ के भी जन्म होला। माँ अपन जान पर खेल के उस बच्चा के उस लइकवा के जीवन देवेला और यह आसान नहीं है काहे के उतना दर्द से 9 महीना उपोस के ओकरा बड़ा करेला जन्म देवेला। तो चला आज के दिन जितना कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन आज के पूरा हमार टीम देने से आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और है गीत है बसंत सुपुल के आवाज़ में रखल दनपत जी खातिन चलाओ अब जा हैप्पी बर्थडे।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: माँ,
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एनबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबी

और कार्यक्रम के जारी रखब स रात के 11 बजे ले 4028085 पर तो हमने के टेलीफोनी करे सकबा हईजा पर प्रेम इलाजी हमने के साथ देवत हवन का खूबोन से और उनकर माँ के बहुत याद करत हवन। तीन गो बहिन हवन तारा शोभा और माया और संगी हवन उनकर भौजी और का बोला उनकर बेटी जे ओकुले रहेलन उनकर हिया दूगो नन्ना बुन्ना बालक है जरा 1 साल हो गल बा। चल उनका जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और एक बरिस के अवसर पर बिल्कुल माँ बने के एगो ऐसा एहसास है वो बहुत एक खास रहेला। और जैसे सुनीता नन को के आवाज़ में रखल है गीत बहुत बढ़िया गीत माँ बाप के घर में तू रानी नियर रखब ऐसा नहीं बोला था कि सास लोग नहीं रखेलन से अपन पतो लोग के बहुत ध्यान रखेलन आजकल के सास भी बहुत अच्छा हवन अपन पतो लोग के बहुत ख्याल रखेलन से और खाई के पका के सब निमन से माँ नियर उकरा प्यार देवेलन से। तो चल आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ब स और मजेदार गीत अगला गीत जो है उनकर खातिन प्रेमिला जी और उनकर सब परिवार लोग खातिन चलाओ अब जा बहुत ही मजेदार कार्यक्रम चलाता है हईजा पर और कार्यक्रम के संगे ढेर कोई हमनी के साथ है देवत हवन हईजा पर चलाल हवन अनीता जी फ्री कॉम्फ्लाक से हमेशा हमनी के बहुत प्यार से साथ है देवत हवन और बोला था वन फ्री कॉम्फ्लाक बगल तक ढेर पनिया बरसता और सब कोई के बहुत बहुत मातृ दिवस के शुभकामना देवा था वन MBC के टीम के पूरा बहुत शुभकामना देवा था वन। चला आपके भी बहुत बहुत प्यार और ही चला अगला गीत चलाओ अब जा तोहर खातिन राजकमल चिंतामणि के आवाज में रखल है बहुत खास हम खास गीत है सब कोई ममा लोग खातिन और ही हंसते मुस्कुराते हम भी आगे बढ़ब जा और का बोलब जा चाचा के किस्सा तो सुनते चला चाचा हमने के कौन दिन बोले हाँ जौन चीज भूले के रहेला वो बतवा हमेशा याद रहला रह जाला और जौन चीज जौन बतवा याद रखे के रहेला वो बतवा भूल जाइला बुझाता हमर दिमाग के कोनो हैक कर दे ले बा ये से हमने के याद नहीं पड़ा था कौन चीज कहाँ रख ले हमन

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस की हमर जितना श्रोता लोगन हवन सब कोई साथ देवत हवन बहुत प्यार से 10:17 हो गल बाटे और जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई के भी बहुत बहुत हिम्मत और इस सच्चे के हाई जोन गीत रहल बहुत मजेदार राज कमल चिंतामणि के आवाज में रखल बोलल जाला ना कि जब माँ रहेला तब कोई नौकदार नहीं रहेला पर जब माँ चल जाला तब बहुत याद आवेला माँ के। काहे के माँ एगो ऐसन व्यक्ति है जे दुनिया के सब प्यार तोहर पर निछावर करेला तोहर पर लुटा देवेला और बहुत कम थी लेकिन ऐसा रहेलन जे गंती लेवेला अपन माता पिता के तो चला माता पिता के गंती ल और ही बहुत प्यार से काहे के तोहर जीवन में भगवान नियर हवन। चला आगे बढ़ब से एगो बढ़िया गीत संगे और माँ बाप के सेवा करे के है ये सबसे सच्चा सुख और विजय राव के आवाज में रखा अगला गीत के सुनब जा साथ मिलके।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:23 और हैजा पर पूर्णिमा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन। पूर्णिमा फुकीरा बहुत बढ़िया कलाकार हवन और अगिवे जो गाँव पौ से साथ देवत हवन, अपन मामा के बहुत याद करता। और आज पूर्णिमा फुकीरा जी हमनी के बोले लागी नहीं छूटे राम के हई गीतवा चला दका है कि हमर

जब भी रहल वो है गीत बहुत खुशी रहल गाय के सुने के तो जरूर है गीत तोहर खातिन चलाओ अब जा और तोहर घर परिवार के जितना लोग हवन सब कोई खातिन तोहर बेटी पिंकी पूजा प्राविनी पूनम तोहर बेटा हवन प्रावेश पत्तो खातिन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा है गीत और तू हमनी के संगे जुड़ गल हवन गिवे जो गाँव पर से तो चला है गीत खुशी के संगे लागी ना ही छूटे रहो और है गीत गायत्री जी हमनी के हमेशा खुशी रहेलन सुने के नुवेल फॉन्स से तो चला उनकर खातिन उनकर बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन और उनकर भौजी शकुंतला खातिन

चला हाइये गीत जोड़ब जार श्यामा जी खातिन श्यामा रघुनंदन हमनी के साथ देवत हवन गाँव गो बगल से उनकर भैया जयप्रकाश भाऊजी हवन नम्रता केशव युधीश विश्वानी जी और वीना रामफल उनकर खास दुगो

0: हमारी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ा हुआ अब सर, और आज जन्मदिन मनावा हवन का नीश, 11 बरिस के होगल हवन और कानीश दसोई, उनकर मामा हवन पूनम, पापा रोशन, नानी हवन पूर्णिमा, बहिन हवन परी और सब कालिया चेटी परिवार, दसोई परिवार, देवी दयाल परिवार, फ्लाक बगल से देवी दयाल परिवार, सात देवत हवन गुडलैंड बगल से कालिया चेटी परिवार और दसोई परिवार हमनी के साथ जुड़ गल हवन और कानीश के जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार से बधाई देव हवन उनकर प्यारी नानी और उनकर सब परिवार। तो चला हमर तीन दिने से तोहरा जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार से हई ललना चलावत हई तोहर खातिर।

0: विश्वजीत की आवाज में रखल है गीत रहल माँ बाप और चलाई कर संगे दमयंती बुलाकी की आवाज में रखल माँ बाप के सेवा। आज के कार्यक्रम बहुत खास है काहे के काल मनावब जा मातृ दिवस। तो सुनते रह भोजपुरी तड़का कार्यक्रम।
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।

0: आचार्य भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का तड़का कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम के हई गीत जो है बहुत ही मजेदार लाखों सुनानो यन और बसंत सुपोल के आवाज में रखल है गीत करबजा नेमन परिवार खातिर जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन अभी खुशनो बगल से। तो चला है गीत करबजा नरंजय खातिन और

उनकर पत्नी हवन नीला जी, संगे हवन बेटा नवीन, पतो हवन पूनम, साथ हवन बेटी सुनीता, और सब नाती पोता खातिन, सब निमन परिवार खातिन। अचला उनकर परिवार के बलब जा बहुत बहुत मातृ दिवस की शुभकामना। चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा, और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम संगे सब कोई हमनी के साथ दिवत हवन। और चचा गजोधर के किस्सा जाते जाते सुनावब जा, कि चचा गजोधर बोले आज के जमाना में तनी गर्मी बढ़ जाला तो माँ बाप लोग अपन लैकवा के लेके इतना बड़का देपौस करेलन, सजाला हुआ जहाँ बर्फ गिरेला। अब जानत हव हमर जमाना में कौन रहल कौन ची रहल। हम बोली हम कैसे जान अब चचा तोहर जमाना, और हम तो आज के जमाना के हई। बोले हाँ हमर जमाना में जब गर्मी बढ़त रहल तो जानत हव हमर माँ बाप कौन ची करत रहलन। हम बोले नहीं चचा हम तो नहीं जाना था। बोले हमनी के लेके जाए नाई हिया, और हुआ जाके हमर कपार पे से सब बाल निकाल के हमनी के टकला कर दे। बोला जमाना कैसे बदल गल बा। चला हाई बढ़िया सन लाखों सुनब जा, और बड़का लाखोस है सुना नयन और बसंत बसंत सुपौल के आवाज में रखल। और हाई लाखोस के साथ आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हो जाए, काहे के हई बहुत लंबा गीत है। तो चला सुनते रह और प्यार से साथ देते रह, और सब कोई के फिर उसे बोलब जा मातृ दिवस बहुत बहुत अभिनंदन। फेरों से भेटाप स आवत सामदी के रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। तला चला हंसते रह मुस्कुराते रह, और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

Sonwo, basa tu asik kamperal bahar. Kaitu ke bu

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहने वाले हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस इस रात्रि को और खूबसूरत बनाते चलें। तो आइए हमारे हम सफर बनते चलें और आपका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में।
1: दीवाना

आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं श्रोताओं, वो कभी एक्टर भी हुआ करते थे, निर्माता और निर्देशक माने कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में। कौन थे वो? वो थे विजय आनंद। उन फिल्म मेकर्स और एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई सोच, एक नए स्टाइल और एक नई पहचान दी। उन्हें प्यार से गोल्डी आनंद भी कहा जाता था। वो सिर्फ वैसे एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक ब्रिलियंट डायरेक्टर, जैसे कि हमने कहा, लेखक, राइटर और एडिटर भी थे। उनकी फिल्मों में रोमांस, सस्पेंस, इमोशंस और म्यूजिक का अनोखा संगम देखने को मिलता था।

विजय आनंद का जन्म 22 जनवरी 1934 को हुआ था। वो मशहूर आनंद परिवार से संबंध रखते थे। बड़े भाई तो थे ही देवानंद, बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार, और दूसरे भाई चेतन आनंद एक प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे। इस तरह सिनेमा का टैलेंट उनके खून में ही था, लेकिन विजय आनंद ने अपनी अलग पहचान अपनी क्रिएटिविटी और डायरेक्शन स्टाइल से बनाई।

डायरेक्टर के रूप में विजय आनंद ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। उनकी डायरेक्शन की सबसे खास बात थी कैमरा एंगल्स, सॉन्ग पिक्चराइजेशन और स्टोरी टेलिंग। उन्होंने गानों को सिर्फ गाने की तरह नहीं बल्कि कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया। उनके फिल्माए हुए गाने आज भी सिनेमैटिक मास्टरपीसेस माने जाते हैं।

दिमाग पर आप ही जोर लगा रहे होंगे कि हाँ कुछ फिल्में तो याद आ रही हैं और कौन कौन सी मूवीज विजय आनंद साहब ने बनाई, तो उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में से गाइड का नाम सबसे ऊपर आता है। यह फिल्म हिंदी सिनेमा की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में शुमार की जाती है। इस फिल्म में देवानंद और वहीदा रहमान की जोड़ी ने क्या कमाल कर दिया था। फिल्म की कहानी, डायरेक्शन, म्यूजिक और इमोशंस ने ऑडियंस के दिल को छू लिया। आज फिर जीने की तमन्ना है या फिर तेरे मेरे सपने, और भी गाने हैं भाई, सब के सब आज भी एवरग्रीन है।

जैसे कि हमने कहा, म्यूजिक के प्रति उनका नजरिया भी कमाल का था। एसटी बर्मन और ऑडी बर्मन जैसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने बॉलीवुड को कई अविस्मरणीय अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स दिए। उनके गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते।

बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे विजय आनंद की फिल्मिंग स्टाइल बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश मानी जाती थी। कैमरा मूवमेंट्स, लॉन्ग शॉट्स और क्रिएटिव एडिटिंग के मामले में वो अपने जमाने से काफी आगे थे। आज भी कई फिल्म मेकर्स उनसे इंस्पायर होते हैं। विजय आनंद साहब जो थे सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स के भी मास्टर माने जाते थे। जुअल थीफ, जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इन फिल्मों में उनका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, थ्रिलिंग प्रेजेंटेशन ऑडियंस को सीट से बांध कर रख देते थे। जॉनी मेरा नाम में देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी भी बहुत ही पसंद की गई थी।

जैसे कि हमने आपको बताया कि विजय आनंद साहब सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं थे बल्कि एक अच्छे एक्टर भी थे। उन्होंने कई फिल्म्स और टीवी सीरियल्स में एक्टिंग भी की और अपनी कॉल्म पर्सनालिटी और एक्सप्रेसिव एक्टिंग से लोगों का दिल भी जीता। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ग्रेसफुल और सोफिस्टिकेटेड थी।

उन्होंने हिंदी सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि आर्टिस्टिक और क्लासी बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी फिल्में आज भी नए फिल्ममेकर्स और सिनेमा लवर्स के लिए एक स्कूल की तरह है। 23 फरवरी 2004 को विजयानंद इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका सिनेमा, उनकी फिल्में और उनका क्रिएटिव मैजिक हमेशा अमर रहेगा। बॉलीवुड के इतिहास में उनका नाम हमेशा इज्जत, अदब और प्यार से लिया जाएगा। शुभ रात्रि, प्रणाम।

की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तरबियत औलाद के उसूल के मौजू को डिस्कस किया जाए। नौजवान नस्ल, नई नस्ल जिस तबाही की तरफ सुबह मसा रवा दवा है, वो हमारे और आप सबके सामने जवानियां लुट गई, शबाब लुट गए, हर तरफ माँ बाप ख्वा बेटे हों के या बेटियां हों उनसे परेशान, वो औलाद जो माँ बाप के लिए बायस तस्कीन होती है, वो माँ बाप के लिए अजाब बन जाती है, वो माँ औलाद जिनसे माँ बाप की जिंदगी में एक सुकून होता है, वही औलाद माँ बाप की जिंदगी से सुकून और पीस छीन रहे हैं। इसका मेन रीजन हम खुद हैं कि हमने अपने औलाद की तरबियत इस्लामी खतूत पर न की, इस्लामी उसूलों पे नहीं की। फिर उसके नताइज हमारे सामने। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और औलाद की तरबियत के उसूलों में से आज हम दो डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें ज़हन नशीन फरमाएं और उन खतूत पर औलाद की तरबियत करें तो इंशाअल्लाह फिर आपकी औलाद भी नेक होगी, साले होगी, मुती और ओबीडियंट होगी। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की जिन खतूत पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अगर उन्हीं उसूलों पर हम तरबियत करें औलाद की तो फिर फैजान सैयदना इस्माईल और फैजान सैयदना इसहाक अलैहिमुस्सलाम हमें अपनी औलाद की जिंदगियों में नजर आए। पहला उसूल इकामुस्सलाह, एस्टेब्लिशिंग द प्रेयर, नमाज, सलाह, नमाज कायम करना, ये पहला उसूल और बेसिक प्रिंसिपल औलाद की तरबियत के माँ बाप खुद भी नमाज के पाबंद हो जाएं और औलाद को भी बचपन से नमाज का पाबंद बनाए। माँ बाप खुद भी अपने लिए दुआ मांगे कि वो नमाज के पाबंद हों और साथ साथ औलाद के लिए भी ये दुआ मांगे कि अल्लाह पाक

उन्हें भी नमाजी बना। ये पहला उसूल है जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से और आपकी तालीमात से हमें मिलता है। जब एक शख्स

तो फिर उसका अंजाम ऐसा होगा जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बात फिर ताबीज से नहीं होगी, फिर किसी के पास आने जाने से नहीं होगी, ये बात आप खुद बनाएंगे। आज से अल्लाह की बारगाह में ये प्रॉमिस करें, ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम एक नमाज को भी मिस नहीं करेंगे और अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाएंगे। आज से कोशिश करें, ज्यादा नहीं, मैं आपको फकत एक वीक का टाइम देता हूं। मां बाप भी नमाज के पाबंद हो जाएं और जितने बड़े छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो भी नमाज पाबंदी से पढ़े। फिर देखें कि कैसे घरों का माहौल चेंज होता, फिर घरों में आप देखें कैसे सुकून और पीस और अल्लाह की रहमत करती है। और नंबर दो, खुद भी दुआ की इंपॉर्टेंस समझें और अपनी औलाद को भी दुआ की इंपॉर्टेंस बताएं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सप्लिकेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वोकेशन, मा ही अहमियत दुआ, कि दुआ की अहमियत क्या है। और साथ साथ अल्लाह जल्ला मिन्हू से ये भी मांगे कि ए अल्लाह, हमने और हमारी औलाद ने जो दुआ मांगी है या हम मांगते हैं उसे कबूल फरमा, खुद भी और अपनी औलाद से भी कहें कि वो अपनी दुआओं में इस बात को जरूर शामिल करें और औलाद को कभी बद्दुआ न दें, वो आपको जितना ही परेशान करें माफ कर दें, तकलीफ दें माफ कर दें। बजाय बद्दुआ के माँ बाप को चाहिए कि वो औलाद को दुआ दे, इसलिए कि 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें दुआ बद्दुआ दोनों कबूल होती है। तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि आपकी दुआ कबूल हो जाए, अगर आप बद्दुआ दें तो खुदा ना खास्ता हो सकता है कि वो कबूलियत का वक्त हो और बद्दुआ कबूल हो जाए। वो जितना भी सताए, सिर्फ औलाद नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा या पूरी उम्मत जो भी आपको तकलीफ दे, सताए, आसान नहीं है उस मौके पे दुआ दे, लेकिन अल्लाह के हबीब की सुन्नत है बदमाशों को दुआ देना, तकलीफ देने वालों को, सताने वालों को, तीर बरसाने वालों को, कांटे बिछाने वालों को दुआ देना, ये अल्लाह के हबीब की सुन्नत है। तो आज से मामूल बना लें दुआएं मांगने का, जुम्मतुल मुबारक में असर से मगरिब का जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दुआएं होती हैं। घरों में एहतमाम करें, मगरिब सूरज डूबने से पहले, अगर ज्यादा पहले ना हो सके तो कम से कम 10 मिनट पहले जिक्र करें, दुरूद शरीफ करें और दुआएं मांगें अपने लिए, औलाद के लिए और पूरी उम्मा के लिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी मुबारक सूरह इब्राहिम में
رب جعلنی

0: फिश ऑफ पिरामिड्स, कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। माँ बाप राजी खुश हो जाएं तो अल्लाह राजी और खुश हो, और माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह नाराज होता है। तो औलाद माँ बाप के स्टेटस को कब समझे? जब माँ बाप उनको ये बताएं कि रसूलुल्लाह का स्टेटस क्या है, हुजूर का सुप्रीम स्टेटस, हुजूर का यूनिक स्टेटस। जब माँ बाप औलाद को बताएगी तो इंशाअल्लाह मुकाम मुस्तफ़ा से और मुकाम मुस्तफ़ा की तफहीम से औलाद को माँ बाप के मुकाम की तफहीम भी होगी। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

0: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट। ओके,
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: Come on, Jukeen, now it's your turn. Come on, get up. Tell us.
1: Yeah, sing.
2: हाँ please बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूँ.
3: आगे.

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: आबरा कडाबरा रिंची बिंची

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आज संगीत देखा ज्यादा जाता है और सुना कम। बात कर रहा हूँ सिर्फ संगीत की, जो सिर्फ सुना ही जाता है और जिसको सुन सुनकर मैंने बहुत सीखा है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सलिल चौधरी ने सरल मुकेश की आवाज को जो गंभीर रूप दिया, योगेश के कमाल गीतों से महसूस होता है।